0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
2: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
5: It's incredible.
4: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right, and Center.
4: Hard facts.
5: War struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
5: At Srinagar.
7: In Iskandar.
5: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, and Anthony.
8: The show.
10: A very good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vadva. We have a whole lot lined up for you. But first, the headlines. The Lok Sabha will be taking up three key bills aimed at reforming the judiciary, updating banking evidence laws, and overhauling the governance of the Indian Statistical Institute. Opposition is preparing to demand a discussion over its allegations regarding the handling of temple donations. Around temple donation controversy set to dominate the parliament today. An independent MP is from Bihar's Purnia. Pappu Yadav attacked after a man identified as Sumit from Bulandshahr allegedly hurled a shoe at him during a press conference that was taking place in Delhi, sparking chaos and a scuffle. The DMK will hold a massive protest, and that's going to be taking place in order to condemn the TVK government over the Cauveri and farmers issue. The opposition has been mounting pressure on the TVK government to convene an all-party meeting in order to discuss the issue. As Karnataka Cabinet 2.1 that is loading with Chief Minister D.K. Shivkumar's new team that's likely to take shape today. The oath-taking ceremony is reportedly at 4 o'clock this evening, with indications that fresh faces could get a major focus in the revamped cabinet. Now let's begin our bulletin with the Ram temple donation controversy that's set to dominate the parliament in the monsoon session today. This with the opposition preparing a demand, a discussion over its allegations regarding the handling of the donations at the Ram temple in Ayodhya. The row has intensified after independent MP Pappu Yadav's skit in parliament, which referred to the alleged Chanda Chori, triggering sharp political reactions. The BJP has strongly reacted and they have rejected the opposition's allegations, accusing it of politicizing matters of faith. The party has alleged that the parliament's skit hurt Hindu sentiments.
11: को ठेस चोरी से नहीं पहुंची. वो ये कहते हैं कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है चोरी से. उस चोरी को रोकना है और उस चोरी का जिन पे इल्जाम लगा है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये कह रहे हैं. अब वो कैसे कह रहे हैं, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में कोई जाके उस पवित्र जगह पर जाकर चोरी करे, जो चंदा मंदिर के लिए आया है या मंदिर के काम के लिए आया है वो चोरी करे, तो उस पर क्या कहते हैं. हमने सरकार की तरफ से ये नहीं सुना कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, सुना नहीं. SIT बना ली है, SIT बताएगी कि ये गलत हुआ है कि सही हुआ, खुद क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत हुआ.
12: पप्पू यादव जी ने जो किया था वो राम मंदिर के सब
1: का जिस तरह से अपमानित हुआ है, जिस तरह से वहाँ लूट हुई है, चोरी हुई है, उसको उजागर करना चाहते थे और सरकार अभी तक मूक दर्शक बनी हुई है, तो इसलिए उन बातों उसको FIR होता है या केस मुकदमे होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के अंदर बहुत रोष है राम मंदिर की चोरी को लेकर, और जिन लोगों ने बड़ी आस्था के साथ, सद्भाव के साथ उन्होंने चढ़ावा किया था और वो चढ़ावा गायब हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।
6: तो संसद में जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी।
1: चोरी पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि जिस राम मंदिर का सारा इंतज़ाम, चाहे तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनके रहते हुए और इस तरह से चोरी हो जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है।
6: सोमवार को आप मांग करेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा?
1: बिल्कुल।
7: कि जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी कंपनी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के भगवा रंग को लेकर जिस तरीके की ड्रामाबाजी उन्होंने लोकसभा के सामने, मकर द्वार के सामने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। और हिंदू धर्म के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी धर्म के साथ करने की आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन से ही राह निकलती है, तो जितना डिस्कशन होगा दोनों हाउसेज में वो अच्छा है देश के लिए।
10: So we had independent MP Pappu Yadav, who was allegedly targeted in a shoe-throwing incident during a press conference that was taking place at his Delhi residence. According to the police, a man identified as Sumit from Bulandshahr allegedly interrupted the event, questioned Pappu Yadav over his remarks related to the Ram Temple donation controversy and threw a shoe allegedly at him. Pappu Yadav alleged that the incident was an attempt on his life and claimed that he had been receiving threats in recent days. Delhi police has launched an investigation into the incident, including the motive behind the attack.
6: ब्रीफिंग कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। जो व्यक्ति जिसने पहले एक टिप्पणी की आपके खिलाफ और उसके बाद उसने चप्पल फेंकने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ?
12: उसके बाद तो आप देखे ही, उनको सारे जनता ने पकड़ ली, उसको मारने का प्रयास किया, सब लोग घेर के हम उसके ऊपर गिर गए, आप खुद देख रहे हैं। तब उन्हीं के कमर से चाकू मिली, वो तो आज जनता नहीं होती तो बचते क्या, कई लोग घायल हुए।
6: तो उनके पास से चाकू मिला है जो व्यक्ति वहां
12: पे, ना तो दिल्ली पुलिस को दिया गया, आप उसको उठा के देख लीजिए।
6: अब FIR दायर कराएंगे इसमें?
12: सर ये FIR क्या करना दायर, ये तो बाहर बड़ी मरी मछलियां बैठे हैं जो मरवाना चाहते हैं।
6: क्या ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, आपने बहुत गंभीर बात कही है कि जो लोग आए थे वो चाकू लेकर आए थे आप पर हमला करने के लिए, क्या इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे कल?
12: विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, जो वो तय करेंगे, पप्पू यादव अपने नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, सनातन की संस्कृति और जनता के आस्था के लिए 100 बार मरने में कोई दिक्कत नहीं
6: है। चर्चा की मांग,
12: बिल्कुल।
10: Now the Lok Sabha today will be taking up 3 key bills aimed at reforming the judiciary, updating banking

0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: Now watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
4: Padmata Joshi, managing editor and prime time anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmata Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: कौन?
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know.
8: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
9: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: In Surat, floodwaters have submerged stretches of State Highway 65, affecting traffic movement. Valsad also has witnessed several waterlogging following torrential rain, and in Morbi, the authorities are closely monitoring the rising water levels in the rivers. In Sundaranagar, inundated waters that we have seen, these are roads that have been completely submerged. They have disrupted connectivity to several villages, leaving residents absolutely stranded.
1: I'm going to show you the visual of this very hospital which they were talking about. This hospital is known as Ayushman Arogya Kendra. This is one of the primary healthcare centers in this area, and I would like to show from this very side. Right now you can see the condition of this very hospital. The entire things of this very hospital have been kept just outside. Not only chairs and tables, apart from that you can see the almira, the catalogs, medicines, equipment over here. I can find out the machines over here. Apart from that, the BP machine can also be seen over here. I would like to just show you the visual of this BP machine, which is broken now. And apart from that, I can also see visual of some strips and these tablets over here. These are the straps of tablets. Right now I can also figure out some straps. These are the tablets here, you can see. So this is the actual condition right now on ground zero in Navsari's Deodha village. Right now you can see these are the visuals that I'm bringing you live. So these are tablets, sachets. So you can see the impact, that how badly the entire region has got impacted due to the flood water. Once I went inside to just check out this very entire hospital, but nothing was at its place. Everything has been kept outside, and you can see these are the workers who are working right now and try to reassemble things clearly at this stage, so that this hospital can again become functional. And while I was speaking to one of the villagers, they have suggested that approximately there are 4,000 to 5,000 people of this village who come to this nearby Ayushman Arogya Mandir Hospital. So this is a primary healthcare center, and we are bringing you exclusively all the live footages from ground zero, that how badly this year Gujarat has been impacted due to the flood scenario. With me, journalist Pawan Akhil for NDTV 24/7. Devastating floods in Gujarat. What we have witnessed, that several lives have been lost, but there are several miraculous stories as well. Right now, I'm joined by Pragnesh, who survived this flood. And right now, I'm going to speak to him to get to know his version only, that what actually transpired during those 19 hours. मुझे बताइए प्रग्नेश, आप 19 घंटे तक जो है वो पेड़ पे थे, क्या कुछ हुआ?
2: पेड़ पे बैठा हुआ था मैं, उधर ही रहा था मैं, जब ये बाढ़ में बह गया था ना।
1: आप पहुंचे कैसे पहले बाप, ये बताइए। वाटर का करंट था, आप वहां पर क्या कर रहे थे कि आप?
2: हाँ, मेरे फ्रेंड के घर पे थोड़ा जो बह रहा था ना, हाँ। वो बांधने गया था, उसमें मेरा फ्रेंड थोड़ा उधर चला गया था, हाँ। तो उसके साथ मैंने उसको बचाने की कोशिश की, उसमें साथ हम दोनों बह गए। और मेरा फ्रेंड जो जो हमारा वो पेड़ था ना, हाँ। जो मैंने रहा था 29 घंटा, वो पेड़ से आगे निकल गया, फिर वो आखा पूरा टालाब डर के बाहर निकल गया, और मैं उधर ही रह गया था, हाँ। और मेरी उधर रहा था मैं, तो बाद में क्या है, मैं पानी ज़्यादा भर गया था ना, इसीलिए जा नहीं पाया।
1: तो इसीलिए मैंने, आप जो पूरी रात वहाँ पे थे, आपको डर लगा होगा, सांप बिच्छू कीड़े, डर तो लगा होगा?
2: डर तो थोड़ा लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी।
1: आपके ज़िंदगी और मौत के बीच का जो फासला था बहुत कम था, तकरीबन 20 फीट से कम रहा होगा। पूरी रात आप नीचे पानी देखते रहे और पेड़ पर बैठे रहे, है ना? उम्मीद थी लोग आएंगे, NDRF की टीम आएगी, कोई बचाएगा?
2: उम्मीद तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। पूरी रात मेरे को निकालने की थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। हम
1: अच्छी बताइए, आप शाम में, दिन में के आसपास, दिन में तकरीबन दोपहर में 3 बजे के आसपास फंसते हैं उस पेड़ पे, और 19 घंटे तक रहते हैं। दिन के दूसरे दिन जो है 10 बजे 11 बजे आपको निकाला जाता है, तो इतने देर के बीच में नींद आई, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ? उस मोमेंट में क्या चल रहा था, जहन में क्या चल रहा था? नींद आई थी,
2: पूरी उड़ गई थी मेरी।
1: 10 मिनट के लिए सोए?
2: 10 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। अगर नींद आ गई, मैं नीचे गिर गया, तुम क्या हो सकता है, मालूम है ना आपको।
1: सांप आपको डर लग रहा था?
2: सांप आपको डर तो नहीं लगा था इतना ज्यादा, लेकिन नींद नहीं आई थी और हिम्मत नहीं आ रही थी।
0: Switching tracks now, the Ram Temple donation controversy is said to be dominating the parliament this morning. This with the opposition preparing to demand a discussion over its allegations.

0: Regarding the handling of the temple donations, the row intensified after independent MP Pappu Yadav's skit in Parliament, which referred to the alleged Chanda Chori, triggering a sharp political reaction. The BJP has strongly rejected the opposition's allegations, accusing it of politicizing matters of faith. The party has alleged that the Parliament skit hurt Hindu sentiments.
1: चोरी से उस चोरी को रोकना है और उस चोरी का जिन पर इल्ज़ाम लगा है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब वो कैसे कह रहे हैं, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में कोई जाके उस पवित्र जगह पर जाकर चोरी करे, जो चंदा मंदिर के लिए आया है या मंदिर के काम के लिए आया है वो चोरी करे, तो उस पर क्या कहते हैं। हमने सरकार की तरफ से ये नहीं सुना कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, सुना नहीं, SIT बना ली है। SIT बताएगी कि ये गलत हुआ कि सही हुआ, खुद क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत हुआ।
2: पप्पू यादव जी ने जो किया था वो राम मंदिर के सब का जिस तरह से अपमानित हुआ है, जिस तरह से वहाँ लूट हुई है, चोरी हुई है, उसको उजागर करना चाहते थे और सरकार अभी तक मूक दर्शक बनी हुई है, तो इसलिए उन बातों उसको FIR होता है या केस मुकदमे होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के अंदर बहुत रोष है राम मंदिर की चोरी को लेकर, और जिन लोगों ने बड़ी आस्था के साथ सद्भाव के साथ उन्होंने चढ़ावा किया था और वो चढ़ावा गायब हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।
3: तो संसद में जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी।
2: चोरी पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि जिस राम मंदिर का सारा इंतज़ाम, चाहे तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं चाहे वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनके रहते हुए और इस तरह से चोरी हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है।
3: सोमवार को आप मांग करेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा।
2: बिल्कुल,
4: देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी ये कंपनी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के भगवा रंग को लेकर जिस तरीके की ड्रामाबाजी उन्होंने लोकसभा के सामने, मकर द्वार के सामने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। और हिंदू धर्म के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी धर्म के साथ करने की आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन से ही राह निकलती है, तो जितना डिस्कशन होगा दोनों हाउसेज में वो अच्छा है देश के लिए।
0: Right, so that's it. That has sparked a lot of reactions that have come about. And of course, we saw that a shoe was hurled at him. And this took place at his Delhi residence when he was holding a press conference. And that is after the Ram Temple donation controversy that, of course, has led to that skit, the row that has intensified after that skit that he, Pappu Yadav skit in Parliament, which referred to the alleged Chanda Chori, triggering that sharp political reaction. Well, we have, my colleague Aishwarya joining us. Aishwarya, take us through, what happened yesterday when there was that press conference at his residence of Pappu Yadav, and also the political reactions that are coming about. Because, while hitting back, of course, the opposition is saying that weren't your sentiments hurt when there were, those allegations that were made against the donations that were made at the temple in the first place?
5: Well, remember several priests all across the country earlier condemned the act of Pappu Yadav in the parliament, and it was condemnable according to them, as it was an insult to all the priests what Pappu Yadav did as far as the skit in the parliament is concerned. Followed by that, there were growing chorus that Pappu Yadav should apologize. And what certainly transpired at the press conference of Pappu Yadav, it was alleged that a person tried to attack him, and there was CCTV evidences that were collected. It was alleged that there was certain people who were already have been facing the criminal charges, and certainly it was these people who tried to attack Pappu Yadav, and FIR investigation is something that the close associates of Pappu Yadav have been demanding on the entire incident. But it is, of course, the opposition parties clearly reacting to it as well, and clearly standing along with Pappu Yadav, stating that this is something

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
8: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
7: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
3: What we're sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
7: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
6: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
3: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
8: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
7: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: All right, the latest we're tracking this morning, the opposition is meeting this morning to decide its strategy for the rest of the session. Floor leaders from both the Rajya Sabha and the Lok Sabha, they are scheduled to meet at 10 a.m. today. This meeting, as you know, comes at a time when the opposition has been attempting to keep the spotlight on issues ranging from the Ram Temple donation controversy to paper leak allegations, the police brutality we witnessed in the national capital, and other matters that deserves a fuller discussion inside Parliament. Before we get in the lowdown from Aishwarya Jain, listen in to what KC Venugopal and Manish Tiwari have said.
1: We will raise the same issue of Home Minister's explanation in the House. His presence and explanation in the House on the lathi charge and the firing of Delhi students.
2: चाहे जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई है और चाहे राम मंदिर के गोलक में जो कथाकथित धांधली हुई है उसके ऊपर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती संसद में। हम निरंतर और लगातार इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि सोमवार 20 जुलाई को जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, जिस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन्स का प्रयोग किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी ज़रूरी है और सरकार को सदन के सामने आके उसके ऊपर वक्तव्य देना चाहिए।
0: So Parliament is set for another day of fireworks, we're given to understand. There is a key opposition meeting at 10 a.m. in Mallikarjun Kharge's chamber, and the opposition, we're told, is set to raise the police crackdown in Parliament.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
4: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: For now, we will of course get in touch with Aishwarya Jain for all the finer developments. All right, Parliament is headed for another political flashpoint today, this time over allegations linked to donations at the Ram Temple in Ayodhya. You see, the opposition says that it will demand a discussion on what it calls serious irregularities in the handling of temple donations and is pressing for a Supreme Court monitored investigation. And this row intensified after independent MP Pappu Yadav's skit in Parliament, which referred to alleged chanda chori, triggering sharp political reactions. The BJP hit back, accusing the opposition of exploiting a matter of faith for political ends and alleging that a skit performed in Parliament hurt Hindu sentiments. So today's debate is likely to revolve around two questions. Is this simply a criminal investigation that should be left to the police? Or does it warrant wider parliamentary scrutiny because it concerns the administration of one of India's most significant religious institutions? And politically, will the focus remain on the allegations or on the manner in which the opposition has chosen to raise them? Listen in to the crucial reactions before we get a lowdown for you.
1: को ठेस चोरी से नहीं पहुंची। वो ये कहते हैं कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है चोरी से। उस चोरी को रोकना है और उस चोरी का जिन पे इल्ज़ाम लगा है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब वो कैसे कह रहे हैं, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में कोई जाके उस पवित्र जगह पर जाकर चोरी करे, जो चंदा मंदिर के लिए आया है या मंदिर के काम के लिए आया है वो चोरी करे, तो उस पर क्या कहते हैं। हमने सरकार की तरफ से ये नहीं सुना कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, सुना नहीं। SIT बना ली है, SIT बताएगी कि ये गलत हुआ है कि सही हुआ, खुद क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत हुआ।
2: पप्पू यादव जी ने जो किया था वो राम मंदिर के सब का जिस तरह से अपमानित हुआ है, जिस तरह से वहाँ लूट हुई है, चोरी हुई है, उसको उजागर करना चाहते थे और सरकार अभी तक मूक दर्शक बनी हुई है, तो इसलिए उन बातों उसको FIR होता है या केस मुकदमे होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के अंदर बहुत रोष है राम मंदिर की चोरी को लेकर, और जिन लोगों ने बड़ी आस्था के साथ सद्भाव के साथ चढ़ावा किया था और वो चढ़ावा गायब हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।
3: तो संसद में जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी।
2: चोरी पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि जिस राम मंदिर का सारा इंतज़ाम, चाहे तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं चाहे वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनके रहते हुए और इस तरह से चोरी हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है।
3: सोमवार को आप मांग करेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा।
2: बिल्कुल,
4: देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी कंपनी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के भगवा रंग को लेकर जिस तरीके की ड्रामाबाजी उन्होंने लोकसभा के सामने, मकर द्वार के सामने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। और हिंदू धर्म के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी धर्म के साथ करने की आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन से ही राह निकलती है, तो जितना डिस्कशन होगा दोनों हाउसेज में वो अच्छा है देश के लिए।
0: Aishwarya Jain is tracking all the final developments for us. He joins us live at the moment. Aishwarya, we were just discussing, the BJP says that the opposition is politicizing a matter of faith. It's focused on the parliament skit rather than the allegations themselves. So today, is the government expected to address the substance of the opposition's demands?
5: Well, the government is very clear that they are not running away from any discussions in the parliament. Certainly, the opposition party should come out with issues that they wanted to raise in the BAC, and if the Lok Sabha speaker approves, then certainly they are going ahead and the time will be allotted for any sort of discussions in the House as well. The opposition wants to corner the government over the Ram Temple donation theft scam, and they wanted discussions to be done inside the parliament and an answer and accountability that they need to have from the government, as the Akhilesh Yadav earlier stated. That it is Prime Minister Narendra Modi who announced in the Lok Sabha that there will be the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
3: Launch control 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
11: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
10: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
4: Launch control 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा,
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
14: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
13: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: needs to be condemned unequivocally. But maybe Mr. Pappu Yadav should also think why he makes such kind of provocative statements that react in this particular way.
1: किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है. हम लोग एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे हर धर्म का इक्वली सम्मान किया जाता है और ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है. आप अपने धर्म के बारे में कोई भी बुरा नहीं सुनना चाहेगा और पुलिस अपना काम कर रही है.
2: ऐसे लोग तो बीच में कोई रामायण को कोई राम को अपमान किया है, अब वो कहाँ है? समाज इसको उन्हें अनुमोदन नहीं करेगा. दूसरा, कानून की बात है तो कानून भी कार्रवाई कर रही है.
3: Big news coming in, and this is in regard to the Ram Mandir temple theft. There's been a complete showdown with the Samajwadi Party's MPs now staging a protest. The Samajwadi Party MPs protesting outside the parliament. We have them seeking a debate on the Chanda Chori. So there you have, of course, those banners that are being put up by the Samajwadi Party MPs, the opposition there wanting a discussion on Chanda Chori, and that is something which the opposition is going to be cornering the government in this week of the monsoon session of the parliament. Ajay Dubey, my colleague, joining us in order to get us details of this. Ajay, take us through, the kind of banners. What are those banners reading? What are the demands that are being made by the Samajwadi Party MPs in regard to the Chanda Chori theft? They want this to be brought up in the parliament. Is the government willing to speak on the matter or not?
4: See, this is the first day of the monsoon session, and let me show you the visuals. The MLAs of Samajwadi Party, they have banners in their hand, and the banners they are targeting BJP. They are targeting ruling government for the things. I am joined here by Mr. Lal Bihari Yadav. Lal Bihari Yadav ji, kya mudde hai? किन मुद्दों को लेकर खेल रहे हैं? हम देख रहे हैं चंदा चोरी ज्वलंत है.
5: सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या इस समय देश की आस्था का सवाल है, सनातन धर्म की आस्था का सवाल है. इस सवाल को लेकर के समाजवादी पार्टी जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है ये संघर्ष कर रही है कि सनातन धर्म के साथ जो इन लोगों ने विश्वासघात किया है, जो चढ़ावा जनता ने चढ़ाया था उसको चोरी कर ले गए, सनातन धर्म को बदनाम कर दिए, जो है भगवान प्रभु राम के मंदिर को जो है इन लोगों ने जो है बदनाम कर दिया. इसलिए जो है समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये संघर्ष कर रही है.
4: मैम, आप बताएं क्या संदेश है छात्रों के मुद्दों को लेकर? क्या
6: देखिए, पीडीए के ताकत में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. छात्रों का जो है आंदोलन अभी हुआ, वो बच्चे मारे गए, कितने बच्चे मर गए प्रोटेस्ट में, और किसान आज परेशान है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है.
4: Here we can see in the visuals the MLAs, they have posters in their hand, they have posters in the favor of students, they have posters in according to the things happened regarding Ram temple, they have posters with different messages. Vinayak ji, kya sandesh hai?
7: Sandesh bilkul saaf hai. आज से सदन है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. जो भी चढ़ावा चोरी हुआ था उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है. ये कई बार की घटनाएं हैं जो कि बीजेपी उसको दबाना चाहती है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बीजेपी के काले कारनामे को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे.
4: We have a symbolic donation box here. We can see this is a donation box. MLA is having it in his hands and continuously they are giving message with this donation box. विधायक जी, क्या इस दान पेटी से क्या संदेश है?
8: दान पेटी में जितना दान आता है भाजपा वाले चुरा के ले जाते हैं. ये भाजपा वाले दान पत्र को भी नहीं छोड़ते. भगवान राम का भी जो चढ़ावा आया उसे पूरा चुरा के ले गए और जरा जरा से प्यादों को बंद किया, असली उसमें छोड़ दिए. इसकी पूरी जांच हो. रुपया कहाँ गया? चंपत राय ने कहाँ भेजा रुपया?
4: Here MLAs, they are continuously opposing and they have issues in posters related with issues they have in their hands which are related with the donation thing and with the student issues also. So MLAs of Samajwadi Party, they are aggressive today. They are in assembly today. They are in the first day of monsoon assembly. They are targeting the government. They are targeting Yogi Adityanath and continuously chanting their slogans.
3: Ajay, thank you for getting us details and all of this happening just before that parliament session that is going to be taking up, you know, very key bills and of course the opposition wanting to center the government on these fronts as well, and that includes the Ram temple theft. This is going to be day 11, starting at 11 o'clock, literally half an hour's time from now, but we are seeing that protest that is taking place in connection to the Ram temple donation controversy. Now, that is going to be dominating the parliament, but with the opposition, they're preparing to demand a discussion over the allegations regarding the handling of the funds. The now intensified, basically, after MP Pappu Yadav's skit that took place in parliament, which referred to the alleged Chanda Chori, triggering sharp political reactions. The BJP, of course, has strongly rejected the opposition's allegations, accusing it of politicizing matters of faith. The party has alleged that the parliament skit hurt the sentiments of Hindus.
9: को ठेस चोरी से नहीं पहुंची, वो ये कहते हैं कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है चोरी से, उस चोरी को रोकना है और उस चोरी का जिन पे इल्ज़ाम लगा है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब वो कैसे कह रहे हैं, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में कोई जाके उस पवित्र जगह पर जाकर चोरी करे जो चंदा मंदिर के लिए आया है या मंदिर के काम के लिए आया है, वो चोरी करे तो उस पर क्या कहते हैं। हमने सरकार की तरफ से ये नहीं सुना कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, सुना नहीं, SIT बना दी है, SIT बताएगी कि ये गलत हुआ कि सही हुआ, खुद क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत हुआ।
10: पप्पू यादव जी ने जो किया था वो राम मंदिर के सब का जिस तरह से अपमानित हुआ है, जिस तरह से वहाँ लूट हुई है, चोरी हुई है, उसको उजागर करना चाहते थे और सरकार अभी तक मूक दर्शक बनी हुई है, तो इसलिए उन बातों उसको FIR होता है या केस मुकदमे होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के अंदर बहुत रोष है राम मंदिर की चोरी को लेकर, और जिन लोगों ने बड़ी आस्था के साथ सद्भाव के साथ उन्होंने चढ़ावा किया था और वो चढ़ावा गायब हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।
11: जो संसद में जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी।
10: चोरी पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि जिस राम मंदिर का सारा इंतज़ाम, चाहे तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं चाहे वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनके रहते हुए और इस तरह से चोरी हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है।
11: तो सोमवार को आप मांग करेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए लोग?
10: बिल्कुल।
12: देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी कंपनी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के भगवा रंग को लेकर जिस तरीके की ड्रामाबाजी उन्होंने लोकसभा के सामने, मकर द्वार के सामने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, घटिया है, और हिंदू धर्म के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी धर्म के साथ करने की आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन से ही राह निकलती है, तो जितना डिस्कशन होगा दोनों हाउसेज में वो अच्छा है देश के लिए।
3: Welcome back. Switching tracks now to Karnataka and the cabinet expansion that's going to be taking place today evening, with only the governor who has set aside time for that swearing-in ceremony. That ceremony that's going to be taking place at 4:05 this evening in Karnataka. So we're talking about 20, in fact, MLAs who have been considered for that cabinet expansion. This is 2.0 of the Karnataka cabinet, and this is 2 months after D.K. Shivkumar has taken charge as the new chief minister of the state. Ritu, my colleague, joining us in order to get us details. Ritu, any names doing the rounds as to who all can be part of this new cabinet expansion, given the fact that, of course, the opposition has always been hitting out at the Congress party for delaying this matter, given the fact that it's been over 2 months since D.K. Shivkumar took charge as a new chief minister?
13: Well, of course, you see, today is when that D.K. Shivkumar marks 2 months of becoming the chief minister of the state. But apparently, you see, more importantly, before even the names, interestingly, the AICC leaders were supposed to release this list around 10 a.m. as that we had learned. But so far, you see, it's almost been 30 minutes delay as well in that we are yet to see the list to be officially out there again. But now what I'm also picking up at this point in time is also that while that the official communication has not been been provided to that of a Lok Bhavan. You see there the governor's engagement shows that, you know, he has set the time aside, tentative time basically, you see, that is post 4 o'clock, that he set it aside.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: उसको गलत तरीके से रखने का काम किया।
1: हम तो पूरी निष्पक्षता के साथ सीआईडी की जांच करवा रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में भी पेपर लीक हो गया है, मौन व्रत उपवास क्यों नहीं अभी तक दिया इन लोगों ने संसद के गांधी जी के प्रतिमा के नीचे, दे देते अभी तक। तो इस राज्य में अपनी राजनीति रूप से खोई हुई जमीन भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य को आगे करके तलाशने का काम कर रही है।
2: वो छात्र है और वो छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है।
3: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर इस स्थिति पैदा हो। अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोले और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए।
4: The flood situation remains grim in many parts of the country. Let's start with Assam, which continues to remain grim with relentless monsoon rains and overflowing rivers, leaving a trail of devastation across several districts. The worst hit district includes Sivasagar, Golaghat, Jorghat, Charaideo and Dhemaji. In Sivasagar alone, more than 60,000 people across nearly 160 villages have been impacted, while over 1.36 lakh people remain affected across the state. Actor Randeep Hooda joined relief efforts on the ground, distributing essential supplies and urging people to extend support to flood-hit communities. The Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, has reviewed the situation on the ground and taken stock of the rescue efforts.
5: अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, हर रोज़ चीज़ों की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो आज यहाँ पे हम लोग टारपोलिन जो होते हैं वो दे रहे हैं, कुछ चप्पलें, घर के यूटेंसिल्स वगैरह बांट रहे हैं, और इतने इन लोगों के पास इतना बुरा हाल है फिर भी मेरे को सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं असम के, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग देश में आके किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करें। मीलों तक ये पानी फैला हुआ है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। लाखों लोग इस तरह बुरी तरह पानी के अंदर घरों की छतों पे रह रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि सब लोग जो भी कर सके यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए।
4: Gujarat, now heavy rainfall continues to wreak havoc across several parts of the state. A flood-like condition has disrupted normal life in multiple districts. Rescue and relief teams remain on standby with more rain forecasts for parts of the state. In Surat, flood waters have submerged stretches of the state highway 65, impacting traffic movement. Valsad has witnessed severe waterlogging following torrential rains, while in Morbi, authorities are closely monitoring the rising water levels in the Devi and Kankavati rivers. In Surendranagar, inundated roads have disrupted connectivity to several villages, leaving residents stranded. Amid heavy floods, a man clings to a tree for 19 hours to save himself from rising water levels. That video that you see on your screen has gone viral. 19 hours to be rescued from that tree.
6: Going to show you the visual of this very hospital which they were talking about. This hospital is known as Ayushman Arogya Kendra. This is one of the primary health care centers in this area, and I would like to show from this very side. Right now you can see the condition of this very hospital. The entire things of this very hospital have been kept just outside. Not only chairs and tables, apart from that you can see the almirah, the catalogs, medicines, equipment over here. Here I can find out the machines over here. Apart from that, the BP machine can also be seen over here. I would like to just show you the visual of this BP machine. which is broken now. And apart from that, I can also see visual of some strips and these tablets over here. These are the straps of tablets. Right now, I can also figure out some straps. These are the tablets here, you can see. So this is the actual condition right now on ground zero in Navsari's Deodha village. Right now, you can see these are the visuals that I'm bringing you live. So these are tablets, sachets. So you can see the impact, that how badly the entire region has got impacted due to the flood water. Once I went inside to just check out this very entire hospital, but nothing was at its place. Everything has been kept outside. And you can see these are the workers who are working right now and trying to reassemble things clearly at this stage, so that this hospital can again become functional. And while I was speaking to one of the villagers, they have suggested that approximately there are 4,000 to 5,000 people of this village who come to this nearby Ayushman Arogya Mandir Hospital. So this is a primary healthcare center, and we are bringing you exclusively all the live footages from ground zero, that how badly this year Gujarat has been impacted due to the flood scenario. With British journalist Pawan Akhil for NDTV 24/7. Devastating floods in Gujarat. What we have witnessed, that several lives have been lost, but there are several miraculous stories as well. Right now I'm joined by Pragnesh, who survived this flood, and right now I'm going to speak to him to get to know his version only, that what actually transpired during those 19 hours. Mujhe bataiye Pragnesh, aap 19 ghante tak jo hai wo ped pe the, kya kuch hua?
7: Ped pe baitha hua tha main, udhar hi raha tha main, jab ye baad mein beh gaya tha na.
6: Aap pahunche kaise pehle bhai, ye bataiye, water ka current tha, aap wahan par kya kar rahe the ki aap?
7: Ha, mere friend ke ghar pe thodo जो बह रहा था ना, हाँ। वो बांधने गया था, उसमें मेरा फ्रेंड थोड़ा उधर चला गया था, हाँ। तो उसके साथ मैंने उसको बचाने की कोशिश की, उसमें साथ हम दोनों बह गए, और मेरा फ्रेंड जो हमें हम, हाँ, जो हमारा वो पेड़ था ना, हाँ, हाँ। जो मैंने रहा था 29 घंटा, वो पेड़ से आगे निकल गया, फिर हाँ। वो आखा पूरा टालाब डर के बाहर निकल गया, और मैं उधर ही रह गया था, हाँ। और मेरी उधर रहा था मैं, तो बाद में क्या है, मैं पानी ज़्यादा भर गया था ना, इसीलिए जा नहीं पाया,
6: तो इसीलिए मैंने, आप जो पूरी रात वहाँ पे थे, आपको डर लगा होगा सांप बिच्छू कीड़े, डर तो लगा होगा?
7: डर तो थोड़ा लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी।
6: आपके ज़िंदगी और मौत के बीच का जो फासला था बहुत कम था, तकरीबन 20 फीट से कम रहा होगा। पूरी रात आप नीचे पानी देखते रहे और पेड़ पर बैठे रहे, है ना? उम्मीद थी लोग आएंगे, NDRF की टीम आएगी, कोई बचाएगा?
7: उम्मीद तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी, पूरी रात मेरे को निकालने की थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। हम,
6: अच्छा बताइए, आप शाम में, दिन में के आसपास, दिन में तकरीबन दोपहर में 3 बजे के आसपास फंसते हैं उस पेड़ पे, और 19 घंटे तक रहते हैं, दिन के दूसरे दिन जो है 10 बजे 11 बजे आपको निकाला जाता है, तो इतने देर के बीच में नींद आई, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ? उस मोमेंट में क्या चल रहा था, जहन में क्या चल रहा था? नींद आई थी,
7: पूरी उड़ गई थी मेरी।
6: 10 मिनट के लिए सोए?
7: 10 मिनट के लिए भी नहीं सोया था, अगर नींद आ गई, मैं नीचे गिर गया तो क्या हो सकता है, मालूम है ना आपको,
6: इसीलिए सांप आपको डर लग रहा था?
7: सांप आपको डर तो नहीं लगा था इतना ज्यादा, लेकिन नींद नहीं आई थी, नींद और हिम्मत नहीं आ रही थी।
4: Courage right there in front of you with our correspondent speaking to the man who was stuck there for almost 20 hours. Now the Kerala problem also continues, where it remains in the grip of severe rainfall, with the death toll rising after a series of rain-related incidents across the state. At least 8 people have lost their lives as heavy showers triggered floods, landslides and other accidents. The IMD has issued a red alert for at least 8 districts, warning of heavy to very heavy rainfall in the coming days. District authorities have been put on high alert, with rescue and relief teams mobilized in affected areas. The state government has urged people to remain cautious as water levels continue to rise in several regions as more rain is now forecast.
8: Batters the district of Pathanamthitta for the last 24 hours, and the water level is increasing. Right now we are standing at a place called Edisheri Mana in Armula town, very close to the Armula town. As you can see, the main road to this town is completely inundated, and in fact filled with water to up to more than chest level. At least 4 feet of water is there all around. People have started to use small boats for traveling across different places, but most of the homes over here are completely locked away from all the basic access. In fact, people are living in the first floor of the building. All the shops in this vicinity are completely closed. People are completely locked away, and what we know is that many of them are scared, many of them staying on the top floor of the building, and we are trying to go and access some of these homes over here, and the water level is increasing is what they are saying. Now, you can see over here, the water is, it's like almost a river that is completely, the road is completely made like a river. In fact, the Pampa River is very close by. It is this water, what you see, is because of the swelling of the Pampa River. And you can see, clearly see the other side, the college also. The College of Engineering in Aramulla is completely submerged.
4: Our reporters will continue to bring you the latest from rain-impacted areas in the three states. But for now, we're slipping to a short break. We come back with some good news. India takes over the Commonwealth Games after a top four finish. The flag now travels from Glasgow to Ahmedabad. More on that in moments from now.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
8: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
7: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
11: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट एज दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
9: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
8: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: In a matter of seconds, another life is lost on an Indian road. This viewer is not an isolated incident. It is a reminder of a grim reality. On our roads, death often doesn't come because of reckless driving alone. It comes because of crumbling infrastructure, neglected potholes, poor maintenance, and official apathy. Every monsoon, the same images return. Roads disappear underwater, potholes become invisible, warnings come after tragedies, repairs begin after cremations and funerals. The question is simple. Why is human life so cheap on India's roads? How many more deaths will it take before dangerous roads are treated as an emergency and not seasonal inconvenience, not seasonal maintenance? A quick check on the headlines at this hour. Karnataka cabinet set to expand today. NDTV accesses the full list of ministers. Oath-taking ceremony scheduled for 4:05 PM. New faces in DKS's team. Also, the Kaveri water war heats up. Udayanidhi

0: अटपटासा कर रही हैं। मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
1: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं वो, देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
0: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
1: एक सवाल और, ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
0: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
1: मैं NDTV से हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
0: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
1: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
0: आपसे पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
1: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
2: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए। नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही हैं।
1: आखिरी सवाल, एक एक एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
2: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही हैं, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
1: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
0: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
1: नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूँ।
3: सवाल मत पूछो, वो
0: कोर्ट से पूछ लीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज फिर मिलेंगे।
1: आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे तमाम आरोप?
0: कुछ नहीं कहेंगे।
1: यदि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं तो
0: उनका
1: सुप्रीम कोर्ट
0: उनका अधिकार है, उनका राइट है।
1: राजनीति पे आएंगे, आपके बेटे कहने जल्दी आप संसद में नजर आएंगे,
0: ये उनका राइट है।
1: आप राजनीति में दोबारा से कदम रखेंगे?
0: ये जनता को तय करना है,
1: ये पार्टी को तय करना है।
0: अब पार्टी तय करे या जनता तय करे, जो तय करेगी वो करेंगे।
1: लेकिन आपने तब इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी ने भी आपको निष्कासित नहीं किया।
0: अब आप झगड़ा करने के मूड में आए, उस दिन भी झगड़ा कर रही थी।
1: मैं तो सवाल कर रही हूँ ब्रिजभूषण जी, बहुत ही संगीन मुद्दा था ये।
0: भी किसी के बच्चे हो ऐसा मत करो
1: सर, वो बेटियाँ भी किसी की बच्ची हैं,
0: आप उनसे पूछ लो जाकर के।
1: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दैट वाज ब्रिजभूषण शरण सिंह इन कॉन्वर्जेशन विद NDTV हु एक्चुअली डिड नॉट यू नो आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आस्क्ड हिम। इन फैक्ट ही मेड सेवरल सेंसेशनल स्टेटमेंट्स एक्चुअली कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। विद कैमरा पर्सन राकेश माले, आई एम तेजश्री For NDTV from Delhi.
4: मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने देखा कि काफी गंभीर आरोप लगाए गए, एक किस्म से ट्रायल से पहले एक किस्म से पैरेलल ट्रायल भी चलता रहा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
9: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
8: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
12: so many attacks,
11: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
11: He has seen history break. Live, unfiltered, 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right and Center.
11: Hard facts.
12: War-struck country.
11: Hard questions.
12: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
12: At Srinagar.
13: INS Vikrant.
12: Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
1: This location from Tel Aviv
0: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
2: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
3: The Ayatollah Khamenei is gone.
4: There has been a missile attack right behind me,
5: and we need to rush into a shelter.
6: Heading there.
7: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
0: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज.
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
10: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों.
11: कुछ तो बात है इस दिल में.
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
13: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
14: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट.
15: Welcome to NDTV 24/7. I'm Radhika Ramaswamy. We'll first take a look at all the top headlines we are tracking at this hour. Karnataka cabinet set to expand today. NDTV accesses full list of ministers. Oath-taking ceremony scheduled for 4-5 p.m. Many new faces in new DKS team. Kaveri water war heats up. Udayanidhi trains guns on Vijay, calls his cabinet jokers, says TVK failed.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
9: बैठ सकते हैं आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है?
10: कौन?
9: बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: श्रीनगर तक अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
8: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
16: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: मूड जो आ जा रहा है वो बता देगा देश का मूड क्या है, देश की जनता का क्या मूड है।
1: Breaking updates from the apex court. Supreme Court has formed a panel on Jantar Mantar protest. In fact, that's going to take place. Supreme Court panel under retired Supreme Court judge. Supreme Court says it will lay down guidelines for pellet gun use as far as the protests are concerned. The Supreme Court had been hearing petitions concerning the violence during the student protest that happened a few days back. One set of petitions sought action against police officials who had allegedly used excessive force. So now the Supreme Court there to form panel on these protests, and this panel under retired Supreme Court judge. Let's go straight across to Nupur on this. The apex court had been hearing the petitions concerning the violence that happened at the protest. Now it is to form a panel, and it will be a panel under retired Supreme Court judge.
2: Yes, Radhika, today a brief hearing was held at the Supreme Court regarding the protest march on July 20 from Jantar Mantar and the following police excesses that have been alleged by several petitioners in the top court. The court today clarified its earlier order, by which it said that when it said that people who have criminal antecedent, it only meant serious and heinous crimes. Also, it said that allowed the police from different states to quash or withdraw FIRs against students. And thirdly, it has said that in the next hearing, it will form a panel which will lay down guidelines for use of pellet guns. The panel will also be probing the entire sequence of events that happened on July 28th. So the Supreme Court panel will be headed by a former Supreme Court judge. However, the petitioners had prayed that a former CGI may be there, but the court said that it is yet to come up with a name who agrees to be part of this panel, and a former Supreme Court judge is likely to be to head this panel, which will not only look over this entire investigation but also now oversee how things are several guidelines need to be laid down. Remember, it's not just only pellet guns that the Supreme Court has said that it will lay guidelines to regulate. It has also said that it will bring SOPs for police personnel on how to deal with the crowd. It will bring SOP for government on how much security gear the police personnel should have. So a lot of prayers are there in front of the top court. Next hearing is on August 19, and we'll see what the court does on that day.
1: All right, so the next hearing is on August 19. Thank you, Nupur, for getting us all of those important details from the Apex Court. The confrontation over the July 20th student protest in Delhi dominates proceedings in Parliament today, with the opposition cornering the centre over the police action. Opposition MP raised slogans against Home Minister Amit Shah and questioned his absence from the Parliament. Congress leaders have demanded that Home Minister Amit Shah make a statement in both the houses, alleging students were subjected to a brutal lathi charge and the use of pellet guns during the protest. They've accused the government of repeatedly refusing to allow a discussion. The BJP, however, has strongly defended the police action and rejected allegations of atrocities against students, claiming that criminal elements had infiltrated these demonstrations. Let's take a look at some of the reactions.
3: Chahe jo chhatron ke upar barbarta hui aur chahe Ram Mandir ke Golak mein jo kathakathit dhandli hui hai, uske upar sarkar charcha nahi karna chahti sansad mein. Hum nirantar aur lagatar is baat ki mang karte aa rahe hain कि सोमवार 20 जुलाई को जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, जिस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन्स का प्रयोग किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी ज़रूरी है और सरकार को सदन के सामने आके उसके ऊपर वक्तव्य देना चाहिए।
4: बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, ये बच्चों की आड़ में उसमें आपराधिक तत्व थे। हमारे 128 से ज्यादा उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें आईपीएस अफसर भी है। बंगाल में आतंकवादी पकड़े हैं, उनका ये था कि पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद की प्लान था कि इसमें पुलिस के वर्दी में घुस करके यहाँ पर कुछ छात्रों को मार दो, जिससे पूरे देश में आग लगा सकें।
1: Let's shift our focus now. Former Wrestling Federation of India Chief Brij Bhushan Charan Singh has been acquitted by the court. Rouse Avenue Court clears Brij Bhushan of harassment charges. Wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punia have reacted to his acquittal and said that they will appeal against this. The court acquitted him after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond a reasonable doubt. The judgment also noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of the doubt after his acquittal in the sexual harassment case. Former WFI Chief Brij Bhushan Charan Singh said he knew from day one that he was not guilty. He said he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision clearing him of harassment charges. Let's take a look at what exactly he said and other reactions coming in as well.
5: Well, a very heartbreaking moment for all those six women wrestlers who fought a case against ex-WFI chief and ex-BJP MP Brij Bhushan Charan Singh. Unfortunately, as of now, the court has said that he is not guilty. And currently, I am being joined by the man himself on whom there were allegations of sexual harassment by these women wrestlers. Brij Bhushan Charan ji, Singh Charan ji, aaj aapko bari kar diya hai court ne. Vipaksh keh raha hai ki ye bahut hi nindaniya hai, aapko jis tarah se bari kiya hai. Aap kya kahenge is par?
6: Is par kuch nahi kahenge. Aur sawal poochiye.
5: Ye jo pura ghatnakram raha, 2 se 2.5 saal ka, bahut hi sangharsh kiya un mahilaon ne, apni ladai ki, jantar mantar par baithe, tamam jagah protest kiye, laathiyan khayi, police ne unhe detain bhi kiya. लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
6: दुख भरा जीवन समय है उनके लिए बहुत दुख भरा समय है और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं. उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ.
5: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी.
6: उनकी पीड़ा वो बताएंगी. मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ.
5: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे.
6: वो नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊँ तो जूता.
5: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियाँ हैं वो, हम देश की बेटियाँ हैं वो, देश के लिए मेडल ला चुकी हैं.
6: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी.
5: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं.
6: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
5: मैं NDTV से हूँ. उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे.
6: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं. अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं.
5: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
6: पूछे जाकर. देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया.
5: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा.
7: एक आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ. आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही है.
5: आखिरी सवाल, एक एक एक वीडियो वायरल हुआ था आपका.
7: शांत रहो और जरा लगाइए इनके तरफ. भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही हैं, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ. मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं.
5: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं. आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं. मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था.
6: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं.
5: नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूँ.
8: सवाल मत पूछो, वो
6: कोर्ट से पूछ लीजिए. प्लीज प्लीज प्लीज फिर मिलेंगे. प्लीज
5: मैम प्लीज, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तमाम
6: कुछ नहीं कहेंगे.
5: यदि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं तो
6: उनका
5: सुप्रीम कोर्ट जा,
6: उनका अधिकार है, उनका राइट है.
5: राजनीति पे आएंगे, आपके बेटे कहने जल्दी आप संसद में नजर आएंगे,
6: ये उनका राइट है.
5: आप राजनीति में दोबारा से कदम रखेंगे?
6: ये जनता को तय करना है,
5: ये पार्टी को तय करना है.
6: अब पार्टी तय करे या जनता तय करे, जो तय करेगी वो करेंगे.
5: लेकिन आपने तब इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी ने भी आपको निष्कासित नहीं किया था तब.
6: अब आप झगड़ा करने के मूड में आए, उस दिन भी झगड़ा कर रही थी.

0: का सवाल कर रही हूँ ब्रिजभूषण जी, बहुत ही संगीन मुद्दा था ये।
1: किसी के बच्चे हो ऐसा मत करो
0: सर, वो बेटियाँ भी किसी की बच्ची हैं,
1: आप उनसे पूछ लो जाकर के।
0: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दैट वॉज ब्रिजभूषण शरण सिंह इन कॉन्वर्जेशन विद NDTV, हु एक्चुअली डिड नॉट यू नो आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आस्क्ड हिम। इन फैक्ट ही मेड सेवरल सेंसेशनल स्टेटमेंट्स, एक्चुअली कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। विद कैमरा पर्सन राकेश माले, आई एम केशरी फॉर NDTV फ्रॉम दिल्ली।
2: मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने देखा कि काफी गंभीर आरोप लगाए गए, एक किस्म से ट्रायल से पहले एक किस्म से पैरेलल ट्रायल भी चलता रहा। सियासी तौर पर उनको लोकसभा चुनाव तक से उनको दूर रहना पड़ा, आप ने चुनाव लड़ा, अब जबकि फैसला आ गया है, अब क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की अगला उनका कदम क्या होगा?
3: मैं बोलना चाहता हूँ, इसका हर जाना कौन भरेगा? एक अच्छा खासा करियर चलता, करियर एक मजबूत नेता, एक मेहनती नेता जो क्षेत्र में जाते थे, सबके लिए काम करते थे, उनको 2-3 साल के लिए बैठा दिया गया, इसका हर जाना कौन भरेगा? ये राहुल गांधी बनेंगे या प्रियंका गांधी बनेंगी या सपा भरेगी, कौन भरेगा? जो बिना जाने बिना सच्चाई जाने जाके प्रोटेस्ट में बैठ गए, ये कोई तरीका है? आज मैं बस आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो हमारा नुकसान किया उसका हर जाना कौन भरेगा? और अब बहुत जल्दी आप देखेंगे मेरे साथ आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे।
4: महिला रिजर्वेशंस की बात है और दूसरी तरफ ही महिला रिजर्वेशंस की बात है और दूसरी तरफ ही
5: ये न्याय की प्रक्रिया है। इसमें जो पेटिशनर हैं उनको स्वतंत्रता है कि आगे वो अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आगे जो भी उनको इस बात की स्वतंत्रता है और न्याय होना चाहिए, यही हमारी।
6: क्या आपको लगता है निचली अदालत से झटका लगा आप लोग?
5: देखिए अभी ये अपना मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो क्या उसमें सारी बात है, तो उसके बाद ही कुछ उस पर बात मैं समझता हूँ विस्तृत तौर से कहूंगा। मगर न्याय की प्रक्रिया ये है कि जो भी पेटिशनर हैं उनको स्वतंत्रता है इस देश में कि न्याय अगर जो है उनको लगे कि न्याय पूरा नहीं हुआ है तो वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, उनको इस बात का स्वतंत्र अधिकार है।
7: All right, with that, it's a wrap on this bulletin. We'll be back with more news and updates. Stay tuned with NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: And the celebration has already started here. Remember, 19 rounds have happened and Prashant Kishore has taken the lead of around 12,000 votes, so which is a very substantial number. First, I'll just show you as to how the crowd is behaving out here. The crowd you see on air is mostly of Prashant Kishore's Jan Swaraj party. The BJP people, the BJP supporters are nowhere to be seen. So since the first round of polling started, Prashant Kishore's people are parked here and he has taken a lead. So it's a very substantial, very significant lead. And you can see the yellow gulals over there. They are Prashant Kishore's supporters and they have been dancing on the streets since morning, since the first round of counting happened. पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर ने लीड लिया है. आपको क्या लग रहा है अभी भी ऐसे 32 राउंड
1: सर पूरा बिहार जीत चुका है. अंतरात्मा से आज आंसू निकल रहा है लेकिन हम लोगों को आज उम्मीद एक जग गया है कि हम लोग का कोई आवाज़ उठाने वाला तो अब आया. अभी तक हम लोग तरस खा रहे थे, हम लोग का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था. बहुत पिटे हैं इस सरकार में, पूरा देह तोड़ दिया है मार के, बहुत लाठी खाए हैं. बस अपना पढ़ाई शिक्षा की मांग को लेकर और कुछ नहीं हम मांगते थे. जब यूनिवर्सिटी में कहते थे 3 साल का डिग्री 3 साल में दे दो तो बहुत पिटा है, बहुत मार खाया सर. और विपक्ष विहीन यह सरकार, आज तक कोई नहीं हम लोग का आवाज़ बन पाया. कोई तो एक उम्मीद जगह है जो हमारा आवाज़ उठाएगा. बहुत अंदर से खुशी मिल रहा है और आंसू निकल रहा है. बहुत खुश है भाजपा जो हम लोग को जाति धर्म मजहब में बांट कर रख दिया था. हम सारे एक बच्चे हैं, हमको समान शिक्षा दो, जाति धर्म में मत बांटो. हम भी धर्म के रक्षक हैं लेकिन ऐसे मत करो, समान शिक्षा दो. शिक्षा का बात हम लोग करते हैं, हम क्या तुमसे मांग रहे हैं, एक गज जमीन नहीं मांग रहे हैं. हमको शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, रोजगार दो, सही से टाइम पर परीक्षा लो और हमारा जो है सही से रिजल्ट दो. और हमारी कुछ मांग नहीं है, हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बदौलत पढ़ लेंगे.
0: So this emotional gentleman, a youth out here, and he has been, he's not a cadre by the way, he's one of the students actually who has been protesting. He was part of the Gen Z protest and now you can see the tears in his eyes. Aap bataiye ki lag to raha hai ki aapke neta jo hai Prashant Kishore, aap Jan Swaraj se jude hue hain.
2: Ji ji ji.
0: To ab lag raha hai ki ab nikal jayenge.
2: Nikal gaye, nikalenge nahi, nikal gaye, jeete hain.
0: खाली भी बाकी है.
2: नहीं नहीं बाकी क्या है, वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बाकी है. माने जीतता है, सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं अभी. सर रथ तैयार हो गया
1: सर. एक आपके चैनल के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे सर. बिहार शांति मांगता है, शांति का प्रतीक रहा है. बहन सीता की धरती बुद्ध की धरती रही है. कोई शिक्षित को मुख्यमंत्री बना दीजिए प्लीज, आपसे विनम्र आग्रह है. कोई तो आपके पार्टी में पढ़ा लिखा है समझदार इंसान होगा, मुख्यमंत्री जी को बदल दीजिए. मुख्यमंत्री कोई पढ़ा लिखा दीजिए ताकि हमारी आवाज बन सके, वो हमारी भावनाओं को समझ सके. कौन समझेगा हमारी भावनाओं.
0: सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट विन आई वुड से. रिमेंबर दिस सपोज टू बी द बीजेपीज बैस्टियन. फॉर लास्ट 40 ईयर्स बीजेपी हैज बीन रिटेनिंग दिस सीट एंड दिस इज द सीट ऑफ बीजेपीज नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन. नाउ Prashant Kishore is making a debut. It's a political debut of a sort because for the first time he's contesting election. He's making a political debut. In last assembly election, the performance of his party was very poor. It was very dismal. Now, he is all set to enter the Vidhan Sabha and that would change the face of the Vidhan Sabha because you will have Prashant Kishore over there who's expected to raise people's voice and concerns on the floor of the house.
3: And Prabhakar, how do we see, you know, the larger implications, because these are the first elections taking place after the, you know, massive protest by the students at Jantar Mantar. Do we see any sort of, you know, implications given that these, it's you know, the first elections, first bipoles after that massive student protest?
0: It certainly has an impact, and you saw tears in this young boy's eyes when he was speaking on the camera. So this is the sentiment. He was part of the Gen Z protest. He was part of the protest which happened in Patna when there were protests happening at Jantar Mantar in Delhi. So remember, as we are told, around 1/3 of the voters out here are below the age of 25. They are youngsters, even of technically not Gen Z, they are youngsters. So that would certainly have an impact. So we would certainly be diving deep into the data once the ASI releases the final data on the online. But certainly it has had an impact and it had helped Prashant Kishore a lot.
3: That's it. And Prabhakar, also, you know, the BJP had its own challenges after the candidate that they nominated, you know, suddenly said he could not stand because of some personal reasons. Prashant Kishore himself, you know, complained about the way the police were treating voters. So there have been some amount of controversies regarding the Bankipur bipole.
0: I'm sorry, you have to be louder, you have

0: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea.
1: Welcome back. Now some more news coming in regarding BJP MP Kangana Ranaut, who has now released yet another video in which she has spoken about actors, Hindu actors and their ideology, where she has questioned how views change among so many of her fraternity who she's been in touch with. She talks about herself. She says that I used to be a moderate Hindu, but now I want to be a Sanatani, and I did party a lot in the past, but now I want to transform myself. Why is there an issue? Remember, she's been in the news lately because she called out the Gen Z protesters, calling them the garbage generation. And since then, there's been a lot of back and forth where she called out, a lot of the women protesters for the language they use, and they have attacked her. And there have been a lot of videos also from her past as a Bollywood actor that have been doing the rounds. And she has spoken now about how people change their ideologies and also talking about how she has transformed herself. Listen into what she said.
2: आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी. एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है. बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं उनको बहुत क्लोजली देखा है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि हैं वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है. यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है. लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पेपैलिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई ली, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं. हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी. आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी. हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी. आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गए, मुझे संघी बनना है. मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है. मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है, तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे.
1: All right, let's go across to Tejshree now for more. And Tejshree, Kangana Ranaut in the news, yet again. This is after many videos of her were going viral, after she called the Gen Z a garbage generation. Now she's talking about, changing your ideology, saying that I used to be something and now I want to be a Sanghi, a Sanatani. Staying in the news there, Kangana Ranaut.
3: Well, absolutely. Another controversial remark made by actress and BJP MP Kangana Ranaut, where she is actually, calling out all those actresses who do not have any kind of ideology, though they are Hindu. She has also, in fact, mentioned about how there are many such Hindu daughters in the film industry, those who are in touch with her. But actually, she has observed them and she states that they do not have any kind of ideology. But as soon as they come in touch with some kind of leftist or people, or for that matter, some communist influences, then their thinking becomes so defined and so staunchly leftist, is what she has been saying. She also, in fact, stated that I was a moderate Hindu, but now I want to be a Sanatani. Needs to be seen that how these comments are now being taken up over the social media and by the opposition parties as well.
1: All right. Thanks so much, Tejshree, for joining us with those details. We'll leave it there. With that, it's time for us to slip into a short break. News and updates continue right here on NDTV.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire? Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: Meetha ya namkeen. चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
6: सो मेनी अटैक्स,
5: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर।

0: Kishore is concerned, he's making a political debut, and he chose Bankipur, which happens to be the bastion of BJP. Now Prashant Kishore is all set to win out here, and remember, this seat has been represented by Nitin Naveen, who happens to be the national president of BJP, national president of BJP, and also this seat was with BJP for last 40 years. Now Prashant Kishore is making a debut out here, and you can see this entire street filled with the Jan Swaraj supporters. They are celebrating out in the streets. The administration has also taken a bath seat, letting them have a field day today. So very, very important, very historical win as far as this Bankipur by-election is concerned. From Patna, this is Prabhakar Kumar for NDTV.
1: All right, so Prashant Kishore set to win that Bankipur seat, and a big upset for the BJP. But now some breaking news coming in from Karnataka, where the cabinet expansion will be taking place today. This is 2 months after DK Shivkumar took charge, and now finally new faces in the cabinet. And it's a diverse list of prominent, leaders who are going to be a part of the cabinet there in Karnataka. In fact, leader Satish Jarkiholi has said that it's a mix of youth, OBCs, SCs, STs all getting prominence, and also how it's a good experiment that young leaders are future assets for the party. All right, let's return to Bihar. Prashant Kishore speaking. Let's listen in.
2: Bihar, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयंबटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
3: अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी?
2: हमारी
3: पहला काम क्या होगा सर जीतने के जीत के बाद?
2: भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उसमें फर्क नहीं।
4: Sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir देखिए।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
4: कौन?
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: सिनेमा घर तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
8: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
3: वेट सिर्फ आपके साथ खाइए ना अपने से। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
4: कौन?
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आपने ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: श्रीनगर तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
10: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
1: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है. सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको.
2: Moving on, hundreds of students continue their protests in Ranchi over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission examination, the JSSC, CGL and other recruitment tests. Now, students have been on the indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe into the recruitment of examination and cancellation of the 14th JPSC combined preliminary tests and reforms in the state's recruitment agencies. The students allege OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but students are not satisfied. In fact, the protesters have only been, the protests have only been swelling with a march to the assembly on 6th of this.
3: वो छात्र है, वो छात्र है और वो छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है. जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है. जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है. इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है.
4: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर ऐसी स्थिति पैदा हो. अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जेएनजी बोले और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए.
5: रात को ही मैंने उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की कि और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए. जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा. अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ.
6: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ. The students in Jharkhand are waiting for justice, are waiting for the resignation minister of Congress-led alliance in Jharkhand. But till now, neither Rahul Gandhi has spoken or demanded accountability from the Congress government in Jharkhand. Neither Arvind Kejriwal has spoken, neither Akhilesh Yadav has spoken. When are these people going and taking a ticket and doing a march with the students in Jharkhand to the Jharkhand Vidhan Sabha? Their silence exposes their hypocrisy. Their silence exposes that Congress party, Jharkhand Mukti Morcha, Akhilesh Yadav, and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party.
2: All right, let's go across at this moment because, you know, we are putting this story out for students, those who have been protesting, hoping that the government, of course, takes action on their demands. Haribansh Sharma, my colleague, is joining me at this moment from Ranchi, where this protest is taking place. Haribansh, sabse pehle hame ye bataiye ki ye aapke piche jo hum dekh rahe hain, ye kya jo bacche hain, kis tarike se roz inki tadad badh rahi hai aur inki mukhya mange kya hai? Sarkar ki taraf se abhi us par kya karwai hui hai?
7: देखिए उनके लिए छात्र है जो 14वें जेपीएससी में एग्जाम दिए थे लेकिन ठगे गए हैं. छात्रों की संख्या जो है धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ती जा रही है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये छात्र पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. उनकी जो मुख्य मांगे है वो 14वें जेपीएससी का जो रिजल्ट पीटी रिजल्ट जारी हुआ है उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, मामले की सीबीआई से जांच की जाए और फिर से एग्जाम कराया जाए. हालांकि मामले की सीआईडी जांच कर रही है लेकिन जो आंदोलन छात्र हैं उनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है. उनका मानना है, उनका कहना है कि सीआईडी जो है वो राज्य सरकार के अधीन है और वो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं कर पाएगी, मामले की लिपापोती करेगी. तो इसको लेके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यही तीन मुख्य मांगे इनकी है, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी इनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये 6 अगस्त से जो विधानसभा का मानसून सत्र में विधानसभा घेरने का काम करेंगे, और पूरे रात से झारखंड के 2400 जिले से सभी छात्र यहाँ पहुंचेंगे आंदोलन करेंगे। हालांकि राज्य सरकार के तरफ से अभी कोई भी इनसे मिलने नहीं आया है, न ही किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है। अंकित,
2: 6 तारीख को ये लोग जो अपना मार्च करेंगे उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है, क्या कहा जा रहा है उस मार्च को लेकर?
7: छात्र द्वारा जो है आंदोलन की घोषणा कर दिया गया है, विधानसभा घेराव की घोषणा कर दिया गया है। जगह जगह पे अभी प्रशासन की तरफ से अभी से ही बैरिकेडिंग किया जा रहा है। विधानसभा भी अभी हम जहाँ खड़े हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जगह जगह पे प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग किया जा रहा है। कोई भी पुलिस प्रशासन अभी तक ये लेने इनसे या पूछने नहीं आया है कि आखिर ये किस हाल में है, न ही किसी तरह का यहाँ से हटाने की बात कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन ले रखा है और परमिशन के तहत यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। तो अब देखना है कि आगे जो 6 तारीख में आज जो है 3 तारीख है, 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन में सरकार
2: okay. हरिवंश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट इज आवर कॉलीग हु इज ऑन द ग्राउंड कवरिंग दिस प्रोटेस्ट, गेटिंग अस द डिटेल्स एज फार एज दिस एंटायर प्रोटेस्ट इज कंसर्न। नाउ सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन फैक्ट हियरिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। CJP spokesperson Saurav Das has said that Supreme Court clarified states that wish to withdraw FIRs are free to do so and the Supreme Court orders will not stand in the way. He in fact also said that, as you all know, after the historic victory of the youth on 25th, the government gave us certain guarantees under the agreement. One of them was all existing FIRs against student protesters will be withdrawn. Let's listen in.
8: जैसे आप सभी को पता है, जुलाई 25 को जो ऐतिहासिक जीत हुई थी युवाओं की, उस एग्रीमेंट के तहत सरकार ने हमें कुछ गारंटीज दी थी। उसमें एक गारंटी ये था कि जो एग्जिस्टिंग FIRs है छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो सारे FIRs को विड्रॉ किया जाएगा, एंड साथ साथ गारंटी दिया जाएगा राइटिंग में कि फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ। इसके बाद हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए कि बहुत सारे कुछ भाजपा रूल्ड स्टेट्स या NDA रूल्ड स्टेट्स में FIRs फाइल हो रहे थे एंड बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे सारे छात्रों के साथ Day 1 से खड़ी है। 25 जुलाई के एग्रीमेंट के पहले भी हम लोगों ने सारा लीगल हेल्प दिया, हम लोगों ने सारा मेडिकल हेल्प दिया एंड आगे भी देते रहेंगे। उसी स्पिरिट में जब ऐसे रिपोर्ट्स निकल रहे थे तो हमने सारे जो लॉयर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन स्टेट्स में, जो बच्चे थे उन सब लोगों से हमने कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया, एंड हम लोगों ने जो FIRs के डिटेल्स थे वो भी हम लोगों ने लिया, एंड जो सरकार है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स है सीनियर ऑफिसर्स, उनसे हम लोग लगातार बातचीत में है अभी भी, एंड उनको हम लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे FIRs जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो जुलाई 25 के एग्रीमेंट के हिसाब से सारे FIRs विड्रॉ होने थे। अब उसके बाद जब ये बातचीत हो रही थी तो सरकार ने बहुत सारे ये जो स्टेट्स है वहां से नोटिफिकेशंस आए ये बोलते हुए कि FIRs विड्रॉ होंगे या क्लोज होंगे एंड फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ PILs आए सुप्रीम कोर्ट में, एंड उस PIL में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। उस ऑर्डर में लिखा था कि जो FIRs है उसमें अगर स्टेट चाहे तो उस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती है। तो आज एक और बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होगा कि जो FIRs जो भी स्टेट्स विड्रॉ करना चाहती है उनके पास वो लिबर्टी होगा विड्रॉ करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बीच नहीं आएगा।
2: Alright, that's Saurav Das in fact speaking about giving clarity on what the Supreme Court has said today as far as the FIRs against student protesters are concerned. I'm slipping into a very short break at this moment. I'm coming back with much more. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: याद है ना मैंने क्या सिखाया था। सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
15: So many attacks.
14: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
15: It's incredible.
14: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right and Center.
14: Hard facts.
15: War-struck country, a country.
14: Hard questions.
15: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
15: In the Kargil area.
14: North Ukraine.
15: In France, in Italy.
14: At Srinagar.
15: France. Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
16: This location from Tel Aviv
14: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
17: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
18: The Ayatollah Khamenei is gone.
19: There has been a missile attack right behind you.
18: And we need to rush into a shelter.
20: Heading there.
21: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
14: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
22: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
23: ब्रेकफास्ट आपके साथ खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
24: हरियाणा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
15: so many attacks,
14: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
15: It's incredible.
14: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right, and Center.
14: Hard facts.
15: War-struck country.
14: Hard questions.
15: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
15: North Ukraine.
16: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
16: I am Iskandar.
15: Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom, only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: अगर ओवर पेपर लीक्स जॉब्स and concerns over employment. So was Bankipur a Prashant Kishore victory, a BJP setback, or a protest vote against the political establishment, or was it something to do with the local scenario? And if youth anger did play a role, can this one result be read as an early warning for the BJP beyond Bankipur? Also, any of these talents' objectionable comments against actor Trisha have become the latest political flashpoint between the TVK and DMK women. Once again, bearing the brunt of obscenity in politics. Should any of these talents apologize or not? More on that coming up as well. First up, the headlines. Poll strategist turned politician Prashant Kishore wins the Bankipur seat in Bihar. Counting of votes for the crucial by-elections is also underway in Dathia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat, all BJP-ruled states. Political row erupts in Tamil Nadu. DMK workers chant Trisha, Trisha during Udayanidhi's talent speech. Vijay supporters have alleged double meaning behind these slogans. DMK, however, has dismissed the charges. Karnataka cabinet expanded to full strength now. 20 Congress legislators have taken oath as ministers. Several senior ministers miss out. DK Shivakumar tells disgruntled aspirants to stay patient, says the right position will come to them at the right time. A Delhi court has acquitted former BJP MP and ex-wrestling Federation of India chief Brijbhushan Chand Singh and co-accused Vinod Tomar in the alleged sexual harassment case filed by several women wrestlers. Supporters celebrate outside Singh's residence. Actor and Neta Kangana Ranaut sparks a new controversy now. Targets Bollywood says Hindu daughters of industry becoming staunchly leftist after marriage. Admits to her party videos from earlier, says she wants to transform. The state of Assam remains in the grip of devastating floods. At least 85 people have lost their lives. Till now, lakhs have been affected across the state. Rescue and relief operations underway.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
14: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
15: सो मेनी अटैक्स,
14: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
15: It's incredible.
14: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right and Center.
14: Hard facts.
15: War struck country.
14: Hard questions.
15: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
15: North Ukraine.
16: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
16: I am Mr. France.
15: Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom. Only on NDTV. Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
17: This location from Tel Aviv
14: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
18: Prime Minister Narendra.
19: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning into NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, the biggest story of the day, everything that you're talking about that you need to know, the bus stops here. The entire country has been talking about the paper leaks, the issues before students, their desperation, demand for accountability. All of that spurred the agitation right here in New Delhi, the national capital. But are there absolutely no eyes on Jharkhand, where an equally big agitation by students over paper leaks is raging? That's our top story today. We'll also talk about three bipoll results from across three states and all eyes on Bihar. In that case, a bipoll blow for the BJP. Is this giving out a larger political message for where things stand right now and in which direction politics in India is headed? All of that and much more over the course of the next 60 minutes. But let's get you started with the big story on the show today. For the sixth straight day, Ranchi has become the epicenter of a massive students protest in Jharkhand. Hundreds of job aspirants are camping in Jharkhand's capital city, alleging serious irregularities in recruitment examinations, including Jharkhand Public Service Commission, the Staff Selection Commission, and other recruitment tests. Their charge is very simple: lapses in examinations that have denied students a fair chance. The Hemant Soren government has responded with the CID probe, but the students say that is not enough. They want a CBI investigation. They want the 14th JPSC preliminary examination scrapped and held again. They also want greater transparency and sweeping reforms in the way these exams are conducted. And above all, they want to be heard. With no breakthrough in sight so far, student leader Devendranath Mehto, in fact, who also belongs to a local political party, has begun an indefinite hunger strike, appealing to all the different parties to stand with Jharkhand's youth.
9: ग्रह से आमरण अनशन तक का सफर अब तय कर रहे हैं। आपने लगता है तो बड़ी पार्टी जैसे दिल्ली में जब जंतर मंतर में आंदोलन चला था, बड़े बड़े दल पहुंचे थे, सीजेपी वाले पहुंचे थे, आपको लगता है कि उन लोग को भी यहाँ आना चाहिए और आपके आंदोलन में साथ देना चाहिए?
18: जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
20: हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं, हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज़ हैं। जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे या सामाजिक रूप से दे या आर्थिक रूप से दे या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उनके इस कार्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप हमें इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए अपना पहल कर रहे हैं।
21: झारखंड की मिट्टी ऐसी है कि सरकार से अभी भी गुहार लगा रही है कि वो छात्रों की बात सुने, और लोकतंत्र में संवाद करना, डायलॉग करना एक अच्छे लोकतंत्र को सूचना देता है। तो हम अभी भी नम्र निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार हमसे आए, हमसे बात करे, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीडीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पूर्व में कराई गई जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसको रद्द किया जाए तत्काल रूप से, और जिस कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए।
19: Now this appeal for solidarity, however, has found only limited traction. The CJP, which spearheaded the agitation at Jantar Mantar, in fact, at several different parts of the country, they also went to Rajasthan. Similar protests were held in Mumbai. They have backed the Ranchi protests, but only through a video call. Founder Abhijit Dibke promised to join the agitation once his health improves. One wonders where are the other prominent faces of this movement.
22: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
23: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
19: And naturally, that's where the questions begin. The BJP has accused Congress of practicing selective activism. They're charged that when students protested in Delhi, when it was about a BJP minister, a BJP government, Congress leaders reached the protest site. Pawan Khera expressed solidarity. Rahul Gandhi held a Chhatro Ki Goonj rally across several cities, even staged a protest outside the Prime Minister's residence. The call has always been for accountability, but in Jharkhand, instead of sending its leaders, the Congress merely sent out breakfast boxes. The question is, where is the political solidarity now? Why can't the Congress and other parties who have said that they want to stand by the students, that they want accountability by those in power, why can't they hear the Chhatro Ki Goonj in Jharkhand?
24: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह हो कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
25: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं,
0: एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
1: The recent developments happening in Jharkhand, the protest by the aspirants of Public Service Commission shows the double standards of the Congress Party. Congress Party wants to take political points by supporting the CJP protest in Delhi and is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
19: All right, let's take this question across to Siddharth Yadav joining us from the BJP. We have political analyst Ashutosh and Sanjay Jha both joining us. But my first question is to two young men who are joining us from Ranchi. We have Vivek Pandit joining us from the protest site along with Chandi Tiwari. Chandi Tiwari ji, sabse pehle aap hi se puchungi kyunki aap mauke par maujood hain. Abhijit Dipke aur Ashutosh Ranka ka wo video call ab sabne dekha hai. Unhone baat ki hai, unhone kaha hai ki hum hain chhatron ke saath. To ab aap santusht hain? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं? क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
2: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है जैसे जेपीएससी पीटी एफआरओ एसीएफ बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेएससी सीजीएल ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे
19: क्योंकि क्योंकि चंडी यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ जेएमएम की तरफ से वक्तव्य आया है वो कह

0: फुल एक्शन लिया हुआ है। हमने छात्र के साथ खड़े होकर न्याय की लड़ाई जारी रखी है, 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, उनके साथ पूछताछ हुई है, आगे की कार्रवाई भी हम करने वाले हैं, ORM लीक का कनेक्शन भी हम देखने वाले हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
1: प्रॉब्लम है मैम, जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद अपना डिसीजन लेता है, और डिसीजन कौन ले रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL, बताइए। और वो जो TDPL का मार्केटिंग हेड है, वो उसका नाम है मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी, वो सारा एग्जाम में टॉप किए हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे JSSC CGL सेकंड रैंकर है, JPSC PT निकाला है, और बहुत सारा एग्जाम, जितना भी एग्जाम JPSC JSSC लेता है उसमें सब में क्वालिफाई हो, उसका फैमिली भी सारा चीज में, मतलब लगता है उसका फैमिली हो, उसका रिलेशन हो, जहां जहां उसका रिलेशन मिलता है, दोस्त यार भैया भाभी जितना भी है, सब CGL में जॉब कर रहे हैं मैम, कहीं ना कहीं जॉब लगे हुए JPSC। तो यही तो हाल है मैम। सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड का, जो चीज है मेन चीज है, मेन मुद्दा है कि झारखंड चाह क्या रहा है आज 26 साल के इतिहास में मैम, समझ लीजिए पढ़ते पढ़ते आदमी का एज खत्म हो गया मैम। मतलब जो किसान है, किसान वर्ग है, अपना एक किसान है 50,000 लिया है लोन, वो भी बच्चा को दे देता है कि पढ़ो आगे बढ़ो कुछ करो, वो सब देखने को लग रहा है कि निरर्थक हो चुका है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है लड़का, क्योंकि जितना है सब सीट को बिक दिया जाता है। जेपीएससी में मैम, जेपीएससी पीटी में 103 सीट निकाला गया था, और सुनने में आ रहा है कि एक भी सीट नहीं छोड़ा है जो रेट तय नहीं था, सभी सीटों को बेच दिया गया। और मैम ऐसा कैसे हो सकता है आप बोलिए कि जेपीएससी संस्था है, इतना बड़ा संस्था, और कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले रहा है, और सरकार को मालूम नहीं है मैम, ये सरकार के साफ मंशा को पता चलता है वो क्या कर रहा है।
0: तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना आप खुद ही बता रहे हैं कि वो एक अलग संस्था है, तो दोषारोपण सरकार के ऊपर क्यों किया जा रहा है विवेक?
1: हम नहीं दोषारोपण करते हैं, हम
0: मतलब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं ना विवेक, आपको क्या लगता है उसके बारे में, क्या चाहते क्या है आप सरकार से, जो राज्य सरकार है?
2: जी मैं ये चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार है, क्योंकि उनके अंडर संस्थाएं हैं, जेपीएससी है या JSSC है, तो आप सरकार हैं, आप मुखिया इस राज्य के, और आपके अंतर्गत आपके राज्य में जो भी एग्जाम ले रहे हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी धांधली हो रही, इतना बड़े पैमाने पे स्कैम हो रहा है, और अगर आप सरकार होते हुए भी अगर आप एक्शन ले लेते हैं, इसी एक्शन नहीं लेते भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 26 साल से, जब से झारखंड राज्य बना है, 26 साल से हम लोग उस समय पैदा हुए थे, आज इतना बड़ा हो गए हैं, आज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट टाइम आया था दारोगा का वैकेंसी 2016-17 में, अब भी पता है 10 साल से ज्यादा हो गई है, जब हम लोग का उम्र नहीं हुआ था उस समय भर नहीं पाए थे, अब जब उम्र आया है तो वैकेंसी नहीं, अब हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाए? सालों साल से 10 घंटा 12 घंटा दिन रात हम लोग पढ़ते हैं, एक टाइम दो टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पे किताब कॉपी पे पैसे खर्च करते हैं, इतना करने के बावजूद अगर हम लोग को एक अच्छा सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाए, तो फिर मैम कहाँ जाएंगे?
0: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है JMM के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
2: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का तिरपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
1: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको CBI तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार ऐसा ना माने, सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग अपना चले जाएंगे, हम लोग को कोई राजनीति नहीं करना,
2: हम लोग ये भी नहीं यहाँ पर सरकार इस्तीफा दे दे ये कर दे, क्योंकि हमको पता है कि सिस्टम में खराबी है, आप सिस्टम को ठीक करो ना, मुझे सरकार से क्या लेना देना है, आप फेयर एग्जाम लो, सिलेक्शन ले लो, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे हम लोग इतना दिन रात, सिलेक्शन ले लो, हमको क्या चाहिए, बस एक नौकरी चाहिए, एक युवा जो दिन रात मेहनत करता सालों साल पढ़ता है, एक गरीब परिवार से आता है, वो बच्चा बस एक नौकरी मांग रहा है, वो भी नौकरी तब मांग रहा है जब एग्जाम लिख के।
0: कोई आए हैं, कोई कोई कोई कोई भी मंत्री परिषद से आपसे मिलने आए हैं, किसी ने संदेश भेजा है, कुछ खाने के पैकेट आ रहे थे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, मैंने देखा आज सुबह।
1: नहीं नहीं मैम, ऐसा
2: ऐसा नहीं है सर,
1: ऐसा हम लोग एक्सेप्ट, मतलब होता है कि कोई भी कुछ देता है वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसा कोई पार्टी फंडिंग उस तरह कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है।
0: किसी मंत्री ने आपसे बात करने की कोशिश की, कोई दिलासा दिलाने की, सांत्वना देने की, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई मंत्री आया कांग्रेस से जेएमएम से?
2: कोई मंत्री ऐसा नहीं है मैम, अभी तक नहीं आया, 10 दिन होने चले हैं। मैं तो अच्छा अच्छा उन लोग को मुझे लगता होगा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी मनसा ही था ये सब करवाने का। अगर नहीं होता, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती, स्कैम नहीं होता, तो कोई भी जांच करे, सीबी जांच करे, ईडी जांच करे, कोई भी जांच करे, क्या डर? अगर हम सही है तो किसी भी चीज को जांच करवाने में क्या डर? कोई डर नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार डर रही है। मतलब जरूर सरकार की मनसा थी स्कैम करवाने की।
1: मैम नहीं सोचेंगे, झारखंड का एक ही एग्जाम देखा जाए ना मैम, किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा गया। आप अगर इसमें आएंगे और बढ़िया से देखेंगे क्या क्या चल रहा है, तो आप जो है ना, मतलब लगता है कि पूरा देश में ऐसा होगा, सुनेगा तो लगता है कि समझ जाएगा कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था
2: बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।
0: क्योंकि मैं पीछे भी देख रही हूँ, जो सारी पीछे लाइटें जली हुई है, ये सब छात्र बैठे हुए हैं आपके आस पास, जो टेंट लगा करके, जो ये पूरे पीछे लाइट दिख रही है आपके, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं।
1: ना ना कुछ है बाहर का लाइट है, कुछ अंदर का लाइट है मैम, ऐसा की
2: कुछ बाहर का लाइट है, कुछ अंदर का ग्राउंड की लाइट भी है।
0: कितने दिनों तक आप यहाँ रहेंगे, कब तक लड़ पाएंगे? अगर बारिश हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, बुखार हो रहा है, कब तक लड़ोगे?
2: हम लोग ले चुके हैं कि जब तक सरकार हम लोगों की मांगे को पूरी नहीं करेगी, हम लोग अनिश्चित काल तक लड़ेंगे। अगर इस दौरान अगर हम लोगों की जान भी जाती है तो हम लोग अपना जान भी दे देंगे, क्योंकि हम लोग का भविष्य पूरा कुछ दिख नहीं रहा, भविष्य पूरा तरह से खाली दिख रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सालों साल से मेहनत करेगा, पापा मम्मी जब फोन करते ना मैम, जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्या बोलूं उनसे? हर साल एक साल बोलते हैं कि पापा बस एक साल और, पापा एक साल और।
1: मैम आप स्टूडियो में बैठे हैं, झारखंड का दर्द सुनेंगे मैम, हम आप रो लेंगे, ऐसा व्यवस्था इन लोगों ने क्रिएट किया है। लेकिन आपको क्या बताऊं, लेकिन ये आप सुनना चाहिए, झारखंड कैसे जी रहा है। झारखंड में एक एक जो बच्चा को जिस तरह छलावा छालो भर मैम तैयारी करता है, किस कंडीशन में रहता है, आप लोग देखेंगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रहा है, क्या क्या
2: समय था मैम कि जब हम लोग घर में रहते थे तो अपना जो क्लासमेट था वो सब पूछता था। आज जब घर जाते हैं ना तो भतीजे हैं, भतीजियां हैं, जो बच्चे हैं ना वो सब पूछते कि चाचा आपका जॉब नहीं हुआ, चाचा पुलिस नहीं बने आप। बहुत इतना बुरा लगता है मैम, मैं क्या बताऊं, इस वजह से घर जाना छोड़ दिए, बहुत तकलीफ होता है मैम।
1: हम लोग के लिए मैम कोई ट्वीट नहीं करता है मैम, समस्या ये
2: कोई आवाज,
1: हम लोग दिल्ली का मतलब आवाज ही कितना धीमा हो जाता है पता नहीं, क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है।
2: हम सत्ता
1: सुने हैं मैम कि जो छोटा बच्चा घर का होता है वो थोड़ा लाडला होता है। इस सारे राज्यों को समझना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों को समझना क्या है, झारखंड में अभाव क्या है, इतना कोयला जो सबको जलाता है, उजाला देता है, आज वो अंधेरे में है, तो सबसे बड़ा समस्या है मैम। हम सभी मतलब 28 राज्य मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश, सभी माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ, एक बार देख लीजिए झारखंड की क्या शिक्षा व्यवस्था है।
0: और विवेक ये बहुत जरूरी है, विवेक और चंडी की लोग आपकी ये बात सुने, क्योंकि कई बार जो ये टिरनी ऑफ डिस्टेंस है, आप सच बोल रहे हैं कि आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, इसके पीछे वजह आखिर क्या है? लेट मी जस्ट ओपन दिस अप फॉर अ सेकेंड। संजय झा, आशुतोष, सिद्धार्थ यादव, संजय झा, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस? यू कम फ्रॉम अ नेबरिंग स्टेट, दीज टू यंग मैन, दे आर जस्ट सेइंग हमारी छात्रों की गूंज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है?
3: Well, I fully empathize with both of them. I completely understand their frustrations and their anguish. If the education system is not working, their job market is going to get even more tricky and difficult. It's a national crisis. It is not just Jharkhand, it's all over the country. There is a difference, which I would like to tell both the young boys on your program. And aap logon ke saath meri puri sehmati hai aur sahanubhuti hai. हम पूरी तरीके से समझते हैं आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। मैं बिहार का हूं, मैं झारखंड में मैं पढ़ा हूं XLRI में, मेरा पूरी तरीके से आपके साथ हम इत्तेफाक रखते हैं। ये बहुत बड़ा ये मसला है, इसका समाधान ढूंढना सरकार की जिम्मेवारी है, और अपने तरफ से मैं जो भी कोशिश कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। एंड पद्मजा, आई नीड टू मेंशन दिस, लेकिन आपको मैं इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि झारखंड की सरकार, जैसे मोदी जी की सरकार, जितने भी लोग विरोध करते हैं उनको बोलती है कि ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये प्रजातंत्र के विरुद्ध है। आप जो है, मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना राजनीति से

0: झारखंड में नहीं होगा। ये एक तरीके से इस प्रजातंत्र जो है, जो भी हमारा लोकतंत्र है, उसका पूरा इज्जत किया जाएगा। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जैसे भी आप विरोध करें, मैंने आपका पूरा जो आपने कहा है पद्माजा जी को, आप दिल से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि कितना मुश्किल है बिहार में किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं
1: नहीं सर,
0: एडमिशन मिलना,
1: झारखंड है,
0: वो भी मुश्किल है।
1: झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है, तो झारखंड बोलिए
0: नहीं
1: सर,
0: नहीं
1: माफ
0: झारखंड,
1: कराए।
0: देखिए भैया, झारखंड बिहार, मैं समझता हूँ कि दोनों तो भाई है ना, एक भाई है तो एक ही तो राज्य था।
1: झारखंड झारखंड को जिस तरह दबाया गया है ना सर, आप नहीं जानते हैं,
2: बहुत अलग है सर,
1: झारखंड
2: देखोगे
1: शांति प्रिय। हम लोग उतना 26 साल के इतिहास में कभी देखे हैं कि झारखंड के छात्र ने कभी ये तोड़ दिया, कभी वो तोड़ दिया, कभी
0: ये
1: हम
0: समझ
1: लोग
0: रहा हूं
1: शांति
0: मैं।
1: प्रिय देख शांति प्रिय आंदोलन करते, इसलिए हमारा कोई सुना नहीं जाता है।
2: सर आप एक बात बताओ, 10 दिन हो गए अनशन का, एक स्टेटमेंट किसी को छात्र का,
1: कोई कौन नहीं दिया है,
2: छात्र का स्टेटमेंट,
1: हमारे लिए कोई ट्वीट भी नहीं करता है।
2: हम लोग दिन रात संविधान को पढ़ते हैं सर, दिन रात संविधान को लेके चलते हैं हाथ में, हम लोग छात्र हैं, बस एक रोजगार ही मांग रहे, इसके साथ कुछ नहीं मांग रहे।
1: मैं चाहता हूं सारे पार्टियों से निवेदन करता हूं, आप जिस तरह अपना बेटा का शौक पूरा कर रहे हैं, हमारा भी कुछ पिता का सपना है कि ये मेरा बेटा बने। अरे हम मजदूर और किसान के बेटा, इसलिए आप लोग इस तरह करते हैं हम लोग से? यही देश का,
0: पंडित जी
1: इतना
0: और
1: बड़ा
0: तिवारी,
1: लोकतांत्रिक देश
0: पंडित
1: का
0: जी और
1: ढांचा लेके
0: तिवारी
1: आप
0: जी,
1: लोग
0: आप
1: का।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और आप जो भी कह रहे हैं
1: सर
0: ये
1: आप
0: सब
1: बताइए,
0: मैं
1: आप
0: समझता हूं
1: एक
0: कि
1: बार हमको जवाब दीजिए, आपका बेटा समझता होगा तो आप सो पाएंगे?
0: नहीं नहीं
1: एक
0: बिल्कुल
1: बार
0: नहीं,
1: हमको बता दीजिए, आपका बेटा का तबीयत खराब होगा, कल हम लोग रात भर बारिश में भीगे, कोई पूछने वाला नहीं हम लोग क्यों सर? राज हर समय झारखंड पर ही क्यों मतलब इतना कमजोर कर दिया जाता है झारखंड को? सिर्फ खनिज ही चाहिए झारखंड से, सिर्फ कोयला ही चाहिए झारखंड को, मतलब शिक्षित नहीं बनाना चाहते आप लोग? क्यों
0: अरे भैया
1: इतना दबाया
0: झारखंड
1: हुआ
0: में
1: है?
0: तो वहां के मुख्यमंत्री को लोगों ने जेल में डाल दिया था, आप तो देखिए, आप जानते हैं कितनी तानाशाही सरकार है, मुख्यमंत्री को तो जेल में डाला था, तो
2: ए
0: ये तो हम सब
2: पद्माजा जी, ये
0: जानते हैं कि
1: राजनीति नहीं
0: क्या
1: होनी
0: राजनीति
1: चाहिए।
0: है
1: हम
0: वहां
1: ठीक
0: पे।
1: है,
0: आप
1: आप
0: अपने मन
1: झारखंड
0: की
1: में
0: बात
1: रहिए,
2: रख रहे हैं, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, नौकरी पे बात होनी चाहिए, राजनीति क्यों करने लग गए हैं संजय झा जी?
0: सिद्धार्थ जी जरा,
2: आप कह
0: आपने
2: रहे हैं
0: क्या
1: उनके
0: किया है
1: मन की
0: छात्रों
1: पीड़ा
0: के
1: से
0: साथ,
1: आप
0: वो तो
1: रिलेट नहीं
0: दुनिया
1: कर पा
0: देख
1: रहे
0: रहा
1: हैं
0: है।
1: क्या?
0: आप तो 15 साल
2: अरे
0: की
2: उनके
0: लड़की
2: मन
0: के
2: की
0: पीछे
2: पीड़ा
0: भी
2: को
0: आप आग
2: आप
0: लग
2: उसको भी राजनीति में मोड़ना
0: रहे
2: चाह
0: हैं,
2: रहे
0: ऐसा
2: हैं,
0: बात नहीं।
2: आपके दिल पे नहीं लग रही है उस बच्चे की बात, वो बेचारा गरीब किसान का बेटा, आपको उसकी बात दिल पे नहीं लग रही है
0: अभी
2: संजय जी?
0: मोदी जी के
2: आप
0: जैसा
2: इसमें भी
0: रोने
2: राजनीति
0: लगे,
2: कुछ रहने दे,
0: क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा
2: वो कह
0: दीजिए
2: रहे हैं
0: आप।
2: कुछ बात अपने, आपसे एक बात कर पा रहे, कोई और तो सुन नहीं रहा है
0: अरे
2: आपके
0: सिद्धार्थ
2: वहां
0: जी,
2: पर,
0: मोदी जी के
2: कोई सुन
0: जैसा
1: नहीं
0: आप
2: रहा
0: भी
2: है
0: रोने
2: उनकी
0: लगी
2: बात,
0: है,
2: आप
0: क्रोकोडाइल टीयर्स
2: कांग्रेस के
0: दिखा
2: समर्थित व्यक्ति
0: दीजिए,
2: हैं, वो बात
0: मगरमच्छ
2: कर
0: के
2: पा रहे
0: आंसू
2: हैं
0: दिखा
2: आपको,
0: दीजिए
2: उसमें भी
0: आप।
2: नहीं बात करनी।
0: अरे
2: अरे
0: आप
2: सरकार
0: मगरमच्छ
2: है
0: के आंसू
2: संजय झा
0: दिखा
2: जी,
0: दीजिए, ये
2: अरे
0: छात्र
2: मेरी
0: समझते हैं
2: सुनिए, आप
0: आपको,
2: बात सुनिए
0: भाजपा
2: ना,
0: को सब समझ
2: आप
0: चुका
2: छात्र
0: है।
2: की बात सुनिए,
0: अरे बांकीपुर में क्या हुआ
2: लिसन
0: है
2: टू
0: सुन
2: मी संजय
0: लीजिए,
2: जी,
0: जनता
2: लिसन टू
0: समझ
2: मी,
0: चुकी
2: इट
0: है
2: डजंट
0: आपकी,
2: मैटर
0: यू हैव
2: संजय झा,
0: पावर,
2: बाकीपुर
0: देन
2: में
0: यू हैव
2: बाकीपुर की
0: पावर,
2: बात करेंगे हम,
0: आउटिंग
1: आज आप रांची की
0: आई,
1: बात कीजिए। सी
0: जनता की
1: दैट इज
0: आवाज
1: व्हाई
0: है
1: पीपल
0: पद्माजा
1: गेट वेरी
0: जी,
1: सिकंड संजय झा।
0: छात्रों का आवाज है,
1: एक सीधा सीधा,
0: आपकी
1: ये
0: मंच
1: एक
0: है वो।
1: नॉन राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल मंच से दो पढ़े लिखे लड़के सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए आशुतोष। एंड विच इज व्हाई व्हेन पीपल रेज चांस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देन किड सिटिंग इन रांची से अकाउंटेबिलिटी तो सबसे होनी चाहिए ना, आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों मांग रहे हैं
0: अरे मैंने तो शुरू में ही कहा है आपको
1: आशुतोष?
2: कि इस
1: अभी सर
0: रिस्पांस
1: बैठे हुए, मैं सर से
0: सॉरी
1: विनती करता
0: सॉरी
1: हूं सर,
0: एक सेकेंड
1: देखिए
0: चंडी, एक सेकेंड,
1: पद्मजा,
0: एक सेकेंड,
1: या
2: यही तो हमारी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो राजनीति की दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब दिल्ली में होता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, और ये आरएसएस के लोग बोल रहे थे, वो बच्चे थे जिनको पीटा गया, जिनके जिनके आंख फूटने की नौबत आ गई, जिनके आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वही पार्टी झारखंड में जाके अलग रुख हो जाती है, और वही कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के आंदोलन को नए तरीके से देखती है वो झारखंड में जाके उसका रुख अलग हो जाता है। ये जो राजनीति का जो जो जो दोगलापन है, ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स है, तो जो रुख छात्रों के आंदोलन का दिल्ली के प्रति होना चाहिए वही रुख झारखंड के बच्चों के प्रति होना चाहिए, बच्चे बच्चों में फर्क नहीं होना चाहिए। ये सारी दिक्कत इस वजह से है क्योंकि हमारे देश की राजनीति
1: पद्मजा जी
2: इतनी
1: उत्तर दीजिए।
2: खराब हो चुकी है कि अब युवा पीढ़ी बच्चों को किसी से कोई उम्मीद नहीं, ना उनको बीजेपी से उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है, ना झारखंड से उम्मीद है, ना समाजवादी पार्टी से उम्मीद, किसी से उम्मीद नहीं उनको, उनकी पीड़ा बराबर। वो बच्चे कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कि भाई मैं 8 दिन
1: टूट
2: से
1: चुके हैं,
2: पढ़े
1: मैं
2: हुए,
1: पूरी तरह
2: बच्चा
1: से
2: काट
1: टूट
2: रहा
1: चुके
2: है,
1: हैं।
2: क्या क्या वहां पे सरकार के आदमी को नहीं जाना चाहिए? क्या वहां कांग्रेस पार्टी के आदमी को नहीं जाना चाहिए? क्या बीजेपी के नेता को नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं गए ये लोग? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और जब ये बच्चे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं, तब आप लाठियों से

0: पीटते हैं उनको, और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पायलटगन चलाते हैं। तो मुझे सरकार का रवैया, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, बिल्कुल एक जैसा है।
1: ओके सिद्धार्थ यादव, यू आर इक्वली टू ब्लेम, जस्ट एज इनसेंसिटिव एज द कांग्रेस एंड जेएमएम आर इन झारखंड। सिद्धार्थ यादव,
2: बिहार में पद्मजा, बिहार में AK-47 लगा दिया इन्होंने।
3: पद्मजा जी आए, पद्मजी
1: वन एट टाइम आ रही हूँ आपके पास, चंडी आपके पास वापस आ रही हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए।
3: फॉर अ चेंज
1: सिद्धार्थ यादव,
3: at least for a change we have two young people who have joined this panel. They have, you know, from the bottom of their heart they have expressed what they are feeling. At least we, all of us, it is our responsibility to respect what they are feeling. अगर उनके रहते हुए संजय झा जी और आशुतोष जी राजनीति की चाशनी इस डिबेट पर फैलाएंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं आशुतोष जी आपके बीच में नहीं बोला था, चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए। यहाँ पे युवा बोल रहा है, आपके आंखों में आंखें डाल करके बोल रहा है, आपकी आपकी आपकी वाहियात राजनीति को सुनने के लिए नहीं बैठा है। पद्मजा जी, दिस कैन नॉट बी द वे।
1: ओके, वन एट टाइम, वन एट टाइम, आई एम कमिंग बैक टू यू आशुतोष, गिव मी 30 seconds,
3: किसी के बीच में नहीं बोला था, दिस कैन नॉट बी द वे। मैं बड़ा साफ स्पष्टता से आपको एक बात बोलता हूं, और पद्मजा जी, देश के लोगों को यह बात समझ जानी चाहिए कि जब जब देश का युवा बोलेगा, जब जब देश की आवाज बोलेगी, उसको सुनना पड़ेगा। पर समस्या कहां है? युवा झारखंड का बोलेगा तो नहीं सुनेंगे, दिल्ली में बोलेगा तो सुनेंगे। क्यों? झारखंड का युवा नहीं है। ये जो दो मेरे युवा साथी अभी शो पर खड़े हैं, 25 तारीख से धूप में, बारिश में, गर्मी में, बुखार में ये लोग खड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं, केवल सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, क्यों नहीं कराई जाएगी? और ये कोई पेपर लीक का जैसा इशू नहीं है कि किसी टीचर ने पेपर किसी को दे दिया था या चार लोगों ने खरीद लिया। सिस्टमैटिक सरकार जेपीएससी के अंदर कैसे अपने लोगों को नौकरियां दे रही और दूसरों को नौकरी नहीं दे रही, उसका विषय है। और उस पर शांतिपूर्ण तरीके से युवा वहां पर बात कर रहा है तो राहुल गांधी भी चुप, सीजेपी भी चुप, अभिजीत दिबके भी चुप, आशुतोष भी चुप, संजय झा भी चुप। क्यों भाई? दिल्ली में तो आपके रुख बड़े अलग थे, तेवर बड़े अलग थे। आई अग्री विद आशुतोष जी, बिल्कुल रुख सेम होना चाहिए। दिल्ली का रुख भी सेम होना चाहिए, झारखंड का रुख भी सेम होना चाहिए। पर द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स।
1: ओके 30 सेकंड संजय झा, देन आई वांट टू गो बैक टू द किड्स।
3: दिल्ली में तो हमको सारा नैरेटिव
2: पद्मजा,
3: और हम
2: पद्मजा कैन आई कम इन?
1: यस संजय,
2: या Siddharth Yadav should know he lives in Delhi. What you have done to the students in Delhi. People have seen the pellets. People have seen that there was an attempt to not just beat them, but thrash them. Let me tell you, in Bihar, you even used an AK-47. You infiltrated the entire movement to discredit them. Have some shame. And by the way,
1: but Sanjay
2: Mr. Modi makes midnight videos.
1: We have analyzed
2: videos.
1: The BJP's follies or missteps in what happened in Delhi and Bihar ad nauseum. Have something to say about Jharkhand at this point, other than we will come to...
2: Padmaja, if you do not interrupt me, you'll get a wholesome answer from me.
1: Yes,
2: but ahead. I need to stop Yadav's fake news and his typical BJP propaganda nonsense. The BJP, Mr. Modi cuts a video at midnight three times in a row. And his RSS and everybody calls all the students of India anti-national. They call them gutter generation. No shame. You are calling the young people on the channel gutter generation. And then you are trying to defend them because of your politics. I am saying on behalf of the Congress and the Jharkhand whom I support, they will resolve the problem. They respect the students. There is going to be no lathi charge. They care for them. They have already taken some action.
1: What
2: yes,
1: action?
2: I agree with you. The leader should be there with the students. I agree
1: none
2: with
1: of
2: you.
1: Them. None of them what have action? Bothered to even go and meet what with action? These
2: students. Ask the BJP, na? Instead of coming on a TV show, jara himmat ho to zameen pe jao. यादव जी, जमीन पे जाओ, जनता बता देगी आप लोगों ने कैसे अत्याचार किया है हमारे युवा पीढ़ी के साथ। भाषण बंद करो
1: सिद्धार्थ यादव।
2: आई एग्री द कांग्रेस शुड
3: व्हेन आई एम लिसनिंग टू संजय झा। आई एम फीलिंग सिक व्हेन आई एम लिसनिंग टू संजय झा। मेरे को आई एम फीलिंग सिक व्हेन आई एम लिसनिंग टू। आप सरकार में है संजय झा जी, वहां पर आप झारखंड में है, सरकार में है, झारखंड के स्टूडेंट झ नहीं बोल पा रहे हैं आप अपने मुंह से। आप रांची का र नहीं बोल पा रहे हैं, छात्र का छ नहीं बोल पा रहे हैं।
2: अरे भैया, रांची सिटिंग देयर फ्रॉम 25th ऑफ जुलाई,
3: यू हैड नो ऑडेसिटी टू इवन लुक एट दोज एंड्स। आप पूरे देश में छात्रों की गूंज करते हुए घूम रहे हैं, पर आपको झारखंड नहीं दिखेगा अंटिल अनलेस दे गैदर्ड इन थाउजेंड्स तब तक आप उन पर बात नहीं करना चाहते थे, उनकी तरफ देखना नहीं चाहते थे. नाउ दे आर सिटिंग पीसफुली. आप कह रहे हैं कि कर दिया, क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन. दे आर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, दे आर आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, दे आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी. बाहर आइए, बात करिए.
1: विवेक,
3: वॉन्ट टू डू नन ऑफ देम.
1: विवेक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये देखते हैं कि जिस तरीके से ये जो होता है ना, बॉल किसी और के कोर्ट में फेंक देना, आपको मायूसी होती है ये देख करके कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं और फोकस करेंगे?
4: मैम, सोच के देखिए, जहाँ पर बच्चे बस रोजगार के लिए मांग रहे हैं, अपना रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अपना खाना पीना के लिए, माँ बाप को पालने के लिए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, हम अब यंग हो चुके हैं, उसमें राजनीति हो रही है कि ये पार्टी ने नहीं किया, वो पार्टी ने नहीं किया, वो कर रहा है, वो कर रहा है. मुझे राजनीति नहीं करनी भाई, मुझे जीने खाने के लिए रोजगार चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए.
5: हम निवेदन कर रहे हैं दिल्ली के सभी पार्टियों, बड़े पार्टियों, छोटे पार्टी, पक्ष विपक्ष सभी को आमंत्रण. आइए सर, छोटा सा राज्य झारखंड,
4: आप आके देखिए,
5: देखिए एक बार,
4: आइए हम लोगों के साथ दो चार दिन,
5: आइए थोड़ा हम लोग से एक दिन गुजार लीजिए, कैसे जीते हम लोग, हम लोग का समस्या सुनिए. लेकिन दिल्ली से नहीं, कभी भी नहीं आएगा झारखंड कोई, क्योंकि उससे उसको पकड़ने नहीं भरता, कोई राजनीतिकरण नहीं होता, इसीलिए
1: आपको लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर में हुआ था, जिस तरीके से आवाजें उठी थी वहां पर, उतनी ही आवाज, उतना ही फोकस आज रांची में भी होना चाहिए? चंडी, आपको आवाज आ रही है?
5: हाँ सर, मैं मार रही
1: हूँ. जितना फोकस जंतर मंतर में था, आपको लगता है उतना ही फोकस रांची पर भी होना चाहिए?
5: वो तो सिर्फ एक पद था कि चला गया. हम तो पूरा एजुकेशन रिफॉर्म का बात कर रहे हैं. हमारे यहाँ जब तक सभी अधिकारी को नहीं बदला जाएगा, सिस्टम नहीं सुधरने वाला. हम एग्जाम रद्द तो होगा ही होगा, सीबीआई जांच एक मांग है. सीबीआई जांच हो, अच्छा से हो. हम जैसे स्टूडेंट जो है, जो गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पर हमें विश्वास हो, ऐसा ना होगा. मैम, आपको पर्सनल मैं बता रहा हूँ, अगर इस बार हम नहीं जीते तो इस सिस्टम से सबका विश्वास खत्म हो जाएगा, इस शिक्षा से. तो हम संकल्प होकर आए हैं, या हम यहाँ मतलब अपना जान भी देना पड़ेगा तो जान देके जाएंगे, लेकिन अपना जो मांग है वो पूरा हम करके ही इस बार जाएंगे मैम, क्योंकि बहुत हो गया मैम.
4: बचा नहीं जीवन में,
5: जीवन में कुछ नहीं बचा मैम. बताइए मैम, हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें नहीं बोलना चाहते ज्यादातर इस सब चीज, लेकिन बहुत दर्द है मैम इस झारखंड में. सिर्फ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं बोलता है, कोई इतना डिस्कशन होता है कि मणिपुर जल रहा है,
4: वो सब दिन में गुजरता है मैम.
5: झारखंड जल रहा है, छात्र जल रहा है. सिर्फ एक नैरेटिव सेट मत कीजिए कि ये राज्य है ऐसा हो रहा है, ये राज्य ऐसा हो रहा है. तो फीलिंग समझिए, राजनीति भावना से होता है. आप अच्छा कीजिए, आप जीत जाएंगे. मैं एक श्लोक लिखा था, राजनीति सभी पार्टियों को सुनना चाहिए कि सबका सेवक अच्छा, मतलब सबका सेवक अच्छा जीवन, मतलब सॉरी इसको मैं भूल जा रहा हूँ, सच्चा सेवक अच्छा जीवन जनमन में रह जाएगा, और जिसका ज्योति जनता प्यारा उसको कौन मिटाएगा. सर, आपको किसी को खुश नहीं करना पड़ेगा, आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको प्यार करेगा, वोट देगा, जीत जाएंगे सर. आप अच्छे काम कीजिए, मत किसी पार्टी में ज्वाइन कीजिए. कोई पार्टी बड़ा नहीं होना चाहिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए जो आवाज उठेगा वो बड़ा होना चाहिए सर. पार्टी पॉलिटिक्स होते रहेगा.
1: लास्ट 30 सेकंड्स आई वांट टू गिव यू, एंड आई जस्ट वांट द व्यूअर्स टू नोट द मैच्योरिटी ऑफ दीज यंग मैन. दे आर नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल डिमांड, दे आर सेइंग वी आर नॉट इवन सीकिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, व्हिच बाय द वे इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इन दिस केस. दे जस्ट वांट द सिस्टम, द रॉट इन द सिस्टम टू बी फिक्स्ड. Is that too much to ask? आशुतोष, last 30 seconds.
0: मैं तो पूरी तरीके से इन बच्चों की मांग के साथ हूं, और मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार को फौरन सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए. जिसको भी सैक करना हो सैक करिए, जेल में करना हो जेल में. मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि ये जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए. 6 महीने के अंदर उसके खिलाफ केस होना चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए. जब तक ये नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे सेंटर के नेता हो चाहे राज्य के नेता, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक इनका काम नहीं चलेगा. और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां आके झारखंड छात्रों के साथ सहानुभूति रखना और दिल्ली के छात्रों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवाना, बिहार के अंदर AK-47 चलाना, ये जो दोगलापन है राजनीति का ना, ये खत्म होना चाहिए.
1: And you know, whatever this two-facedness, if you want to call it that, double standards, if you want to call it that, that can be battled in the political arena. You heard the peoples whose lives are being impacted. Inki zindagi khatm ho sakti hai ya ban sakti hai based on some simple decisions that those in power take. So please listen to them first. Fight your battles outside. Thanks very much, gentlemen. And especially, jo dono bacche hamare saath Ranchi se jude hain, hum lagataar aapki awaaz uthate rahenge. बोलिए।
5: धन्यवाद आपको बहुत बहुत मैम, आपने जो मंच हम लोग को दिया मैम बोलने के लिए, मतलब दिल से प्रणाम आप सभी को मैम, धन्यवाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद चंडी और विवेक, आप दोनों को, और आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए. थैंक यू वेरी मच. Shifting our focus to Bihar now, where it has been a Bakipur setback for the BJP. But are the bipoll results across three seats in three states giving some larger message to the Saffron Party and about the overall political climate in the country? That question is very relevant after the results of Bakipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The BJP coasted to a comfortable win in Manjalpur with its candidate Satendra Bhai Patel defeating Congress's Bhika Bhai Rabadi by over 30,000 votes. In Madhya Pradesh, Congress retained the seat with Ghanshyam Singh defeating BJP's Ashutosh Tiwari by just over 6,000 votes. But it's the Bakipur seat where all of India is focusing on today. Why? Because of what all was at stake. The seat that was vacated by BJP President Nitin Naveen once he moved to the Rajya Sabha was today won by Jan Swaraj Party's Prashant Kishore by a margin of over 19,000 votes. BJP's Neeraj Kumar could only get 44,827 votes in a seat that Nitin Naveen had won for his party by a margin of 50,000, over 50,000. So the total number of votes that the BJP polled this time was less than even the margin of victory by Nitin Naveen 1 year ago. Naturally, then an enthusiastic opposition is asking, what has happened to the double engine? Is this a referendum on the 7-month-old BJP government in the state? And the million-dollar question, how did PK, Prashant Kishore, pull off this first-time miracle? And let me take that straight across to senior journalist Ashutosh, continues with us, and Harshvardhan Tripathi. Harshvardhan ji, aapse shuruaat karungi. Kya lagta hai aapko ki kaise PK is tarike ki jeet, aur bhi pehli baar. He's a first-time candidate, first time he fought this election, and he's managed to pull off this win.
1: ठीक है बताइए, आप तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो शाम हो गई है, तो बहुत समय बीत गया रिजल्ट आए हुए. तो सबसे पहले तो ये कि पीके आज अफसोस कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बड़ी गलती हो गई. चुनाव जब था विधानसभा का, तब हम क्यों नहीं लड़े, क्यों साहस नहीं कर पाए? राघोपुर से अगर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े होते तो शायद वो चुनाव जीतते भी और आज वो विपक्षी पार्टी होते, क्योंकि बिहार अल्टरनेटिव खोज रहा था. बिहार एस्पिरेशनल बिहार की जीत थी जो 2025 का विधानसभा चुनाव भी था. मैं भी उस वक्त भी कह रहा था कि कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की जीत नहीं है, एस्पिरेशनल बिहार की जीत है, जिसको डर लगता था कहीं फिर से ना कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं फिर से बिहार उस तरफ ना चला जाए जिससे हम बचाना चाहते हैं. लेकिन कोई विकल्प नहीं था उसके पास, विकल्प नहीं था तो प्रचंड बहुमत मिल गया. भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नीतीश कुमार के समर्थकों को लगा कि अरे ये तो सारा वोट हमारा है, उस भ्रम में चले गए, जबकि वो वोट साफ साफ बिहार को बचाने का था, किसी जंगल राज से, किसी हत्या अपहरण लूट से, किसी घनघोर जातिवाद से बचाने का था. लेकिन शायद वो मैसेज नहीं समझ पाए. और एक सीट पर कोई कह सकता है कि सिर्फ बांकीपुर पर आप इतना कुछ कह दे रहे हैं. मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी को, जिसको राहुल गांधी कहते हैं अंधभक्त, जिसको विश्लेषक मजाक उड़ाते हैं कि तो भाजपा को छोड़कर नहीं जाएगा, उस मतदाता ने यह काम किया है. इसको जरा ठीक से समझना होगा. और अगर 30-35 साल जिस सीट पर बीजेपी जीतती रही, नवीन किशोर सिन्हा जी, फिर उनके बेटे नितिन नवीन, वहां एक आप प्रत्याशी नहीं दे पाते हैं, आपका कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता, क्या प्रोसेस था कि अभिषेक बंटी आया, फिर वो चला गया, फिर नीरज सिन्हा आया, और वो कैसे कैंडिडेट थे? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया कि भाजपा में ऐसा कोई कैंडिडेट होता है. आप ये कह के कि हमने मंडल अध्यक्ष को बड़ा बना दिया, मुझे लगता है बीजेपी को बड़े आत्ममंथन आत्मचिंतन की जरूरत है. हाँ, एक जरूर मैं कहूंगा, बड़ा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट है. हालांकि प्रशांत किशोर को इससे खुश नहीं होना हो जाना चाहिए, क्योंकि एक सीट जीत कर वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. उनको अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, स्थिर भाव में करना होगा, और प्रशांत किशोर को बड़बोलेपन से बचना होगा, जो लाउड माउथ है ना, उससे बचना होगा. मुझे लगता है ये चैलेंज है. बाकी तेजस्वी जी तो छुट्टी पर गए थे, तो उनके बारे में बहुत बात नहीं करना चाहिए, थर्ड प्लेस पर गए.
0: पर आशुतोष, आर वी ओवर एस्टिमेटिंग दिस विन फॉर प्रशांत किशोर? अभी हर्षवर्धन जी सेड दैट ही शुड हैव कंटेस्टेड द इलेक्शंस लास्ट ईयर इटसेल्फ, मे बी ही वुड हैव लॉस्ट इवन इफ ही डिड कंटेस्ट हिमसेल्फ. आफ्टर ऑल, ऑन दिस सीट the Jan Swaraj Party candidate in 2025 had polled just 4.92%. This time, Prashant Kishore has polled 49%. It's gone up by that leap. The thing is that perhaps it was just a very weak BJP candidate pitted against a very strong Jan Swaraj.

0: राज कैंडिडेट?
1: देखिए पद्मजा, मुझे लगता है कि अगर इसको हम ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत जबरदस्त झटका लग गया है और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार गिरने वाली, ऐसा फालतू की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो बांकीपुर का जो चुनाव है, एक उपचुनाव है और एक उपचुनाव की जिस तरीके से समीक्षा होनी चाहिए उस तरीके से समीक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तौर पर अगर आप देखें तो ये नितिन नबीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नितिन नबीन की अपनी सीट है। और अपनी सीट पर जहां 2010 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी 60% से कम वोट नहीं मिले, यहां तक कि 2010 से 72% वोट मिला था, 2015 में 60% वोट मिला था, 2020 में 59% वोट मिला है, 2025 से 62% वोट मिला है। वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अगर आके 34% पर रुकता है, यानी 28% का अगर ड्रॉप होता है, तो भले ही पीके बहुत बड़े कैंडिडेट हो, लेकिन ये 28% का जो वोट ड्रॉप है ये अलार्मिंग ट्रेंड है। इसका मतलब यह है कि नितिन नबीन के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर वो कि न केवल पार्टी के अध्यक्ष हैं बल्कि 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 60% वोट लेकर चुनाव जीत रहे हैं, वहां पे पार्टी क्यों हारी? आत्मचिंतन का प्रश्न ये
0: क्यों
1: है,
0: हारी?
1: क्या सम्राट चौधरी
0: आपको
1: के
0: क्या लगता है
1: मुख्यमंत्री?
0: क्यों हारी? एंड लेट मी ऑल्सो जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ डेमोग्राफिक ब्रेकअप टू आवर व्यूअर्स। नाउ 45% ऑफ दिस सीट इज अपर कास्ट, द लार्जेस्ट इज कायस्थ। इन फैक्ट दिस इज द ओनली सीट इन ऑल ऑफ बिहार दैट इज डोमिनेटेड बाय कायस्थ। देन यू हैव गॉट राजपूत, यू हैव गॉट ब्राह्मिन्स, यू हैव गॉट अपर कास्ट पीपल एंड अपर क्लास पीपल, एजुकेटेड पीपल, मिडिल क्लास पीपल। दिस इज एज कोर वोटर बेस फॉर बीजेपी एज इट गेट्स। देन व्हाई डिड द बीजेपी लूज दिस सीट? व्हाट आर द फैक्टर्स, आशुतोष?
1: मैं आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दतिया से भी जोड़ूंगा। व्हेन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती, तब ये दिक्कत पैदा होती। बीजेपी हैज मेस्ड अप इन इन बांकीपुर, बीजेपी हैड मेस्ड अप इन दतिया, बोथ। लुक एट इन दतिया, इट वाज नॉट अ वीक सीट फॉर द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस हैड वन दैट सीट नोइंग फुल्ली वेल यू रिमूव नरोत्तम मिश्रा एंड देयर पीपल क्रिएटेड अ मेहम देयर। Then I see internal sabotage in Datia and I also see internal sabotage in Bakipur.
0: But I'll again play the devil's advocate. They have lost Datia. Remember in the last election also, BJP had lost Datia to Congress.
1: Yes.
0: By about 6,000 yes. votes. This time again, they've lost by the same margin. So it's not like Narottam Mishra did some
1: great damage
0: to the BJP's fortunes.
1: Padmaja, I agree with you. Normally in by-election, the trend is that the ruling party wins. Normal trend is there. Because there's a might of a state and everybody shows that ठीक है, जो पार्टी जीती जिसकी सरकार उसको जिता देते, something like this. Datia, they would have won easily. But look what happened there. And in Bakipur also, you put up a candidate and then last minute, you withdraw the nomination of that candidate. You put up another candidate. So what message you are giving to the constituency of Bakipur? And such carelessness and callousness was done in the party president's own constituency. So just imagine the management of Nitin Naveen or whosoever was in charge over there.
0: But you know, this ruling party wins the bipole logic doesn't always hold. Because if you remember, before the 2019 elections, the obituary was written for the BJP in Uttar Pradesh because they had lost three key Lok Sabha bipoles also. They had lost Gorakhpur, Phulpur, and they had lost one more seat, which I forget. And they'd lost Aradia and Bihar.
1: Western UP.
0: Aradia and Bihar. And these two in Uttar Pradesh, they had lost and then they went on to sweep the Lok Sabha elections. But coming back again to the factors, the nature of this seat, Harshvardhan ji, the fact ki ye ek upper caste seat hai, isme bahut kuch hua tha, Bharat Tiwari ka encounter hua tha, usko lekar ke attack kiya gaya tha BJP ke upar, the fact that a lot of upper castes are not very comfortable with the new chief minister as they were with Nitish Kumar. And the third, of course, is the anti-UGC bill protests also that happened in and around Patna. क्या ये एक लॉन्ग टर्म मैसेज ऑफ बीजेपी की वोटर्स शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पार्टी? कैन वी टेक इट, हर्षवर्धन जी?
2: पंजाब, मुझे लगता है कि इसे दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि आपका वोटर बड़ा जिसको कहें कि भला मानुस है, उसकी पर्सनल कोई ग्रीवांस नहीं होती है, उसकी ग्रीवांस नेशनल इश्यूज पर होती है। बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं, दूसरी पार्टियों के जो उनके वोटर्स होते हैं उनकी पर्सनल ग्रीवांस होती है, वो कास्ट पर वोट करते हैं, वो सब कुछ। बीजेपी का वोटर इस मामले में ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसका जो जिसको कहते हैं कि फ्लिप साइड जो है, वो अगर नेशनल इश्यूज पे करता है तो वो शांत रहता है, बहुत टाइम देता है। यूजीसी ऐसा ही एक मसला था, उसको समझना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दूसरे जो आयातित लोग हैं वो अपने जाति के नेता बन जाए, वो बाहुबली हो जाए, वो दबंग हो जाए, वो गुंडे अपराधी हो जाए, तो उनको तो स्वीकार कर लेंगे। अपना नेता अगर होगा तो नहीं चलेगा। अपनी अपने कैडर से निकला अगर नेता है, वो किसी जाति का भी नेता बन जाए, और हालांकि भाजपा में ऐसा नहीं होता है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। अपने नेता को जहां आपने ताकतवर बनते हुए देखा तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो अहंकार ही हो रहा है इसके अंदर, तो थोड़ा सा। तो ये दोनों चीजों की बड़ी थीन लाइन है जिसको बीजेपी को समझना होगा। एक बात मैं कहूं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर है, पीएम मोदी है, अमित शाह, वो सब खत्म नहीं हो गया है, लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे अर्बन सीट का एक फिनोमिना समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जरूरी है इस वक्त ये बात कहना, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अभी उनको ट्रेनिंग लेनी है, अभी उनको बहुत तैयार होना है, वो अपने हिसाब से सब चीजें करते रहते, इतने समय से राजनीति में है तो उनको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, हमारा अपना शहर का प्रयागराज में इलाहाबाद उत्तरी एक सीट है, वहां डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर, वो संघ के मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, 3 बार लगातार चुनाव जीते, उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते। उसके बाद जब उनका टिकट कटा, किसी और को दिया गया, वो सीट हार गए और अनुग्रह नारायण सिंह जीत गए कांग्रेस के। सवाल ये है कि क्या नितिन नवीन की वो सीट थी क्या, या नितिन नवीन भाजपा के सिंबल पर थे? वो भी एक ऐसे नेता थे, जैसे देश में सैकड़ों अर्बन सीटें हैं, हमें जरा ये समझना पड़ेगा। बीजेपी का कैडर वोट कर रहा, जब उसको ये लगा कि नहीं नहीं हमें तो इस तरह से लिया जा रहा है कि चलो ठीक है किसी को भी खड़ा कर देंगे, और अर्बन सीट्स पर जब जातिवादी वोट नहीं पड़ता है तो मक्खी पे मक्खी बिठाने की जरूरत क्या थी, कायस पे कायस, ब्राह्मण पे ब्राह्मण, ऐसा नहीं चलता है। मुझे लगता है इसकी जो, इसको कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस है, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीजेपी कोर्स करेक्शन वाली पार्टी है, वो ये काम करेगी। हाँ एक मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस बहाने से, अच्छा एक जरूरी चीज एक और जो मुझे लगता है कि रह ना जाए, जितनी जगह पर बीजेपी के खिलाफ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, वो यूथ का हो, जेंजी का हो, किसी भी जगह पर हो, पॉलिटिकल हो, तो वो क्या कर रहा है, वो नए ऑप्शन देख रहा है। उसे नहीं चाहिए तेजस्वी, उसे नहीं चाहिए राहुल गांधी, उसे नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल, वो तिलचट्टा पार्टी को समर्थन कर देगा, कॉकरोच पार्टी, उसे समर्थन कर देगा, उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी कीमत पर, जो पार्टियां हैं तो अपोजिशन स्पेस वो भी बहुत तेजी से श्रिंक कर रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी तो कैडर वाली पार्टी है, उसके पास बहुत कुछ है, ये जो सिर्फ जातियों के नेता, ट्रेडिशनल नेता, उनके लिए कितना खतरा है वो भी जरा सोचना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, एंड दैट एक्चुअली गेट्स मी टू द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क आशुतोष, शुड देयर बी सम रियल सोल सर्चिंग, ऑफ कोर्स should be done by the BJP, but by the principal established opposition parties. Why would you prefer a completely new Prashant Kishore to the lady who was the runner-up to Nitin Naveen in the last election? This time she has been reduced to just about 12, 13,000 votes. What does that say about Tejaswi Yadav?
1: अगर आप पिछले 5 चुनाव का अगर आप हिसाब निकालें बाकीपुर का, तो अपोजिशन को बेयरली 20%, 25% या 28% वोट मिल रहा वहां पे। लास्ट टाइम हमारे कहा 30% वोट मिला जो 2025 में, जब 62.66% वोट लेके नितिन नवीन जीते, और वहां पे कभी आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा होता है, कभी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है। इसका मतलब कि अपोजिशन का स्पेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जहां 60% वोट कंसिस्टेंटली ला रही चुनाव में, अगर उसका वोट शेयर 28% अगर ड्रॉप करता है, 28%, इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्रॉप।
0: नो, बट आशुतोष जी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ द वोट्स पोल, लास्ट टाइम अराउंड रेखा गुप्ता वाज रनर अप विद 46,363 वोट्स, दिस टाइम शी हैज मैनेज्ड टू गेट ओनली 14,000 वोट्स, दैट्स इट, शी इज लेस देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स दैट शी हैड पोल्ड।
1: आई नो कि उनको सिर्फ 10.96 यानी 10.96% वोट मिला है, तो उनका भी जो वोट शेयर है वो तकरीबन 18% श्रिंक किया है।
0: करेक्ट,
1: जो जो आरजेडी का जो वोट है वो भी तकरीबन 18-20% श्रिंक। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो 5 बार लगातार वहां जीत चुके हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। फिर आपने लास्ट मिनट में सब क्यों किया? आप एक कैंडिडेट लाते हैं, उसको बदल देते हैं, दूसरा कैंडिडेट लाते हैं, मैसेज दिया जाता है पार्टी नॉट सीरियस। सो आई एम ओनली सेइंग डोंट टेक योर वोटर्स फॉर ग्रांटेड। If you take your voters granted, whether it is the BJP or the Congress, you will suffer. And I'll tell you this, the rise of the PK as an MLA in Bihar Assembly is a great warning signal to Tejaswi Yadav. Now he is not only is faced with Samrat Chaudhary, but also PK. And PK, knowing PK, PK is very, very aggressive. PK will not only make Samrat Chaudhary's life hell, but also will make Tejaswi Yadav's life hell, and more so.
0: Absolutely, and you know, maybe I am being too optimistic over here, but Harshvardhan ji, do you also see this as a phenomenal change in the direction in which Bihar's politics goes? Bihar mein kya hota hai, jab bhi hum election wahan cover karne jaate hain, log kehte hain yahan to sirf caste ki hi politics hogi, yahan pe to wahi hoga aapka EBC, Yadav, ye wo, jo traditional equations the, that is now slowly, I'm not saying it's going to be a quantum leap, but slowly that equation of understanding Bihar's politics is going to change, where an educated young person who comes from a Brahmin community can maybe be a prominent leader.
2: Padmaja ji, मुझे लगता है कि इसमें एक और silver lining है. नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वो लीडरलेस हो रही थी. कोई लाख कहे कि निशांत कुमार आ गए हैं, संजय झा चला रहे हैं, भाजपा के साथ है तो वो लगता है कि अभी बड़ी पार्टी है. लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा 2030 में, उसका जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा उससे जो निकल कर बाहर गए थे, अपनी पार्टी बनाई, वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं. जेडीयू का कोई ऐसा लीडर नहीं दे पा रहा है. नीतीश कुमार की जो लीडरशिप क्वालिटी थी, बीजेपी ने भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिया है. सम्राट चौधरी उस जगह को बिल्कुल नहीं फिलअप कर पा रहे, जिसको कहते हैं ना कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उस तरफ काम कर रहे हैं, यानी एक जो न्यूट्रल वोटर बेस है उसको और साथ में फॉरवर्ड, यानी न्यूट्रल में वो जेडीयू वाला भी हो सकता है, वो आरजेडी वाला मुस्लिम भी हो सकता है, जिसको लगेगा यार ये क्या तमाशा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात करके कोई लेके चला जाता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वाला है वो तो ओवैसी जी के साथ चला जाएगा. इसमें मुझे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा दिख रहा है. वो शायद अभी इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, अभी बाहर वगैरह घूमते रहते, क्योंकि हम लोग राहुल जी की तो बड़ी आलोचना करते हैं, विदेश चले जाते हैं, अपने तेजस्वी भैया भी जाते हैं, तो वो भी जरा उनको सोचना चाहिए कि जमीन यहाँ है, यहाँ बचाना है.
0: Maybe they'll get some good time by themselves to think over what the future holds for them. But we all love a good shake-up in politics. Wake-up call for everyone and more stuff for us to discuss. So thank you very much, Ashutosh and Harshvardhan ji, for having joined us on this latest edition of We Talk Politics. Thanks very much for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
12: कुछ इससे भी अनोखा।
11: कमला पसंद, सिर्फ एक, एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: Renatu sataranga jo hona hai wo to hona hi hai rangile tu sada muskura sada sada sada muskura rang rang rang rang rang rangine rang rangine re de kaise bhi ho din rang bana rahe
1: bojhe paints rang bana rahe
2: meetha ya namkeen चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933 बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
7: रेसिपी आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
6: आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: कौन?
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आपने ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
8: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल।
9: तीस दिन के प्रयास में भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं उसको देखा है। बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बनाया हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा NDA की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूँ।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आतेर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
6: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।

0: रहना तू सतरंगा,
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट रंग बना रहे।
3: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
5: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउ?

0: Rena tu sataranga, jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura, sada sada sada muskura. Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
1: Bojo paints, rang bana rahe.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। एलीट,
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: सरसों से सरसों।
11: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
12: ब्रेकफास्ट आपके साथ खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
13: हरियाणा।
12: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
13: डेढ़ महीने पे।
12: आपकी फैमिली है?
13: कौन?
12: बच्चे हैं?
13: 3 साल।
12: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
13: बहुत।
12: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
13: सिनेमा तक अलाउड।
12: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
11: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
14: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस, सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट।

0: in a major shock to six champion Indian wrestlers, including Vinesh Fogat and Sakshi Malik, the Olympian wrestlers. A Delhi court today acquitted former BJP MP and ex-Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh in the sexual harassment case filed by them against him. This was Delhi's Rouse Avenue court that said the prosecution failed to prove charges beyond reasonable doubt and that evidence did not prove the actual offence. NDTV's Tej Sri Purandare interrogated Brij Bhushan right after the verdict.
1: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा दो से ढाई साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया। आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
2: दुख भरा जी समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है और अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
1: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
2: उनकी पीड़ा वो बताएंगी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
1: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
2: नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
1: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
2: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
1: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
2: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
1: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
2: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
1: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
2: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
1: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
3: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही है।
1: आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
3: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही है।
1: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस है उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
2: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
4: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
3: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।

0: सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो हमारी कमेटी ने दो चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
1: RSS leader Atul Limay has sharply criticized the ongoing CJP protest, urging the people not to view the movement merely through a political or anti-BJP lens. Speaking in Chhatrapati Sambhaji Nagar, he said that if India is to become a developed nation, the country needs the active participation of its youth. However, he questioned what kind of values, aspirations and ideas should guide this youth power. Now, the RSS leader went on to allege that the CJP movement should be viewed as a force being used against the constitution and the nation as well. He's also called for a closer examination of the movement from that perspective.
2: आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बी जे पी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की। संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है। सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको।
1: Well, hundreds of students have continued the protest in Ranchi in Jharkhand over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission, that is the JPSC examination. Now, the JSSC and the CGL and other recruitment test as well. Students have been on an indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe onto the recruitment examinations, the cancellation of the 14 JPSC, combined preliminary test and even reforms in the state's recruitment agencies. The students allege that the OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dibke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
4: वो छात्र है, वो छात्र है, और वो छात्र अपने genuine demand के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है।
5: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर इस स्थिति पैदा हो। अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोलिए और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए।
6: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं।
7: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ। द स्टूडेंट्स इन झारखंड आर वेटिंग फॉर जस्टिस, आर वेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस लेड अलायंस इन झारखंड। बट टिल नाउ आइदर राहुल गांधी हैज स्पोकन और डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट।

0: Jharkhand, neither Arvind Kejriwal has spoken, neither Akhilesh Yadav has spoken. When are these people going and taking a ticket and doing a march with the students in Jharkhand to the Jharkhand Vidhan Sabha? Their silence exposes their hypocrisy. Their silence exposes that Congress Party, Jharkhand Mukti Morcha, Akhilesh Yadav and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this, and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party.
1: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया, और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का। उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र, वो प्लास्टिक लगा दिया था उसको भी हटा दिया, और वहां के आंदोलित छात्र कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच।
2: Former Wrestling Federation of India Chief Brijbhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brijbhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brijbhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brijbhushan said to my colleague Tejshree.
3: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा 2 से 2.5 साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
4: दुख भरा जी समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है, और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
3: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
4: उनकी पीड़ा वो बताएंगी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
3: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
4: वो नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता
3: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
4: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
3: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
4: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
3: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
4: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
3: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
4: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
3: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
5: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही हैं।
3: आखिरी सवाल, एक एक एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
5: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
3: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं, आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
4: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
2: The Kaveri water row has triggered a fresh political clash in Tamil Nadu. Udayanidhi has targeted Vijayalaya TVK. The leader of opposition in Tamil Nadu Assembly, DMK's Udayanidhi Stalin, has targeted Chief Minister Vijay, alleging that TVK failed Tamil Nadu on Mekadatu water and Delta farmers concern. He also alleged that Chief Minister Vijay is embarrassed to hold an all-party meeting. DMK also meanwhile staged a protest against Vijay government. Udayanidhi Stalin led the DMK protest against Vijay government. Meanwhile, the farmers led by Farmers Association leader staged a protest by burying themselves in sand of banks of Kaveri River in the area, demanding the immediate release of Kaveri water for irrigation. Lots of political reactions that are coming in on that story.
6: திருட்டுலாட்டு விற்கிற ஒரு அமைச்சர், திருட்டு விசிடி விற்ற ஒரு அமைச்சர், பிளாக்ல டிக்கெட் விற்கிற ஒரு அமைச்சர், உருட்டுக்கட்டை இலையோடைய சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு அமைச்சர், எல்லாத்துக்கும் மேல போதை பவுடர் அமைச்சர். இப்படி மொத்த கேபினெட்டுமே ஒரு ஜோக்கர் கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆட்சியில முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் போடுறாரு, அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட விட்டுருக்கிறது இல்ல, உள்ள போய் ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு நாள் நீ பார்த்திருப்பீங்க, ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க எல்லாம் வெளில வர சொல்லி அவங்களுடைய கட்சி பேரை கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு ஆட்சியே தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
7: We have been very clear from day one. This is a matter of interstate water sharing issue and all of us have to work together. We have Mr. DK Shukumar, the Chief Minister, also has called for all party meeting, not once but twice. One is spoken to all the MPs irrespective of parties in Delhi. Yesterday also there was an all party meeting. So we are seeking help and cooperation with everybody. These are something beyond government's control, right? Natural calamities, natural disaster, the El Nino, super El Nino is not in the government's control. So we have to work together to ensure that we give the best possible solution for the people.
8: Kaveri Water Tribunal is the authority for Kaveri Water. Normally, the world over, in all international law, the lower riparian states cannot be denied of water. When the tribunal asks the Karnataka government to release a certain amount of water, they are discussing as to whether to release water or not. That is wrong. That is against law. So, water should definitely be released. We will fight for it.
9: It is very disheartening that the TVK government has not taken any steps to ensure that the rights of the Tamil people are being justified and the water from Karnataka gets released immediately and the farmers of the Delta region receive the good news that the water is reaching them anytime soon. But unfortunately, the Chief Minister is busy in making drone shots and red carpet welcomes. Let me remind the Chief Minister that drone shots will not feed the people of Tamil Nadu. It is only the farmers who can feed the people. The farmers need water and we need to ensure that the water security of the state is not compromised at any cost.
2: Well, a political controversy has erupted in Tamil Nadu after DMK workers were heard chanting Trisha's name repeatedly during a speech by Udayanidhi Stalin on the Kaveri water issue. What's triggered a bigger storm is how Tamil Nadu leader of opposition reacted to the chants. The DMK MLA smirked and then said, whichever water should come, and then said that he meant the Kaveri water. Now, Vijay supporters have alleged that the chants carried a double meaning, triggering sharp criticism. The remarks have also drawn condemnation over bringing a woman's name and the personal life into a political battle.
6: ஆனால் இதை பற்றி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுகிறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன, திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்லை அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்னேன்.
2: Let's now talk about another political controversy that has erupted, this time in Maharashtra, after a video showed Congress leader Nana Patole's supporters washing his feet and showering him with flowers during the Guru Purnima celebrations. The viral clip has drew sharp criticism from the BJP, which has accused the Congress of promoting a culture of

0: Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore has warned the Bankipur bipole in a major upset for the BJP, ending the party's four-decade hold over the constituency. Kishore received more than 62,000 votes in his electoral debut, winning with a margin of more than 18,000 votes in his first reaction after the win. PK said that this is a big message from the Bankipur to the BJP and has urged the ruling party to give the state a good chief minister. Kishore also vowed that development will be visible in Bankipur in 2 to 3 months.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए।
2: What would you like to say on the massive victory?
3: We are all very, very happy. And I would like to thank the Almighty Maa Kamakhya and the people of Bankipur and the entire people of Bihar and each and every member of his team, the Jan Swaraj team, for this big victory.
2: Do you believe that this kind of massive victory the people of Bankipur will give to the Prashant Kishore?
3: I was very hopeful because as I hear that Bankipur is, the people of Bankipur would definitely want a change, and being the educated people of Bihar, so definitely there was a lot of hope that he would.
2: But this is a very massive victory, around 20,000 of vote margin PK just swiped away in Bankipur. So this is a very massive victory, almost the people of Bankipur give him landslide.
3: So that's what I'm saying. I'm saying thank you to the people of Bankipur.
2: How important your role?
3: Grateful to all of them.
2: How important your role with PK in the personal life as well as the political life is running out in Bihar?
3: See, in political life, I stay away. I think he has a good team to, do that part. But yeah, in personal life, definitely I have to give him whatever support I can to the best of my possibility.
0: Well, the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology sharply questioned Meta over the brief removal of Prime Minister's Facebook video, with Committee Chairman Nishikant Dubey telling the company that an apology alone was insufficient and calling for greater accountability. During a nearly three-hour-long meeting that was attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the MPs also raised wider concerns over content moderation, algorithmic transparency, foreign influence on digital platforms and even compliance with the Indian laws. Now, the members reportedly sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. They discussed the company's content control mechanisms and even alleged foreign links. And they've also warned that the intermediary or the safe harbor protections could come under scrutiny if such lapses recur. Now, Meta has expressed regret over the incident, describing the removal as an error and assured that the committee that corrective measures would be taken to prevent similar incidents in the future.
4: Meta India ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये Meta India पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा, जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
0: RSS leader Atul Limay has sharply criticized the ongoing CJP protest urging the people not to view the movement merely through a political or anti-BJP lens. Speaking in Chhatrapati Sambhaji Nagar, he said that if India is to become a developed nation, the country needs the active participation of its youth. However, he questioned what kind of values, aspirations and ideas should guide this youth power. Now, the RSS leader went on to allege that the CJP movement should be viewed as a force being used against the constitution and the nation as well. He's also called for a closer examination of the movement from that perspective.
5: आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे. पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बी जे पी या अँगलनी हे बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
6: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी आरएसएस की. संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है. सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको.
0: Well, hundreds of students have continued the protest in Ranchi in Jharkhand over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission, that is the JPSC examination. Now, the JSSC and the CGL and other recruitment tests as well. Students have been on an indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe onto the recruitment examinations, the cancellation of the 14 JPSC, combined preliminary test and even reforms in the state's recruitment agencies. The students allege the OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dibke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
7: वो छात्र है, वो छात्र है, और वो छात्र अपने genuine demand के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है. जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है. जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है. इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है.
8: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर इस स्थिति पैदा हो. अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोलिए और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए.
9: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए. जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा. अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं.
10: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ. द स्टूडेंट्स इन झारखंड आर वेटिंग फॉर जस्टिस, आर वेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस लेड अलायंस इन झारखंड. बट टिल नाउ नाइदर राहुल गांधी हैज स्पोकन और डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट इन झारखंड. नाइदर अरविंद केजरीवाल हैज स्पोकन, नाइदर अखिलेश यादव हैज स्पोकन. व्हेन आर दीज पीपल गोइंग एंड टेकिंग अ टिकट एंड डूइंग अ मार्च विद द स्टूडेंट्स इन झारखंड टू द झारखंड विधानसभा. देयर साइलेंस एक्सपोजेस देयर हिपोक्रेसी. देयर साइलेंस एक्सपोजेस दैट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अखिलेश यादव and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party.
11: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं.
12: एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का। उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र वो प्लास्टिक लगा दिया था उसको भी हटा दिया और वहां के आंदोलित छात्र कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं। एक ही डिमांड है सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच।
0: Former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brijbhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brijbhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brijbhushan said to my colleague Tejshri.
13: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा 2 से 2.5 साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
14: दुख भरा जीवन समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
13: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
14: उनकी पीड़ा वो बताएंगी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
13: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
14: नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
13: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं वो, देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
14: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
13: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
14: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
13: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
14: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
13: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
14: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
13: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
15: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही हैं।
13: आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
15: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
13: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
14: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
0: The Kaveri water row has triggered a fresh political clash in Tamil Nadu. Udayanidhi has targeted Vijayalaya TVK, the leader of opposition in Tamil Nadu Assembly. DMK's Udayanidhi Stalin has targeted Chief Minister Vijay, alleging that TVK failed Tamil Nadu on Mekadatu water and Delta farmers' concern. He also alleged that Chief Minister Vijay is embarrassed to hold an all-party meeting. DMK also meanwhile staged a protest against Vijay government. Udayanidhi Stalin led the DMK protest against Vijay government. Meanwhile, the farmers led by Farmers Association leader staged a protest by burying themselves in sand of banks of Kaveri River in in the area demanding the immediate release of Kaveri water for irrigation. Lots of political reactions that are coming in on that story.
16: பிளாக் டிக்கெட் விற்கிற ஒரு அமைச்சர், உருட்டுக்கட்டையிலோட சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு அமைச்சர், எல்லாத்துக்கும் மேல போதை பவுடர் அமைச்சர். இப்படி மொத்த கேபினட்டுமே ஒரு ஜோக்கர் கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆட்சியில முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் போடுறாரு, அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டல், ஏன் பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட விட்டுருக்கிறது இல்ல, உள்ள போய் ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு நாள் நீ பார்த்துருப்பீங்க, ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்லாம் வெளில வர சொல்லி அவங்களுடைய கட்சி பேரை கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு ஆட்சியை தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
17: We have been very clear from day one. This is a matter of interstate water sharing issue, and all of us have to work together. We have Mr. D.K. Shukumar, the Chief Minister, also has called for all party meeting, not once but twice. One is spoken to all the MPs, irrespective of parties, in Delhi. Yesterday also there was an all party meeting. So we are seeking help and cooperation with everybody. These are something beyond government's control, right? Natural calamities, natural disaster, the El Nino, super El Nino is not in the government's control. So we have to work together to ensure that we give the best possible solution for the people.
18: Kaveri Water Tribunal is the authority for Kaveri Water. Normally, the world over, in all international law, the lower riparian states cannot be denied of water. When the tribunal asks the Karnataka government to release a certain amount of water, they are discussing as to whether to release water or not. That is wrong. That is against law. So, water should definitely be released. We will fight for it.
19: It is very disheartening that the TVK government has not taken any steps to ensure that the rights of the Tamil people are being justified and the water from Karnataka gets released immediately and the farmers of the Delta region receive the good news that the water is reaching them anytime soon. But unfortunately, the Chief Minister is busy in making drone shots and red carpet welcomes. Let me remind the Chief Minister that drone shots will not feed the people of Tamil Nadu. It is only the farmers who can feed the people. The farmers need water, and we need to ensure that the water security of the state is not compromised at any cost.
0: Well, a political controversy has erupted in Tamil Nadu after DMK workers were heard chanting Trisha's name repeatedly during a speech by Udayanidhi Stalin on the Kaveri water issue. What's triggered a bigger storm is how Tamil Nadu leader of opposition reacted to the chants. The DMK MLA smirked and then said, whichever water should come, and then said that he meant the Kaveri water. Now, Vijay supporters have alleged that the chants carried a double meaning, triggering sharp criticism. The remarks have also drawn condemnation over bringing a woman's name and the person's life into a political battle.
16: ஆனா இதை பத்தி இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன, திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வருமா? காவிரி சொன்ன.
0: Let's now talk about another political controversy that has erupted, this time in Maharashtra, after a video showed Congress leader Nana Patole's supporters washing his feet and showering him with flowers during the Guru Purnima celebrations. The viral clip has drew sharp criticism from the BJP, which has accused the Congress of promoting a culture of personality worship. Patole later clarified that he did not usually approve of such acts and said that the family members had performed the ritual as a mark of respect on Guru Purnima. Now, the Congress leader, Nana Patole, has defended himself after the viral video showing two men washing his feet during Guru Purnima had sparked a political row in the state of Maharashtra. Patole said that the men were younger members of his family who voluntarily performed the ritual as a mark of respect, insisting that he neither asked nor forced anyone to do so. Responding to the BJP's criticism, he said that he usually does not approve of such acts and added that he is not a saint or a spiritual figure.
20: वो तो पारिवारिक काम था कोई मैंने सार्वजनिक रूप से मैं जबरदस्ती किसी को ये तो नहीं करा रहा था वो हमारा पारिवारिक है अब पारिवारिक वीडियो मीडिया ने जिस तरह से वायरल किया है अब उसके लिए क्या बोल सकता हूँ मीडिया को भी अगर वही इशू अच्छा लगता है अरे मैं मुझे लगता है कि वो मेरे परिवार के लोग है मेरे से छोटे लोग है वो लोग मैं कोई बंदूक तो नहीं लगा के रखा हूँ मैं तो मोबाइल में देख रहा था तो मुझे लगता है कि संस्कार हमें बीजेपी ने नहीं पढ़ाना चाहिए
21: नेत्याचे संस्कार संस्कृती अशीच आहे जे अशा पद्धतीचे वर्तन या राज्यामध्ये करतात त्यामुळे तर बोध घेतला पाहिजे त्यांनी की काय करतोय कशाकरता करतोय याच्याने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समाजाची टीकाच मिळणार आहे काय मिळणार आहे असे प्रयत्न करू नये
0: Well, Hollywood's favorite web-slinger has spun a new box office record in India. Spider-Man, Brand New Day has delivered the biggest opening ever for a Hollywood film in the country, but it has still two major Bollywood blockbusters ahead of it. Here's how the latest Spider-Man film has fared against India's biggest opening day records.
22: Rebirth.
23: Sorry about that.
24: You're not one of my students, are you?
25: Spider-Man has swung into India and he has made a record-breaking start at the box office.
26: You're the only one who's immune to it.
25: Collecting rupees 72.44 crore gross and rupees 60.6 crore net on day one.
27: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
28: He's a little weird.
25: The film released on Thursday, July 30, with 17,250 shows across the country and recorded an overall occupancy of 56.58%. Its rupees 72.44 crore opening has taken it past some of the biggest Hollywood and Bollywood blockbusters. Avengers Endgame had opened at rupees 65 crore in India, while Avatar The Way of the Water had collected rupees 48.75 crore on its opening day. And the list doesn't stop with Hollywood. Spider-Man has also crossed several major Bollywood opening day numbers. Shah Rukh Khan and Deepika Padukone's Pathaan opened at rupees 67.19 crore rupees. And the first Dhurandhar is also behind the new Spider-Man. But there are still two big Bollywood opening day records standing above Spider-Man. Ranbir Kapoor's Animal with rupees 76.1 crore. And Dhurandhar, The Revenge, which opened at a staggering rupees 102.55 crore. And Spider-Man's strong start came without vlog bookings, with occupancy rising from 51.22% in the morning to 65.11% at night. The question now is whether that momentum can carry through the weekend and whether Spider-Man can eventually challenge India's biggest box office records. For now, Spider-Man has conquered Hollywood. The biggest Indian box office records are still waiting.
26: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
25: Bureau Report, NDTV World.
22: Rebirth.
0: With that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहा। उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
1: RSS leader Atul Limay has sharply criticized the ongoing CJP protest, urging the people not to view the movement merely through a political or anti-BJP lens. Speaking in Chhatrapati Sambhaji Nagar, he said that if India is to become a developed nation, the country needs the active participation of its youth. However, he questioned what kind of values, aspirations and ideas should guide this youth power. Now, the RSS leader went on to allege that the CJP movement should be viewed as a force being used against the constitution and the nation as well. He's also called for a closer examination of the movement from that perspective.
2: आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बी जे पी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी आरएसएस की, संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है, सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको।
1: Well, hundreds of students have continued the protest in Ranchi in Jharkhand over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission, that is the JPSC examination. Now, the JSSC and the CGL and other recruitment test as well. Students have been on an indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe onto the recruitment examinations, the cancellation of the 14 JPSC, combined preliminary test and even reforms in the state's recruitment agencies. The students allege the OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dipke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
4: वो छात्र है, वो छात्र है, और वो छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है।
5: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर इसी स्थिति पैदा हो। अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोले और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए।
6: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उसको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं,

0: और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ।
1: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ, द स्टूडेंट्स इन झारखंड आर वेटिंग फॉर जस्टिस, आर वेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस लेड अलायंस इन झारखंड, बट टिल नाउ नाइदर राहुल गांधी हैज स्पोकन और डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट इन झारखंड, नाइदर अरविंद केजरीवाल हैज स्पोकन, नाइदर अखिलेश यादव हैज स्पोकन। व्हेन आर दीज पीपल गोइंग एंड टेकिंग अ टिकट एंड डूइंग अ मार्च विद द स्टूडेंट्स इन झारखंड टू द झारखंड विधानसभा? देयर साइलेंस एक्सपोजेज देयर हिपोक्रेसी, देयर साइलेंस एक्सपोजेज दैट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अखिलेश यादव एंड अरविंद केजरीवाल आर एंटी यूथ। इन देर ओन स्टेट गवर्नमेंट मैसिव पेपर लीक इज टेकिंग प्लेस, देर इज बीन जीरो अकाउंटेबिलिटी। द यूथ ऑफ इंडिया इज सींग दिस एंड द यूथ ऑफ इंडिया विल पनिश द कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एंड आम आदमी पार्टी।
2: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का। उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र, वो प्लास्टिक लगा दिया था, उसको भी हटा दिया। और वहां के आंदोलित छात्र कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच।
3: Former Wrestling Federation of India Chief Brijbhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brijbhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brijbhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision and court's decision to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brijbhushan said to my colleague Tejshri.
4: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा 2 से 2.5 साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
5: दुख भरा जीवन समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
4: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
5: उनकी पीड़ा वो बताएंगी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
4: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
5: नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
4: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
5: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
4: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
5: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
4: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
5: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
4: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
5: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
4: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
6: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए। नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही हैं।
4: आखिरी सवाल, एक एक एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
6: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
4: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
1: This location from Tel Aviv
0: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
2: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
3: The Ayatollah Khamenei is gone.
4: There has been a missile attack right behind me.
5: And we need to rush into a shelter.
6: Heading there.
7: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
0: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted.
9: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always on the biggest story of the day, everything that you're talking about that you need to know, the buck stops here. The entire country has been talking about the paper leaks, the issues before students, their desperation, demand for accountability. All of that spurred the agitation right here in New Delhi, the national capital. But are there absolutely no eyes on Jharkhand, where an equally big agitation by students over paper leaks is raging? That's our top story today. We'll also talk about three bipoll results from across three states and all eyes on Bihar in that case. A bipoll blow for the BJP. Is this giving out a larger political message for where things stand right now and in which direction politics in India is headed? All of that and much more over the course of the next 60 minutes. But let's get you started with the big story on the show today. For the sixth straight day, Ranchi has become the epicenter of a massive students' protest in Jharkhand. Hundreds of job aspirants are camping in Jharkhand's capital city, alleging serious irregularities in recruitment examinations, including Jharkhand Public Service Commission, the Staff Selection Commission, and other recruitment tests. Their charge is very simple. Lapses in examinations that have denied students a fair chance. The Hemant Soren government has responded with the CID probe, but the students say that is not enough. They want a CBI investigation. They want the 14th JPSC preliminary examination scrapped and held again. They also want greater transparency and sweeping reforms in the way these exams are conducted. And above all, they want to be heard. With no breakthrough in sight so far, student leader Devendranath Mehto, in fact, who also belongs to a local political party, has begun an indefinite hunger strike, appealing to all the different parties to stand with Jharkhand's youth.
10: से हम अनशन तक का सफर अब तय कर रहे हैं. आपको लगता है कुछ बड़ी पार्टी जैसे दिल्ली में जब जनपद मंदिर में आंदोलन चला था, बड़े बड़े दल पहुंचे थे, CJP वाले पहुंचे थे. आपको लगता है कि हम लोग को भी यहाँ आना चाहिए और आपके आंदोलन में साथ देना चाहिए?
11: जी, आना चाहिए, सबको आना चाहिए. ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंश से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं. इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं. तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए.
12: हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं. हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं, और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज़ हैं. जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे, या सामाजिक रूप से दे, या आर्थिक रूप से दे, या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं. और हम उनके इस कार्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप हमें इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए अपना पहल कर रहे हैं.
13: झारखंड की मिट्टी ऐसी है कि सरकार से अभी भी गुहार लगा रही है कि वो छात्रों की बात सुने. और लोकतंत्र में संवाद करना, डायलॉग करना एक अच्छे लोकतंत्र को सूचना देता है. तो हम अभी भी नम्र निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार हमसे आए, हमसे बात करें. JPSC हो, JSSC हो, TDL जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पूर्व में कराई गई जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसको रद्द किया जाए तत्काल रूप से. और जिस कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा. सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए.
9: Now, this appeal for solidarity, however, has found only limited traction. The CJP, which spearheaded the agitation at Jantar Mantar, in fact, at several different parts of the country, they also went to Rajasthan. Similar protests were held in Mumbai. They have backed the Ranchi protests, but only through a video call. Founder Abhijit Dipke promised to join the agitation once his health improves. One wonders, where are the other prominent faces of this movement?
14: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
15: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
14: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
9: And naturally, that's where the questions begin. The BJP has accused Congress of practicing selective activism. Their charge that when students protested in Delhi, when it was about a BJP minister, a BJP government, Congress leaders reached the protest site. Pawan Khera expressed solidarity. Rahul Gandhi held a Chhatro Ki Goonj rally across several cities, even staged a protest outside the Prime Minister's residence. The call has always been for accountability, but in Jharkhand, instead of sending its leaders, the Congress merely sent out breakfast boxes. The question is, where is the political solidarity now? Why can't the Congress and other parties who have said that they want to stand by the students, that they want accountability by those in power, why can't they hear the Chhatro Ki Goonj in Jharkhand?
16: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह हो कि आप लोग

0: इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर है वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
1: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
2: द रिसेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन झारखंड, द प्रोटेस्ट बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन shows the double standards of the Congress party. Congress party wants to take political points by supporting the CJP protest in Delhi and is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
3: All right, let's take this question across to Siddharth Yadav, joining us from the BJP. We have political analyst Ashutosh and Sanjay Jha both joining us. But my first question is to two young men who are joining us from Ranchi. We have Vivek Pandit joining us from the protest site, along with Chandi Tiwari. Chandi Tiwari ji, sabse pehle aap hi se poochungi, kyunki aap mauke par maujood hain. Abhijit Dipke aur Ashutosh Ranka ka wo video call ab sabne dekha hai. Unhone baat ki hai, unhone kaha hai ki hum hain chhatron ke saath. To ab aap santusht hain? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
4: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
3: क्योंकि चंडी, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ जेएमएम की तरफ से वक्तव्य आया है, वो कह रहे हमने फुल एक्शन लिया हुआ है, हमने छात्र के साथ खड़े होकर न्याय की लड़ाई जारी रखी है, 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, उनके साथ पूछताछ हुई है, आगे की कार्रवाई भी हम करने वाले हैं, ओआरएम लीक का कनेक्शन भी हम देखने वाले हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
4: प्रॉब्लम है मैम, जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद अपना डिसीजन लेता है और डिसीजन कौन ले रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल, बताइए। और वो जो टीडीपीएल का मार्केटिंग हेड है, वो उसका नाम है मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी, वो सारा एग्जाम में टॉप किए हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल सेकंड रैंकर है, जेपीएससी पीटी निकाला है और बहुत सारा एग्जाम, जितना भी एग्जाम जेपीएससी जेएसएससी लेता है उसमें सब में क्वालिफाई हो, उसका फैमिली भी सारा चीज में, मतलब लगता है उसका फैमिली हो, उसका रिलेशन हो, जहां जहां उसका रिलेशन मिलता है, दोस्त यार, भैया, भाभी, जितना भी है, सब सीजीएल में जॉब कर रहे हैं मैम, कहीं ना कहीं जॉब लगे हुए जेपीएससी। तो यही तो हाल है मैम। सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड का, जो चीज है मेन चीज है, मेन मुद्दा है कि झारखंड चाह क्या रहा है। आज 26 साल के इतिहास में मैम समझ लीजिए, पढ़ते पढ़ते आदमी का एज खत्म हो गया मैम, मतलब जो किसान है, किसान वर्ग है, अपना एक किसान है, 50,000 लिया है लोन, वो भी बच्चा को दे देता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करो, वो सब देखने को लग रहा है कि निरर्थक हो चुका है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है लड़का, क्योंकि जितना है सब सीट को बिक दिया जाता है। जेपीएससी में मैम, जेपीएससी पीटी में 103 सीट निकाला गया था और सुनने में आ रहा है कि एक भी सीट नहीं छोड़ा है जो रेट तय नहीं था, सभी सीटों को बेच दिया गया। और मैम ऐसा कैसे हो सकता है, आप बोलिए कि जेपीएससी संस्था है, इतना बड़ा संस्था, और कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले रहा है और सरकार को मालूम नहीं है मैम? ये सरकार के साफ मंशा को पता चलता है वो क्या कर रहा है।
3: तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना आप खुद ही बता रहे हैं कि वो एक अलग संस्था है, तो दोषारोपण सरकार के ऊपर क्यों किया जा रहा है?

0: विवेक
1: हम नहीं तो सर अपन करते हैं हम
0: नहीं, मतलब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं ना विवेक, आपको क्या लगता है उसके बारे में, क्या चाहते क्या है आप सरकार से, जो राज्य सरकार है?
2: जी मैं ये चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार है, क्योंकि उनके अंडर संस्थाएं हैं, जेपीएससी है या जेएसएससी है, तो आप सरकार हैं, आप मुखिया इस राज्य के, और आपके अंतर्गत आपके राज्य में जो भी एग्जाम ले रहे हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़े पैमाने पे स्कैम हो रहा है, और अगर आप सरकार होते हुए भी अगर आप एक्शन ले लेते हैं, इसी एक्शन नहीं लेते भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 26 साल से जब से झारखंड राज्य बना है, 26 साल से हम लोग उस समय पैदा हुए थे, आज इतना बड़ा हो गए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट टाइम आया था दारोगा का वैकेंसी 2016-17 में, अभी पता है 10 साल से ज्यादा हो गई है, जब हम लोग का उम्र नहीं हुआ था उस समय भर नहीं पाए थे, अब जब उम्र आया है तो वैकेंसी नहीं, अब हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाए? सालों साल से 10 घंटा 12 घंटा दिन रात हम लोग पढ़ते हैं, एक टाइम दो टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पे किताब कॉपी पे पैसे खर्च करते हैं। इतना करने के बावजूद अगर हम लोग को एक अच्छा सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाए, तो फिर मैम कहाँ जाएंगे?
0: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
2: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम कोई हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का तिरपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूं कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
1: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार ऐसा ना माने, सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग अपना चले जाएंगे, हम लोग को कोई राजनीति नहीं
2: करना, क्योंकि हमको पता है कि सिस्टम में खराबी है, आप सिस्टम को ठीक करो ना, मुझे सरकार से क्या लेना देना है, आप फेयर एग्जाम लो, सिलेक्शन ले लो, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे हम लोग इतना दिन रात, सिलेक्शन ले लो, हमको क्या चाहिए, बस एक नौकरी चाहिए। एक युवा जो दिन रात मेहनत करता है, सालों साल पढ़ता है, एक गरीब परिवार से आता है, वो बच्चा बस एक नौकरी मांग रहा है, वो भी नौकरी तब मांग रहा है जब एग्जाम लिख के।
0: कोई आए हैं, कोई भी मंत्री परिषद से आपसे मिलने आए हैं, किसी ने संदेश भेजा है, कुछ खाने के पैकेट आ रहे थे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, मैंने देखा आज सुबह?
1: नहीं, मैं ऐसा
2: नहीं है सर,
1: ऐसा हम लोग एक्सेप्ट, मतलब होता है कि कोई भी कुछ देता है वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसा कोई पार्टी फंडिंग उस तरह कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है।
0: किसी मंत्री ने आपसे बात करने की कोशिश की, कोई दिलासा दिलाने की, सांत्वना देने की, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई मंत्री आया कांग्रेस से जेएमएम से?
2: कोई मंत्री ऐसा नहीं है मैम, अभी तक नहीं आया, 10 दिन होने चले हैं। मैं तो अच्छा उन लोग को मुझे लगता होगा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी मंशा ही था ये सब करवाने का, अगर नहीं होता, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती, स्कैम नहीं होता, तो कोई भी जांच करे, सीबी जांच करे, ईडी जांच करे, कोई भी जांच करे, क्या डर? अगर हम सही है तो किसी भी चीज को जांच करवाने में क्या डर, कोई डर नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार डर रही है, मतलब जरूर सरकार की मंशा थी स्कैम करवाने की।
1: मैं सोचेंगे झारखंड का एक एग्जाम देखा जाए ना मैम, किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा गया, आप अगर इसमें आएंगे और बढ़िया से देखेंगे क्या क्या चल रहा है, तो आप जो है ना, मतलब लगता है कि पूरा देश में ऐसा होगा, सुनेगा तो लगता है कि सहम जाएगा कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था
2: बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।
0: क्योंकि मैं पीछे भी देख रही हूँ, जो सारी पीछे लाइटें जली हुई है, ये सब छात्र बैठे हुए हैं आपके आसपास, जो टेंट लगा करके, जो ये पूरे पीछे लाइट दिख रही है आपके, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं?
1: ना कुछ है बाहर का लाइट है, कुछ अंदर का लाइट है मैम, ऐसा की
2: कुछ बाहर का लाइट है, कुछ अंदर का ग्राउंड की लाइट भी है।
0: कितने दिनों तक आप यहाँ पर रहेंगे, कब तक लड़ पाएंगे? अगर बारिश हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, बुखार हो रहा है, कब तक लड़ोगे?
2: हम लोग ले चुके हैं कि जब तक सरकार हम लोगों की मांगे को पूरी नहीं करेगी, हम लोग अनिश्चित काल तक लड़ेंगे। अगर इस दौरान अगर हम लोगों की जान भी जाती है तो हम लोग अपना जान भी दे देंगे, क्योंकि हम लोग का भविष्य पूरा कुछ दिख नहीं रहा, भविष्य पूरा तरह से खाली दिख रहा है, हम लोग क्या

0: सालों साल से मेहनत करेगा। पापा मम्मी जब फोन करते ना मैम, जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्या बोलूँ उनसे। हर साल एक साल बोलते हैं कि पापा बस एक साल और, पापा एक साल और। मैम आप स्टूडियो में बैठे हैं, झारखंड का दर्द सुनेंगे मैम आप रो लेंगे, ऐसा व्यवस्था इन लोगों ने क्रिएट किया है। लेकिन आपको क्या बताऊं, लेकिन ये आप सुनना चाहिए झारखंड कैसे जी रहा है। झारखंड में एक एक जो बच्चा को जिस तरह छलावा छालो भर मैम तैयारी करता है, किस कंडीशन में रहता है, आप लोग देखेंगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रहा है। क्या
1: एक समय था मैम कि जब हम लोग घर में रहते थे तो अपना जो क्लासमेट था वो सब पूछता था, आज जब घर जाते हैं ना तो भतीजे हैं भतीजियां हैं जो बच्चे हैं ना वो सब पूछते कि चाचा आपका जॉब नहीं हुआ, चाचा पुलिस नहीं बने आप। बहुत इतना बुरा लगता है मैम, मैं क्या बताऊं, इस वजह से घर जाना छोड़ दिए, बहुत तकलीफ होता है मैम।
0: हम लोग के लिए मैम कोई ट्वीट नहीं करता है मैम, समस्या ये
1: कोई आवाज,
0: हम लोग दिल्ली का मतलब आवाज ही कितना धीमा हो जाता है पता नहीं, क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है।
1: हम
0: सुने हैं मैम कि जो छोटा बच्चा घर का होता है वो थोड़ा लाडला होता है। इस सारे राज्यों को समझना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों को समझना क्या है, झारखंड में अभाव क्या है, इतना कोयला जो सबको जलाता है उजाला देता है, आज वो अंधेरे में है। तो सबसे बड़ा समस्या है मैम, हम सभी सभी मतलब 28 राज्यों मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश सभी माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ, एक बार देख लीजिए झारखंड की क्या शिक्षा व्यवस्था है।
2: और विवेक ये बहुत जरूरी है विवेक और चंडी की लोग आपकी ये बात सुने, क्योंकि कई बार जो ये टिरनी ऑफ डिस्टेंस है, आप सच बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, इसके पीछे वजह आखिर क्या है। लेट मी जस्ट ओपन दिस अप फॉर अ सेकेंड। संजय झा, आशुतोष, सिद्धार्थ यादव, संजय झा, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस? यू कम फ्रॉम अ नेबरिंग स्टेट, दीज टू यंग मैन, दे आर जस्ट सेइंग हमारी छात्रों की गूंज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है?
3: Well, I fully empathize with both of them. I completely understand their frustrations and their anguish. If the education system is not working, their job market is going to get even more tricky and difficult. It's a national crisis. It is not just Jharkhand, it's all over the country. There is a difference, which I would like to tell both the young boys on your program. And aap logon ke saath meri puri sehmati hai aur sahanubhuti hai. हम पूरी तरीके से समझते हैं आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। मैं बिहार का हूं, मैं झारखंड में मैं पढ़ा हूं XLRI में, मेरा पूरी तरीके से आपके साथ हम इत्तेफाक रखते हैं। ये बहुत बड़ा ये मसला है, इसका समाधान ढूंढना सरकार की जिम्मेवारी है और अपने तरफ से मैं जो भी कोशिश कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। एंड पद्मजा, आई नीड टू मेंशन दिस, लेकिन आपको मैं इतना आश्वासन ज़रूर दूंगा कि झारखंड की सरकार, जैसे मोदी जी की सरकार, जितने भी लोग विरोध करते हैं उनको बोलती है कि ये देशद्रोही हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये संविधान के विरुद्ध हैं, ये प्रजातंत्र के विरुद्ध हैं। आप जो है, मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना राजनीति से दूर रहिए, अपना जो भी विरोध कर रहा है करते रहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ये मैं समझता हूँ कि उत्तरदायित्व है कि उनको इस पर जरूर सही कदम उठाने हैं। मुझे इतना जरूर विश्वास है कि सरकार आपसे जरूर बातचीत करेगी।
2: कब?
3: इस बात को समझते हैं।
2: यू स्पेंड द लास्ट 3 मिनट्स सेइंग वो करेगी, हम देखेंगे, हम आगे होगा, हम देखेंगे। कब? इट्स बीन 6 days दैट दे हैव जस्ट बीन सिटिंग देयर एंड पोरिंग रेन।
3: या सो पद्मजा, लेट मी आल्सो टेल यू कि आप इसको जरा, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज दिस फॉर ओनली वन रीजन। 30 दिन जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में जाने लगे थे, तब नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने लाठी चलाई थी। ये झारखंड में नहीं होगा। ये एक तरीके से इस प्रजातंत्र जो है, जो भी हमारा लोकतंत्र है, उसका पूरा इज्जत किया जाएगा। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जैसे भी आप विरोध करें, मैंने आपका पूरा जो आपने कहा है पद्माजा जी को, आप दिल से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि कितना मुश्किल है बिहार में किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन।
0: झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है, तो झारखंड बोलिए।
3: नहीं नहीं, झारखंड देखिए भैया, झारखंड बिहार मैं समझता हूँ कि दोनों तो भाई है ना, एक भाई है तो एक ही तो राज्य।
0: झारखंड को जिस तरह दबाया गया है ना सर, आप नहीं जानते हैं,
1: बहुत अलग है सर
0: झारखंड। शांति प्रिय, हम लोग उतना 26 साल के इतिहास में कभी देखे हैं कि झारखंड के छात्र ने कभी ये तोड़ दिया, कभी वो तोड़ दिया, कभी शांति प्रिय आंदोलन करते, इसलिए हमारा कोई सुना नहीं जाता है।
1: सर आप एक बात बताओ, 10 दिन हो गए अनशन का, एक स्टेटमेंट किसी को छात्र का
0: स्टेटमेंट हमारे लिए कोई ट्वीट भी नहीं करता है।
1: हम लोग दिन रात संविधान को पढ़ते हैं सर, दिन रात संविधान को लेके चलते हाथ में। हम लोग छात्र हैं, बस एक रोजगार ही मांग रहे, इससे कुछ नहीं मांग रहे।
0: मैं चाहता हूँ सारे पार्टियों से निवेदन करता हूँ, आप जिस तरह अपना बेटा का शौक पूरा कर रहे हैं, हमारा भी कुछ पिता का
4: सपना है कि ये मेरा बेटा बने। अरे हम मजदूर और किसान के बेटा, इसलिए आप लोग इस तरह करते हैं हम लोग से? यही देश का
3: पंडित जी और तिवारी जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आप जो भी कह रहे हैं ये सब
4: आप है। एक बार हमको जवाब दीजिए, आपका बेटा समस्या होगा तो आप सो पाएंगे?
3: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
4: हमको बता दीजिए, आपका बेटा का तबियत खराब होगा, कल हम लोग रात में बारिश में भींगे, कोई पूछने वाला नहीं हम लोग क्यों सर? राज्य हर समय झारखंड पर ही क्यों इतना मतलब इतना कमजोर कर दिया जाता है झारखंड को? सिर्फ खनिज ही चाहिए झारखंड से, सिर्फ कोयला ही चाहिए झारखंड को, मतलब शिक्षित नहीं बनाना चाहते आप लोग?
3: अरे भैया झारखंड में तो वहां के मुख्यमंत्री को लोगों ने जेल में डाल दिया था, आप तो देखिए आप जानते हैं कितनी तानाशाही सरकार है, मुख्यमंत्री को तो जेल में डाला था। तो
5: हम सब जी ये राजनीति नहीं,
3: राजनीति है वहां पे,
5: वो छात्र अपने मन की बात रख रहे हैं, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, नौकरी पे बात होनी, ये राजनीति क्यों करने लग गए हैं संजय झा जी? आप
3: सिद्धार्थ जी जरा आपने क्या किया
5: पीड़ा से, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्या?
3: आप तो 15 साल
5: की लड़की के मन की पीड़ा को आप उसको भी राजनीति में मोड़ना चाह रहे हैं? आपके दिल पे नहीं लग रही है उस बच्चे की बात? वो बेचारा गरीब किसान का बेटा, आपको उसकी बात दिल पे नहीं लग रही है?
3: अभी मोदी जी का जैसा रोने के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा
5: दिए, वो कह रहे हैं कुछ बात अपने आप से बात कर पा रहे, कोई और तो सुन नहीं रहा है आप?
3: अरे सिद्धार्थ जी मोदी जी का जैसा आप भी रोने लगी है, क्रोकोडाइल टीयर्स
5: के समर्थित दिखा
3: दीजिए, वो मगरमच्छ के आंसू दिखा दीजिए आप,
5: नहीं बात करनी,
3: अरे आप मगरमच्छ के आंसू दिखा दीजिए, ये छात्र समझते हैं आपको?
5: बात सुनिए,
3: भाजपा को सब समझ चुका है, अरे बांकीपुर में क्या हुआ है सुन लीजिए, जनता समझ चुकी है।
2: बस एक मिनट संजय झा, बांकीपुर में बांकीपुर की बात करेंगे हम, आज आप रांची की बात कीजिए। सी दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई पीपल गेट वेरी सिकंड संजय झा।
3: छात्रों का आवाज है,
2: एक सीधा सीधा ये एक नॉन राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल मंच से दो पढ़े लिखे लड़के सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए आशुतोष, एंड विच इज व्हाई व्हेन पीपल रेज चांस ऑफ अकाउंटेबिलिटी देन किड सिटिंग इन रांची से अकाउंटेबिलिटी तो सबसे होनी चाहिए ना, आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों मांग रहे हैं?
3: अरे मैंने तो शुरू में ही कहा
2: है आशुतोष,
4: अभी सर बैठे हैं, मैं सर से विनती करता हूं सर,
2: एक सेकंड चंडी, एक सेकंड
6: पद्मजा, यही तो हमारी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो राजनीति की दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब दिल्ली में होता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, और ये आरएसएस के लोग बोल रहे थे, वो बच्चे थे जिनको पीटा गया, जिनके जिनके आंख फूटने की नौबत आ गई, जिनके आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वही पार्टी झारखंड में जाके अलग रुख हो जाती है, और वही कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के आंदोलन को नए तरीके से देखती है वो झारखंड में जाके उसका रुख अलग हो जाता है। ये जो राजनीति का जो जो जो दोगलापन है, ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स है, तो जो रुख छात्रों के आंदोलन का दिल्ली के प्रति होना चाहिए वही रुख झारखंड के बच्चों के प्रति होना चाहिए, बच्चे बच्चों में फर्क नहीं होना चाहिए। ये सारी दिक्कत इस वजह से है क्योंकि हमारे देश की राजनीति इतनी खराब हो चुकी है कि अब युवा पीढ़ी बच्चों को किसी से कोई उम्मीद नहीं, ना उनको बीजेपी से उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है, ना झारखंड से उम्मीद है, ना समाजवादी पार्टी से उम्मीद, किसी से उम्मीद नहीं उनको, उनकी पीड़ा बराबर। वो बच्चे रो वो बच्चे कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कि भाई मैं 8 दिन से पढ़े हुए हैं, बच्चा काट रहा है, क्या वहां पे सरकार के आदमी को नहीं जाना चाहिए? क्या वहां कांग्रेस पार्टी के आदमी को नहीं जाना चाहिए? क्या बीजेपी के नेता को नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं गए ये लोग? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और जब ये बच्चे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं तब आप लाठियों से पीटते हैं उनको, और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पायलट गन चलाते हैं। तो मुझे सरकार का रवैया, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, बिल्कुल एक जैसा है।
2: ओके सिद्धार्थ यादव, यू आर इक्वली टू ब्लेम, जस्ट एज इनसेंसिटिव एज द कांग्रेस एंड जेएमएम आर इन झारखंड। सिद्धार्थ यादव,
3: बिहार में पद्मजा, बिहार में AK-47 लगा दिया इन्होंने।
5: पद्मजा जी
2: वन एट टाइम, आ रही हूं आपके पास चंडी, आपके पास वापस आ रही हूं, मुझे एक मिनट दीजिए।
5: फॉर अ चेंज
2: सिद्धार्थ यादव,
5: at least for a change we have two young people who have joined this panel, they have, you know, from the bottom of their heart they have expressed what they are feeling, at least we all of us, it is our responsibility to respect what they are feeling. अगर उनके रहते हुए संजय झा जी और आशुतोष जी राजनीति की चाशनी इस डिबेट पर फैलाएंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं आशुतोष जी आपके बीच में नहीं बोला था, चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए। यहाँ पे युवा बोल रहा है, आपके आंखों में आंखें डाल करके बोल रहा है, आपकी आपकी आपकी वाहियात राजनीति को सुनने के लिए नहीं बैठा है। पद्मजा जी, दिस कैन नॉट बी द वे।
2: ओके, वन एट टाइम, आई एम कमिंग बैक टू यू आशुतोष, गिव मी 30 30 seconds.
5: किसी के बीच में नहीं बोला था, नहीं, this cannot be the way. मैं बड़ा साफ स्पष्टता से आपको एक बात बोलता हूं, और पद्मराज जी, देश के लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि जब जब देश का युवा बोलेगा, जब जब देश की आवाज बोलेगी, उसको सुनना पड़ेगा. पर समस्या कहां है? युवा झारखंड का बोलेगा तो नहीं सुनेंगे, दिल्ली में बोलेगा तो सुनेंगे. क्यों? झारखंड का युवा युवा नहीं है. ये जो दो मेरे युवा साथी अभी शो पर खड़े हैं, 25 तारीख से धूप में, बारिश में, गर्मी में, बुखार में ये लोग खड़े हैं. मैं आपसे पूछता हूं, केवल सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, क्यों नहीं कराई जाएगी? और ये कोई पेपर लीक का जैसा इशू नहीं है कि किसी टीचर ने पेपर किसी को दे दिया था या चार लोगों ने खरीद लिया. सिस्टमैटिक सरकार जेपीएससी के अंदर कैसे अपने लोगों को नौकरियां दे रही और दूसरों को नौकरी नहीं दे रही, उसका विषय है. और उस पर शांतिपूर्ण तरीके से युवा वहां पर बात कर रहा है तो राहुल गांधी भी चुप, सीजेपी भी चुप, अभिजीत दिपके भी चुप, आशुतोष जी भी चुप, संजय झा भी चुप. क्यों भाई? दिल्ली में तो आपके रुख बड़े अलग थे, तेवर बड़े अलग थे. आई अग्री विद आशुतोष जी, बिल्कुल रुख सेम होना चाहिए. दिल्ली का रुख भी सेम होना चाहिए, झारखंड का रुख भी सेम होना चाहिए. पर द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स.
2: ओके, 30 सेकंड संजय झा, देन आई वांट टू गो बैक टू द किड्स.
5: दिल्ली में तो हमको सारा नैरेटिव
3: पद्मजा,
5: और हम
3: पद्मजा कैन आई कम इन?
2: यस संजय.
3: या Siddharth Yadav should know, he lives in Delhi. What you have done to the students in Delhi, people have seen the pellets, people have seen that there was an attempt to not just beat them but thrash them. They were, let me tell you, in Bihar you even used an AK-47. You infiltrated the entire movement to discredit them. Have some shame. And by the way,
2: but Sanjay
3: Mr. Modi makes
2: we have analyzed
3: videos.
2: The BJP's follies or missteps in what happened in Delhi and Bihar ad nauseum. Have something to say about Jharkhand at this point, other than we will come to.
3: Padmaja, if you do not interrupt me, you'll get a wholesome answer from me.
2: Yes,
3: but ahead. I need to stop Yadav's fake news and his typical BJP propaganda nonsense. The BJP, Mr. Modi cuts a video at midnight 3 times in a row. And his RSS and everybody calls all the students of India anti-national. They call them gutter generation. No shame. You are calling the young people on the channel gutter generation. And then you are trying to defend them because of your politics. I am saying on behalf of the Congress and the Jharkhand whom I support, they will resolve the problem. They respect the students. There is going to be no lathi charge. They care for them. They have already taken some action.
2: What
3: yes,
2: action?
3: I agree with you. The leaders should be there with the students. I agree
2: none
3: with
2: of
3: you.
2: Them. None of them what have action? Bothered to even go and meet what with action? These
3: yeah,
2: students.
3: Ask the BJP, na? Instead of coming on a TV show, jara himmat ho to zameen pe jao. यादव जी, जमीन पे जाओ, जनता बता देगी आप लोगों ने कैसे अत्याचार किया है हमारे युवा पीढ़ी के साथ. भाषण बंद करो.
2: सिद्धार्थ यादव,
3: आई एग्री द कांग्रेस शुड.
5: व्हेन आई एम लिसनिंग टू संजय झा, आई एम फीलिंग सिक. व्हेन आई एम लिसनिंग टू संजय झा, मेरे को आई एम फीलिंग सिक. आप सरकार में है संजय झा जी, वहां पर आप झारखंड में है, सरकार में है. झारखंड के स्टूडेंट झ नहीं बोल पा रहे हैं आप अपने मुंह से. आप रांची का र नहीं बोल पा रहे हैं, छात्र का छ नहीं बोल पा रहे हैं.
3: अरे भैया, रांची सिटिंग देयर फ्रॉम 25th
5: ऑफ जुलाई,
3: यू हैड
5: नो ऑडेसिटी टू इवन लुक एट दोज एंड्स. आप पूरे देश में छात्रों की गूंज करते हुए घूम रहे हैं, पर आपको झारखंड नहीं दिखेगा. अंटिल अनलेस दे गैदर्ड इन थाउजेंड्स, तब तक आप उन पर बात नहीं करना चाहते थे, उनकी तरफ देखना नहीं चाहते थे. नाउ दे आर सिटिंग पीसफुली. आप कह रहे हैं कि कर दिया, क्या कर दिया? व्हाट हैव यू डन? They are asking for transparency, they are asking for CBI inquiry, they are asking for accountability. Bahar aaiye, baat kariye.
2: Vivek,
5: what to do? None of them.
2: विवेक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये देखते हैं कि जिस तरीके से ये जो होता है ना, बॉल किसी और के कोर्ट में फेंक देना, आपको मायूसी होती है ये देख करके कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं और फोकस करेंगे?
1: मैम, सोच के देखिए, जहाँ पर बच्चे बस रोजगार के लिए मांग रहे, अपना रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे, अपना खाना पीना के लिए, माँ बाप को पालने के लिए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, हम अब यंग हो चुके हैं, उसमें राजनीति हो रही है कि ये पार्टी ने नहीं किया, वो पार्टी ने नहीं किया, वो कर रहा है, वो कर रहा है. मुझे राजनीति नहीं करनी भाई, मुझे जीने खाने के लिए रोजगार चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए.
7: हम निवेदन कर रहे हैं दिल्ली के सभी पार्टी, बड़े पार्टी, छोटे पार्टी, पक्ष विपक्ष सभी को आमंत्रण. आइए सर, छोटा सा राज्य झारखंड,
1: आप आके देखिए,
7: आके देखिए एक बार,
1: आइए हम लोगों के साथ 2-4 दिन,
7: आइए थोड़ा हम लोग से एक दिन गुजार लीजिए, कैसे जीते हम लोग, हम लोग का समस्या सुनिए. लेकिन दिल्ली से नहीं, कभी भी नहीं आएगा झारखंड कोई, क्योंकि उससे उसको पकड़ नहीं भरता, कोई राजनीतिकरण नहीं होता, इसीलिए
2: आपको लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर में हुआ था, जिस तरीके से आवाजें उठी थी वहां पर, उतनी ही आवाज उतना ही फोकस आज रांची में भी होना चाहिए? चंडी, आपको आवाज आ रही है? जितना फोकस जंतर मंतर में था, आपको लगता है उतना ही फोकस रांची पर भी होना चाहिए?
7: वो तो सिर्फ एक पद था कि चला गया, हम तो पूरा एजुकेशन रिफॉर्म का बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब तक सभी अधिकारी को नहीं बदला जाएगा, सिस्टम नहीं सुधरने वाला। हम एग्जाम रद्द तो होगा ही होगा, सीबीआई जांच एक मांग है, सीबीआई जांच हो, अच्छा से हो। हम जैसे स्टूडेंट जो है, जो गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पर हमें विश्वास हो, ऐसा ना होगा। मैम आपको पर्सनल मैं बता रहा हूँ, अगर इस बार हम नहीं जीते तो इस सिस्टम से सबका विश्वास खत्म हो जाएगा, इस शिक्षा से। तो हम संकल्प होकर आए हैं, या हम यहाँ मतलब अपना जान भी देना पड़ेगा तो जान देके जाएंगे, लेकिन अपना जो मांग है वो पूरा हम करके ही इस बार जाएंगे मैम, क्योंकि बहुत हो गया मैम।
8: बचा नहीं जीवन में,
7: जीवन में कुछ नहीं बचा मैम। बताइए मैम, हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें नहीं बोलना चाहते ज्यादातर इस सब चीज, लेकिन बहुत दर्द है मैम इस झारखंड में। सिर्फ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं बोलता है, कोई इतना डिस्कशन होता है कि मणिपुर जल रहा है,
8: वो ऐसा दिन नहीं गुजरता मैम।
7: झारखंड जल रहा है, छात्र जल रहा है। सिर्फ एक नैरेटिव सेट मत कीजिए कि ये राज्य है ऐसा हो रहा है, ये राज्य ऐसा हो रहा है। तो फीलिंग समझिए, राजनीति भावना से होता है। आप अच्छा कीजिए, आप जीत जाएंगे। मैं एक श्लोक लिखा था, राजनीति सभी पार्टियों को सुनना चाहिए कि सबका सेवक अच्छा, मतलब सबका सेवक अच्छा जीवन, मतलब सॉरी इसको मैं भूल जा रहा हूँ, सच्चा सेवक अच्छा जीवन जनमन में रह जाएगा, और जिसका ज्योति जनता प्यारा उसको कौन मिटाएगा। सर आपको किसी को खुश नहीं करना पड़ेगा, आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको प्यार करेगा, वोट देगा, जीत जाएंगे सर आप। अच्छे काम कीजिए, मत किसी पार्टी में ज्वाइन कीजिए, कोई पार्टी बड़ा नहीं होना चाहिए। हम जैसे स्टूडेंट के लिए जो आवाज उठेगा वो बड़ा होना चाहिए सर, पार्टी पॉलिटिक्स होते रहेगा।
2: लास्ट 30 seconds, आई वांट टू गिव यू एंड आई जस्ट वांट द व्यूअर्स टू नोट द मैच्योरिटी ऑफ दीज यंग मैन। दे आर नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल डिमांड, दे आर सेइंग वी आर नॉट इवन सीकिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, व्हिच बाय द वे इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इन दिस केस। दे जस्ट वांट द सिस्टम, द रॉट इन द सिस्टम टू बी फिक्स्ड। Is that too much to ask? आशुतोष, last 30 seconds.
6: मैं तो पूरी तरीके से इन बच्चों की मांग के साथ हूं, और मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार को फौरन सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। जिसको भी सैक करना हो सैक करिए, जेल में करना हो जेल में। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि ये जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर उसके खिलाफ केस होना चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए। जब तक ये नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे सेंटर के नेता हो चाहे राज्य के नेता, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक इनका काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां आके झारखंड छात्रों के साथ सहानुभूति रखना और दिल्ली के छात्रों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवाना, बिहार के अंदर AK-47 चलाना, ये जो दोगलापन है राजनीति का ना, ये खत्म होना चाहिए।
2: And you know, whatever this two-facedness, if you want to call it that, double standards, if you want to call it that, that can be battled in the political arena. You heard the peoples whose lives are being impacted. Inki zindagi khatm ho sakti hai ya ban sakti hai based on some simple decisions that those in power take. So please listen to them first. Fight your battles outside. Thanks very much, gentlemen. And especially, jo dono bache hamare saath Ranchi se jude hain, hum lagatar aapki awaaz uthate rahenge. बोलिए।
7: धन्यवाद आपको बहुत बहुत मैम। आपने जो मंच हम लोग को दिया मैम बोलने के लिए, मतलब दिल से प्रणाम आप सभी को मैम। धन्यवाद सब।
2: बहुत बहुत धन्यवाद चंडी और विवेक, आप दोनों को, और आप अपनी आवाज उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Shifting our focus to Bihar now, where it has been a Bakipur setback for the BJP. But are the bipoll results across 3 seats in 3 states giving some larger message to the Saffron Party and about the overall political climate in the country? That question is very relevant after the results of Bakipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The BJP coasted to a comfortable win in Manjalpur with its candidate Satendra Bhai Patel defeating Congress's Bhika Bhai Rabadi by over 30,000 votes. In Madhya Pradesh, Congress retained the seat with Ghanshyam Singh defeating BJP's Ashutosh Tiwari by just over 6,000 votes. But it's the Bakipur seat where all of India is focusing on today. Why? Because of what all was at stake. The seat that was vacated by BJP President Nitin Naveen once he moved to the Rajya Sabha was today won by Jan Suraj Party's Prashant Kishore by a margin of over 19,000 votes. BJP's Neeraj Kumar could only get 44,827 votes in a seat that Nitin Naveen had won for his party by a margin of 50,000, over 50,000. So the total number of votes at the BJP poll this time was

0: less than even the margin of victory by Nitin Naveen 1 year ago. Naturally, then an enthusiastic opposition is asking, what has happened to the double engine? Is this a referendum on the 7-month-old BJP government in the state? And the million-dollar question, how did PK, Prashant Kishore, pull off this first-time miracle? And let me take that straight across to senior journalists. Ashutosh continues with us and Harshvardhan Tripathi. Harshvardhan ji, aapse shuruaat karungi. Kya lagta hai aapko ki kaise PK is tarike ki jeet, aur wo bhi pehli baar? He's a first-time candidate, first time he fought this election, and he's managed to pull off this win.
1: देखिए बदले आप तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो शाम हो गई है तो बहुत समय बीत गया रिजल्ट आए हुए तो सबसे पहले तो ये कि पीके आज अफसोस कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बड़ी गलती हो गई चुनाव जब था विधानसभा का तब हम क्यों नहीं लड़े क्यों साहस नहीं कर पाए राघोपुर से अगर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े होते तो शायद वो चुनाव जीतते भी और आज वो विपक्षी पार्टी होते क्योंकि बिहार अल्टरनेटिव खोज रहा था बिहार एस्पिरेशनल बिहार की जीत थी जो 2025 का विधानसभा चुनाव भी था मैं भी उस वक्त भी कह रहा था कि कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की जीत नहीं है एस्पिरेशनल बिहार की जीत है जिसको डर लगता था कहीं फिर से ना कुछ गड़बड़ हो जाए कहीं फिर से बिहार उस तरफ ना चला जाए जिससे हम बचाना चाहते हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं था उसके पास विकल्प नहीं था तो प्रचंड बहुमत मिल गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नीतीश कुमार के समर्थकों को लगा कि अरे ये तो सारा वोट हमारा है उस भ्रम में चले गए जबकि वो वोट साफ साफ बिहार को बचाने का था किसी जंगल राज से किसी हत्या अपहरण लूट से किसी घनघोर जातिवाद से बचाने का था लेकिन शायद वो मैसेज नहीं समझ पाए और एक सीट पर कोई कह सकता है कि सिर्फ बांकीपुर पर आप इतना कुछ कह दे रहे हैं मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं थी ये भारतीय जनता पार्टी को जिसको राहुल गांधी कहते हैं अंधभक्त जिसको विश्लेषक मजाक उड़ाते हैं कि तो भाजपा को छोड़कर नहीं जाएगा उस मतदाता ने ये काम किया है इसको जरा ठीक से समझना होगा और अगर 30-35 साल जिस सीट पर बीजेपी जीतती रही नवीन किशोर सिन्हा जी फिर उनके बेटे नितिन नवीन वहां एक आप प्रत्याशी नहीं दे पाते हैं आपका कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता क्या प्रोसेस था कि अभिषेक बंटी आया फिर वो चला गया फिर नीरज सिन्हा आया और वो कैसे कैंडिडेट थे मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया कि भाजपा में ऐसा कोई कैंडिडेट होता आप ये कहे कि हमने मंडल अध्यक्ष को बड़ा बना दिया मुझे लगता है बीजेपी को बड़े आत्ममंथन आत्मचिंतन की जरूरत है हाँ एक जरूर मैं कहूंगा बड़ा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट है हालांकि प्रशांत किशोर को इससे खुश नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि एक सीट जीत कर वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे उनको अपनी रणनीति तैयार करनी होगी स्थिर भाव में करना होगा और प्रशांत किशोर को बड़बोलेपन से बचना होगा जो लाउड माउथ है ना उससे बचना होगा मुझे लगता है ये चैलेंज है बाकी तेजस्वी जी तो छुट्टी पर गए थे तो उनके बारे में बहुत बात नहीं करना चाहिए थर्ड प्लेस पर गए
0: पर आशुतोष आर वी ओवर एस्टिमेटिंग दिस विन फॉर प्रशांत किशोर अभी हर्षवर्धन जी सेड दैट ही शुड हैव कंटेस्टेड द इलेक्शंस लास्ट ईयर इटसेल्फ मे बी ही वुड हैव लॉस्ट इवन इफ ही डिड कंटेस्ट हिमसेल्फ आफ्टर ऑल ऑन दिस सीट द जन सुराज पार्टी कैंडिडेट इन 2025 हैड पोल्ड जस्ट 4.92% दिस टाइम प्रशांत किशोर हैज पोल्ड 49% इट्स गॉन अप बाय दैट लीप The thing is that perhaps it was just a very weak BJP candidate pitted against a very strong Jan Swaraj candidate.
2: देखिए पद्मजा मुझे लगता है कि अगर इसको हम ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत जबरदस्त झटका लग गया है और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार गिरने वाली ऐसा फालतू की बात है इसका कोई मतलब नहीं है ये जो बांकीपुर का जो चुनाव है एक उपचुनाव है और एक उपचुनाव की जिस तरीके से समीक्षा होनी चाहिए उस तरीके से समीक्षा करनी चाहिए मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तौर पर अगर आप देखें तो ये नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ा झटका है ये सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नितिन नवीन की अपनी सीट है और अपनी सीट पर जहां 2010 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी 60% से कम वोट नहीं मिले यहां तक कि 2010 में 72% वोट मिला था 2015 में 60% वोट मिला था 2020 में 59% वोट मिला है 2025 में 62% वोट मिला है वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अगर आके 34% पर रुकता है यानी 28% का अगर ड्रॉप होता है तो भले ही पीके बहुत बड़े कैंडिडेट हो लेकिन ये 28% का जो वोट ड्रॉप है ये अलार्मिंग ट्रेंड है इसका मतलब यह है कि नितिन नबीन के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर वो कि न केवल पार्टी के अध्यक्ष है बल्कि 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 60% वोट लेकर चुनाव जीत रहे हैं, वहां पे पार्टी क्यों हारी? आत्मचिंतन का प्रश्न ये है,
0: क्यों हारी?
2: क्या सम्राट चौधरी
0: आपको क्या लगता?

0: काय क्यों हरी. And let me also just give a little bit of a demographic breakup to our viewers. Now, 45% of this seat is upper caste. The largest is Kayasth. In fact, this is the only seat in all of Bihar that is dominated by Kayasth. Then you've got Rajputs, you've got Brahmins, you've got upper caste people and upper class people, educated people, middle class people. This is as core voter base for BJP as it gets. Then why did the BJP lose this seat? What are the factors, Ashutosh?
1: मैं इसको थोड़ा सा दतिया से भी जोड़ूंगा. व्हेन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती तब ये दिक्कत पैदा होती. बीजेपी हैज मेस्ड अप इन बांकीपुर, बीजेपी हैड मेस्ड अप इन दतिया बोथ. लुक एट इन दतिया, इट वाज नॉट अ वीक सीट फॉर द कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस हैड वन दैट सीट नोइंग फुल्ली वेल. यू रिमूव नरोत्तम मिश्रा एंड देयर पीपल क्रिएटेड अ मेहम देयर. Then I see internal sabotage in Datia and I also see internal sabotage in Bakipur.
0: But I'll again play the devil's advocate. They have lost Datia. Remember in the last election also, BJP had lost Datia to Congress.
1: Yes.
0: By about 6,000 yes. votes. This time again, they've lost by the same margin. So it's not like Narottam Mishra did some
1: great damage
0: to the BJP's fortunes.
1: Padmaja, I agree with you. Normally in by-election, the trend is that the ruling party wins. Normal trend is there. Because there's a might up of state and everybody says, okay, theek hai, jo party jeeti, jiski sarkar usko jita dete, something like this. Datia, they would have won easily. But look what happened there. And in Bakipur also, you put up a candidate and then last minute, you withdraw the nomination of that candidate. You put up another candidate. So what message you are giving to the constituency of Bakipur? And such carelessness and callousness was done in the party president's own constituency. So just imagine the management of Nitin Naveen or whosoever was in charge over there.
0: But you know, this ruling party wins the bipole logic doesn't always hold. Because if you remember, before the 2019 elections, the obituary was written for the BJP in Uttar Pradesh because they had lost three key Lok Sabha bipoles also. They had lost Gorakhpur, Phulpur, and they had lost one more seat, which I forget. And they'd lost Aradia and Bihar.
1: Western UP.
0: Aradia and Bihar. And these two in Uttar Pradesh, they had lost and then they went on to sweep the Lok Sabha elections. But coming back again to the factors, the nature of this seat, Harshvardhan ji, the fact ki ye ek upper caste seat hai. Isme bahut kuch hua tha. Bharat Tiwari ka encounter hua tha. Usko lekar ke attack kiya gaya tha BJP ke upar. The fact that a lot of upper castes are not very comfortable with the new chief minister as they were with Nitish Kumar. And the third, of course, is the anti-UGC bill protests also that happened in and around Patna. Kya ye ek long-term message of BJP's key voters shifting away from the party? Can we take it? Harshvardhan ji?
2: Pandya, mujhe lagta hai ki ise do tarah se dekhna chahiye. Ek to ye ki aapka voter bada jisko kahein ki bhala manus hai. Uski personal koi grievance nahi hoti hai. Uski grievance national issues par hoti hai. BJP ke liye main keh raha hu, dusri partiyon ke jo unke voters hote hain, unki personal grievance hoti hai, wo caste par vote karte hain, wo sab kuch. BJP ka voter is mamle mein aisa nahi karta hai. Lekin uska jo jisko kehte hain ki flip side jo hai, wo agar national issues pe karta hai to wo shant rehta hai, bahut time deta hai. UGC aisa hi ek masla tha, usko samajhna chahiye. जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दूसरे जो आयातित लोग हैं वो अपने जाति के नेता बन जाए, वो बाहुबली हो जाए, वो दबंग हो जाए, वो गुंडे अपराधी हो जाए, तो उनको तो स्वीकार कर लेंगे. अपना नेता अगर होगा तो नहीं चलेगा. अपनी अपने कैडर से निकला अगर नेता है, वो किसी जाति का भी नेता बन जाए, और हालांकि भाजपा में ऐसा नहीं होता है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे. अपने नेता को जहां आपने ताकतवर बनते हुए देखा तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो अहंकारी हो रहा है इसके अंदर तो थोड़ा सा. तो ये दोनों चीजों की बड़ी थीन लाइन है जिसको बीजेपी को समझना होगा. एक बात मैं कहूं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर है, पीएम मोदी है, अमित शाह, वो सब खत्म नहीं हो गया है. लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे अर्बन सीट का एक फिनोमिना समझना चाहिए. और मुझे लगता है कि ये जरूरी है इस वक्त ये बात कहना. नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अभी उनको ट्रेनिंग लेनी है, अभी उनको बहुत तैयार होना है. वो अपने हिसाब से सब चीजें करते रहते, इतने समय से राजनीति में हैं, तो उनको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए. लेकिन जरा सोचिए, हमारा अपना शहर का प्रयागराज में इलाहाबाद उत्तरी एक सीट है, वहां डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर, वो संघ के मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, 3 बार लगातार चुनाव जीते, उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते. उसके बाद जब उनका टिकट कटा, किसी और को दिया गया, वो सीट हार गए और अनुग्रह नारायण सिंह जीत गए कांग्रेस के. सवाल ये है कि क्या नितिन नवीन की वो सीट थी क्या, या नितिन नवीन भाजपा के सिंबल पर थे? वो भी एक ऐसे नेता थे जैसे देश में सैकड़ों अर्बन सीटें हैं, हमें जरा ये समझना पड़ेगा। बीजेपी का कैडर वोट कर रहा, जब उसको ये लगा कि नहीं नहीं हमें तो इस तरह से लिया जा रहा है कि चलो ठीक है किसी को भी खड़ा कर देंगे, और अर्बन सीट्स पर जब जातिवादी वोट नहीं पड़ता है तो मक्खी पे मक्खी बिठाने की जरूरत क्या थी, कायस पे कायस, ब्राह्मण पे ब्राह्मण, ऐसा नहीं चलता है। मुझे लगता है इसकी जो इसको कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस है, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीजेपी कोर्स करेक्शन वाली पार्टी है, वो ये काम करेगी। हाँ, एक मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस बहाने से, अच्छा एक जरूरी चीज एक और जो मुझे लगता है कि रह न जाए, जितनी जगह पर बीजेपी के खिलाफ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, वो यूथ का हो, जेंजी का हो, किसी भी जगह पर हो, पॉलिटिकल हो, तो वो क्या कर रहा है, वो नए ऑप्शन देख रहा है। उसे नहीं चाहिए तेजस्वी, उसे नहीं चाहिए राहुल गांधी, उसे नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल, वो तिलचट्टा पार्टी को समर्थन कर देगा, कॉकरोच पार्टी, उसे समर्थन कर देगा, उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी कीमत पर, जो पार्टियां हैं तो अपोजिशन स्पेस वो भी बहुत तेजी से श्रिंक कर रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी तो कैडर वाली पार्टी है, उसके पास बहुत कुछ है, ये जो सिर्फ जातियों के नेता, ट्रेडिशनल नेता, उनके लिए कितना खतरा है वो भी जरा सोचना
0: चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड दैट एक्चुअली गेट्स मी टू द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क आशुतोष, शुड देयर बी सम रियल सोल सर्चिंग, ऑफ कोर्स should be done by the BJP, but by the principal established opposition parties. Why would you prefer a completely new Prashant Kishore to the lady who was the runner-up to Nitin Nabin in the last election? This time she has been reduced to just about 12,000-13,000 votes. What does that say about Tejaswi Yadav?
1: अगर आप पिछले पांच चुनाव का अगर आप हिसाब निकालें बाकीपुर का, तो अपोजिशन को बेयरली 20% 25% या 28% वोट मिल रहा वहां पे। लास्ट टाइम हमारे कहा 30% नोट मिला जो 2025 में जब 62.66% वोट लेके नितिन नवीन जीते, और वहां पे कभी आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा होता है, कभी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है। इसका मतलब कि अपोजिशन का स्पेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी जहां 60% वोट कंसिस्टेंटली ला रही चुनाव में, अगर उसका वोट शेयर 28% अगर ड्रॉप करता है, 28%, इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्रॉप।
0: नो, बट आशुतोष जी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ द वोट्स पोल, लास्ट टाइम अराउंड रेखा गुप्ता वाज रनर अप विद 46,363 वोट्स, दिस टाइम शी हैज मैनेज्ड टू गेट ओनली 14,000 वोट्स, दैट्स इट, शी इज लेस देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स दैट शी हैड पोल्ड।
1: आई नो कि उनको सिर्फ 10.96 यानी 10.96% वोट मिला है, तो उनका भी जो वोट शेयर है वो तकरीबन 18% श्रिंक किया है।
0: करेक्ट,
1: जो आरजेडी का जो वोट है वो भी तकरीबन 18-20% श्रिंक। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो 5 बार लगातार वहां जीत चुके हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। फिर आपने लास्ट मिनट में सब क्यों किया? आप एक कैंडिडेट लाते हैं, उसको बदल देते हैं, दूसरा कैंडिडेट लाते हैं, मैसेज दिया जाता है पार्टी नॉट सीरियस। सो आई एम ओनली सेइंग डोंट टेक योर वोटर्स फॉर ग्रांटेड। If you take your voters granted, whether it is the BJP or the Congress, you will suffer. And I'll tell you this: the rise of the PK as an MLA in Bihar Assembly is a great warning signal to Tejaswi Yadav. Now he is not only is faced with Samrat Chaudhary, but also PK. And PK, knowing PK is very, very aggressive. PK will not only make Samrat Chaudhary's life hell, but also will make Tejaswi Yadav's life hell, and more so.
0: Absolutely, and you know, maybe I am being too optimistic over here, but Harshvardhan ji, do you also see this as a phenomenal change in the direction in which Bihar's politics goes? Bihar mein kya hota hai, jab bhi hum election wahan cover karne jaate hain, log kehte hain yahan to sirf caste ki hi politics hogi, yahan pe to wahi hoga aapka EBC, Yadav, ye wo, jo traditional equations the, that is now slowly, I'm not saying it's going to be a quantum leap, but slowly that equation of understanding Bihar's politics is going to change, where an educated young person who comes from a Brahmin community can maybe be a prominent leader.
2: Padmaja ji, मुझे लगता है कि इसमें एक और सिल्वर लाइनिंग है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वो लीडरलेस हो रही थी। कोई लाख कहे कि निशांत कुमार आ गए हैं, संजय झा चला रहे हैं, भाजपा के साथ है तो वो लगता है कि अभी बड़ी पार्टी है, लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा 2030 में, उसका जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा उससे जो निकल कर बाहर गए थे, अपनी पार्टी बनाई, वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। जेडीयू का कोई ऐसा लीडर नहीं दे पा रहा है। नीतीश कुमार की जो लीडरशिप क्वालिटी थी, बीजेपी ने भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिया है। सम्राट चौधरी उस जगह को बिल्कुल नहीं फिलअप कर पा रहे, जिसको कहते हैं ना कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उस तरफ काम कर रहे हैं, यानी एक जो न्यूट्रल वोटर बेस है उसको और साथ में फॉरवर्ड, यानी न्यूट्रल में वो जेडीयू वाला भी हो सकता है, वो आरजेडी वाला मुस्लिम भी हो सकता है, जिसको लगेगा यार ये क्या तमाशा है, सिर्फ और सिर्फ

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
1: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
2: Just few inches away is POK.
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
3: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: तीन साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
5: फ्रॉम द न्यूज़ रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
6: वाचिंग एनी टीवी 24/7 द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन This will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
5: When stories have impact.
7: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
5: Then news has influence. The buck stops here. With Padmaja Joshi.
6: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Launch control, 0 to 100.
10: तीस दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं उसको देखा है। बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बनाया हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा NDA की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं।
11: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
12: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
11: The show that sets the prime time agenda.
12: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
11: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 20.

0: movement should be viewed as a force being used against the constitution and the nation as well. He's also called for a closer examination of the movement from that perspective.
1: आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे. पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
2: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की. संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है. सरकार आने दो, हमारी बता देंगे इनको.
0: Well, hundreds of students have continued the protest in Ranchi in Jharkhand over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission, that is the JPSC examination. Now, the JSSC and the CGL and other recruitment test as well. Students have been on an indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe onto the recruitment examinations, the cancellation of the 14 JPSC, combined preliminary test and even reforms in the state's recruitment agencies. The students allege that the OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dipke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
3: वो छात्र है, वो छात्र है, और वो छात्र अपने genuine demand के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है. जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है. जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है. इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है.
4: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर इस स्थिति पैदा हो. अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोलिए और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए.
5: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की कि, और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए. जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा. अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं.
6: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ. द स्टूडेंट्स इन झारखंड आर वेटिंग फॉर जस्टिस, आर वेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस लेड अलायंस इन झारखंड. बट टिल नाउ नाइदर राहुल गांधी हैज स्पोकन और डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट इन झारखंड. नाइदर अरविंद केजरीवाल हैज स्पोकन, नाइदर अखिलेश यादव हैज स्पोकन. व्हेन आर दीज पीपल गोइंग एंड टेकिंग अ टिकट एंड डूइंग अ मार्च विद द स्टूडेंट्स इन झारखंड टू द झारखंड विधानसभा. देयर साइलेंस एक्सपोजेज देयर हिपोक्रेसी. देयर साइलेंस एक्सपोजेज दैट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अखिलेश यादव and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party.
3: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं. एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच. सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया, और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी. देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का. उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र, वो प्लास्टिक लगा दिया था, उसको भी हटा दिया, और वहां के आंदोलित छात्र
7: कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच।
0: Former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brijbhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brijbhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision and to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brijbhushan said to my colleague Tejshri.
8: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, दो से ढाई साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
9: दुख भरा जी समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है और अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
8: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
9: उनकी पीड़ा वो बताएंगी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
8: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
9: वो नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटासा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
8: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं वो, देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
9: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
8: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
9: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
8: मैं NDTV से। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
9: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
8: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
9: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
8: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
10: एक तो आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही हैं।
8: आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
10: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही हैं, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
8: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
9: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
0: The Kaveri water row has triggered a fresh political clash in Tamil Nadu. Udayanidhi has targeted Vijayalaya TVK, the leader of opposition in Tamil Nadu Assembly. DMK's Udayanidhi Stalin has targeted Chief Minister Vijay, alleging that TVK failed Tamil Nadu on Mekadatu water and Delta farmers' concern. He also alleged that Chief Minister Vijay is embarrassed to hold an all-party meeting. DMK also meanwhile staged a protest against Vijay government. Udayanidhi Stalin led the DMK protest against Vijay government. Meanwhile, the farmers led by Farmers Association leader staged a protest by burying themselves in sand of banks of Kaveri River in the area, demanding the immediate release of Kaveri water for irrigation. Lots of political reactions that are coming in on that story.
11: திருட்டு லாட்டரி விற்கிற ஒரு அமைச்சர், திருட்டு விசிடி விற்ற ஒரு அமைச்சர், பிளாக்ல டிக்கெட் விற்கிற ஒரு அமைச்சர், உருட்டுக்கட்டையிலோடைய சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு அமைச்சர், எல்லாத்துக்கும் மேல போதை பவுடர் அமைச்சர், இப்படி மொத்த கேபினட்டுமே ஒரு ஜோக்கர் கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆட்சியில முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் போடுறாரு, அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட விட்டுருக்கிறது இல்ல, உள்ள போய் ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு நாள் நீ பார்த்திருப்பீங்க, ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க எல்லாம் வெளில வர சொல்லி அவங்களுடைய கட்சி பேரை கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு ஆட்சியை தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
12: We have been very clear from day one. This is a matter of interstate water sharing issue. And all of us have to work together. We have Mr. D.K. Shivakumar, the Chief Minister, also has called for all-party meeting, not once but twice. Once he has spoken to all the MPs, irrespective of parties, in Delhi. Yesterday also there was an all-party meeting. So we are seeking help and cooperation with everybody. These are something beyond government's control, right? Natural calamities, natural disaster, the El Nino, Super El Nino is not in the government's control. So we have to work together to ensure that we give the best possible solution for the people.
13: Kaveri Water Tribunal is the authority for Kaveri Water. Normally, the world over, in all international law, the lower riparian states cannot be denied of water. When the tribunal asks the Karnataka government to release a certain amount of water, they are discussing as to whether to release water or not. That is wrong. That is against law. So, water should definitely be released. We will fight for it.
14: It is very disheartening that the TVK government has not taken any steps to ensure that the rights of the Tamil people are being justified and the water from Karnataka gets released immediately and the farmers of the Delta region receive the good news that the water is reaching them anytime soon. But unfortunately, the Chief Minister is busy in making drone shots and red carpet welcomes. Let me remind the Chief Minister that drone shots will not feed the people of Tamil Nadu. It is only the farmers who can feed the people. The farmers need water and we need to ensure that the water security of the state is not compromised at any cost.
0: Well, a political controversy has erupted in Tamil Nadu after DMK workers were heard chanting Trisha's name repeatedly during a speech by Udayanidhi Stalin on the Kaveri water issue. What's triggered a bigger storm is how Tamil Nadu leader of opposition reacted to the chants. The DMK MLA smirked and then said, whichever water should come, and then said that he meant the Kaveri water. Now, Vijay supporters have alleged that the chants carried a double meaning, triggering sharp criticism. The remarks have also drawn condemnation over bringing a woman's name and the person's life into a political battle.
11: ஆனா இதை பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன, திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன.
0: Let's now talk about another political controversy that has erupted, this time in Maharashtra, after a video showed Congress leader Nana Patole's supporters washing his feet and showering him with flowers during the Guru Purnima celebrations. The viral clip has drew sharp criticism from the BJP, which has accused the Congress of promoting a culture of personality worship. Patole later clarified that he did not usually approve of such acts and said that the family members had performed the ritual as a mark of respect on Guru Purnima. Now, the Congress leader Nana Patole has defended himself after the viral video showing two men washing his feet during Guru Purnima had sparked a political row in the state of Maharashtra. Patole said that the men were younger members of his family who voluntarily performed the ritual as a mark of respect, insisting that he neither asked nor forced anyone to do so. Responding to the BJP's criticism, he said that he usually does not approve of such acts and added that he is not a saint or a spiritual figure.
15: वो तो पारिवारिक काम था, कोई मैंने सार्वजनिक रूप से मैं जबरदस्ती किसी को ये तो नहीं करा रहा था, वो हमारा पारिवारिक है। अब पारिवारिक वीडियो मीडिया ने जिस तरह से वायरल किया है, अब उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। मीडिया को भी अगर वही इशू अच्छा लगता है, अरे मैं मुझे लगता है कि वो मेरे परिवार के लोग है, मेरे से छोटे लोग है, वो लोग, मैं कोई बंदूक तो नहीं लगा के रखा हूँ, मैं तो मोबाइल में देख रहा था। तो मुझे लगता है कि संस्कार हमें बीजेपी ने नहीं पढ़ाना चाहिए।
16: नेत्याचे संस्कार संस्कृती अशीच आहे जी अशा पद्धतीचे वर्तन या राज्यामध्ये करतात, त्यामुळे तो बोध घेतला पाहिजे त्यांनी की काय करतोय, कशा करता करतोय, त्याच्याने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समाजाची टीका मिळणार आहे, काय मिळणार आहे असे प्रयत्न करू नये।
0: Well, Hollywood's favorite web-slinger has spun a new box office record in India. Spider-Man, Brand New Day has delivered the biggest opening ever for a Hollywood film in the country, but it has still two major Bollywood blockbusters ahead of it. Here's how the latest Spider-Man film has fared against India's biggest opening day records.
17: Rebirth.
18: Sorry about that.
19: You're not one of my students, are you?
20: Spider-Man has swung into India and he has made a record-breaking start at the box office.
21: You're the only one who's immune to it.
20: Collecting rupees 72.44 crore gross and rupees 60.6 crore net on day one.
22: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
23: He's a little weird.
20: The film released on Thursday, July 30, with 17,250 shows across the country and recorded an overall occupancy of 56.58%. Its rupees 72.44 crore opening has taken it past some of the biggest Hollywood and Bollywood blockbusters. Avengers Endgame had opened at rupees 65 crore in India, while Avatar The Way of the Water had collected rupees 48.75 crore on its opening day. And the list doesn't stop with Hollywood. Spider-Man has also crossed several major Bollywood opening day numbers. Shah Rukh Khan and Deepika Padukone's Pathaan opened at rupees 67.19 crore rupees. And the first Dhurandhar is also behind the new Spider-Man. But there are still two big Bollywood opening day records standing above Spider-Man. Ranbir Kapoor's Animal with rupees 76.1 crore. And Dhurandhar, The Revenge, which opened at a staggering rupees 102.55 crore. And Spider-Man's strong start came without block bookings, with occupancy rising from 51.22% in the morning to 65.11% at night. The question now is whether that momentum can carry through the weekend and whether Spider-Man can eventually challenge India's biggest box office records. For now, Spider-Man has conquered Hollywood. The biggest Indian box office records are still waiting.
21: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
20: Bureau Report, NDTV World.
17: Rebirth.
0: With that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: Definitely, there was a lot of hope that he would.
1: But this is a very massive victory, around 20,000 of vote margin. PK just swiped away in Bakipur. So this is a very massive victory. Almost the people of Bakipur give him landslide.
0: So that's what I'm saying. I'm saying thank you to the people of Bakipur.
1: So how important
0: really
1: your role?
0: Grateful to all of them.
1: How important your role with PK in the personal life as well as the political life is running out in Bihar?
0: See, in political life, I stay away. I think he has a good team to, you know, do that part. But yeah, in personal life, definitely I have to give him whatever support I can to the best of my possibility.
2: Well, the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology sharply questioned Meta over the brief removal of Prime Minister's Facebook video, with committee chairman Nishikant Dubey telling the company that an apology alone was insufficient and calling for greater accountability. During a nearly three-hour-long meeting that was attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the MPs also raised wider concerns over content moderation, algorithmic transparency, foreign influence on digital platforms, and even compliance with the Indian laws. Now, the members reportedly sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. They discussed the company's content control mechanisms and even alleged foreign links. And they've also warned that the intermediary or the safe harbor protections could come under scrutiny if such lapses recur. Now, Meta has expressed regret over the incident, describing the removal as an error, and assured that the committee that corrective measures would be taken to prevent similar incidents in the future.
3: Meta India ne Pradhan Mantri ji ke jo content ko hataya. Ye Meta India pahli baar aisa kaam nahi kar raha. Unka jo mindset hai wo desh ko destabilize karne ka hai. Aur jab Bharat ke Pradhan Mantri ka jo hai video utara ja sakta. Aur unhone khud swikar kiya ki 5 ghante tak utara. 12:30 baje raat se leke सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा. तो ये बड़ी सीरियस बात है. हमारी कमेटी ने दो चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए. और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए.
2: RSS leader Atul Limay has sharply criticized the ongoing CJP protest, urging the people not to view the movement merely through a political or anti-BJP lens. Speaking in Chhatrapati Sambhaji Nagar, he said that if India is to become a developed nation, the country needs the active participation of its youth. However, he questioned what kind of values, aspirations and ideas should guide this youth power. Now, the RSS leader went on to allege that the CJP movement should be viewed as a force being used against the constitution and the nation as well. He's also called for a closer examination of the movement from that perspective.
4: आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे. पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बी जे पी या अँगलनी हे बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
5: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की. संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है. सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको.
2: Well, hundreds of students have continued the protest in Ranchi in Jharkhand over the alleged irregularities in the 14th Jharkhand Public Service Commission, that is the JPSC examination. Now, the JSSC and the CGL and other recruitment tests as well. Students have been on an indefinite sit-in since July 29th. They are seeking a CBI probe onto the recruitment examinations, the cancellation of the 14 JPSC, combined preliminary test and even reforms in the state's recruitment agencies. The students allege the OMR sheets were leaked. Chief Minister Hemant Soren has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty, and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dibke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
6: वो छात्र हैं, वो छात्र हैं, और वो छात्र अपने genuine demand के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है. जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है. जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है. इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है.
4: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर ऐसी स्थिति पैदा हो. अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोले और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए.
7: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की कि और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए. जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा. अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं.
8: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ. द स्टूडेंट्स इन झारखंड आर वेटिंग फॉर जस्टिस, आर वेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस लेड अलायंस इन झारखंड. बट टिल नाउ नाइदर राहुल गांधी हैज स्पोकन और डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट इन झारखंड. नाइदर अरविंद केजरीवाल हैज स्पोकन, नाइदर अखिलेश यादव हैज स्पोकन. व्हेन आर दीज पीपल गोइंग एंड टेकिंग अ टिकट एंड डूइंग अ मार्च विद द स्टूडेंट्स इन झारखंड टू द झारखंड विधानसभा. देयर साइलेंस एक्सपोजेज देयर हिपोक्रेसी. देयर साइलेंस एक्सपोजेज दैट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अखिलेश यादव and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this, and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party.
6: 10 dinon se hazaron chhatr Jaipal Singh Stadium dharne baithe hain. Ek hi demand hai CBI jaanch. Sarkar ka ek bhi adna sa adhikari un bachchon se samvad nahi karne gaya. Aur bachchon ko ne tripal lagane ka prayas kiya तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी. देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का. उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र, वो प्लास्टिक लगा दिया था उसको भी हटा दिया, और वहां के आंदोलित छात्र कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं. एक ही डिमांड है सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच.
2: Former Wrestling Federation of India Chief Brij Bhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brij Bhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brij Bhushan said to my colleague Tejshree.
9: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा 2 से 2.5 साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया. लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
10: दुख भरा समय है उनके लिए. उनके लिए बहुत दुख भरा समय है. और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
9: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
10: उनकी पीड़ा वो बताएंगी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
9: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
10: वो नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता।
9: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
10: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
9: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
10: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
9: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
10: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं। अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
9: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
10: पूछे जाकर। देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
9: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
11: एक आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए। नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही है।
9: आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका।
11: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही हैं।
9: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
10: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
2: The Kaveri water row has triggered a fresh political clash in Tamil Nadu. Udayanidhi has targeted Vijayalaya TVK, the leader of opposition in Tamil Nadu Assembly. DMK's Udayanidhi Stalin has targeted Chief Minister Vijay, alleging that TVK failed Tamil Nadu on Mekadatu water and Delta farmers' concern. He also alleged that Chief Minister Vijay is embarrassed to hold an all-party meeting. DMK also meanwhile staged a protest against Vijay government. Udayanidhi Stalin led the DMK protest against Vijay government. Meanwhile, the farmers led by Farmers Association leader staged a protest by burying themselves in sand of banks of Kaveri River in the area, demanding the immediate release of Kaveri water for irrigation. Lots of political reactions that are coming in on that story.
12: Thirittu lottery vikkira or amateur, thirittu VCD vittu or amateur, black la ticket vikkira or amateur, urutu kattaiyile odaya suttikittu irukkira or amateur, எல்லாத்துக்கும் மேல போதை பவுடர் அமைச்சர். இப்படி மொத்த கேபினட்டுமே ஒரு ஜோக்கர் கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆட்சியில முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் போடுறாரு, அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டலு ஏன் பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட விட்டுருக்கிறது இல்ல, உள்ள போய் ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு நாளா நீ பார்த்துருப்பீங்க, ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்லாம் வெளில வர சொல்லி அவங்களுடைய கட்சி பேரை கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு ஆட்சியே தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
13: We have been very clear from day one. This is a matter of interstate water sharing issue. And all of us have to work together. We have Mr. D.K. Shukumar, the Chief Minister, also has called for all-party meeting, not once but twice. One is spoken to all the MPs, irrespective of parties, in Delhi. Yesterday also there was an all-party meeting. So we are seeking help and cooperation with everybody. These are something beyond government's control, right? Natural calamities, natural disaster, the El Nino, Super El Nino is not in the government's control. So we have to work together to ensure that we give the best possible solution for the people.
14: Kaveri Water Tribunal is the authority for Kaveri Water. Normally, world over, in all international law, The lower riparian states cannot be denied of water. When the tribunal asks the Karnataka government to release a certain amount of water, they are discussing as to whether to release water or not. That is wrong. That is against law. So, water should definitely be released. We will fight for it.
15: It is very disheartening that the TVK government has not taken any steps to ensure that the rights of the Tamil people are being justified and the water from Karnataka gets released immediately and the farmers of the Delta region receive the good news that the water is reaching them anytime soon. But unfortunately, the Chief Minister is busy in making drone shots and red carpet welcomes. Let me remind the Chief Minister that drone shots will not feed the people of Tamil Nadu. It is only the farmers who can feed the people. The farmers need water and we need to ensure that the water security of the state is not compromised at any cost.
2: Well, a political controversy has erupted in Tamil Nadu after DMK workers were heard chanting Trisha's name repeatedly during a speech by Udayanidhi Stalin on the Kaveri water issue. What's triggered a bigger storm is how Tamil Nadu leader of opposition reacted to the chants. The DMK MLA smirked and then said, whichever water should come, and then said that he meant the Kaveri water. Now, Vijay supporters have alleged that the chants carried a double meaning, triggering sharp criticism. The remarks have also drawn condemnation over bringing a woman's name and the person life into a political battle.
12: ஆனால் இதை பற்றி நிற்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்னேன்.
2: Let's now talk about another political controversy that has erupted, this time in Maharashtra, after a video showed Congress leader Nana Patole's supporters washing his feet and showering him with flowers during the Guru Purnima celebrations. The viral clip has drew sharp criticism from the BJP, which has accused the Congress of promoting a culture of personality worship. Patole later clarified that he did not usually approve of such acts and said that the family members had performed the ritual as a mark of respect on Guru Purnima. But the Congress leader, Nana Patole, has defended himself after the viral video showing two men washing his feet during Guru Purnima had sparked a political row in the state of Maharashtra. Patole said that the men were younger members of his family who voluntarily performed the ritual as a mark of respect, insisting that he neither asked nor forced anyone to do so. Responding to the BJP's criticism, he said that he usually does not approve of such acts and added that he is not a saint or a spiritual figure.
16: वो तो पारिवारिक काम था, कोई मैंने सार्वजनिक रूप से मैं ज़बरदस्ती किसी को ये तो नहीं करा रहा था, वो हमारा पारिवारिक है। अब पारिवारिक वीडियो मीडिया ने जिस तरह से वायरल किया है, अब उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। मीडिया को भी अगर वही इशू अच्छा लगता है, अरे मैं मुझे लगता है कि वो मेरे परिवार के लोग है, मेरे से छोटे लोग है, वो लोग मैं बंदूक तो नहीं लगा के रखा हूँ, मैं तो मोबाइल में देख रहा था। तो मुझे लगता है कि संस्कार हमें बीजेपी ने नहीं पढ़ाना चाहिए।
17: नेत्याचे संस्कार संस्कृत कशी आहे, जे अशा पद्धतीचे वर्तन या राज्यामध्ये करतात, त्यामुळे तर बोध घेतला पाहिजे त्यांनी की काय करतोय, कशाकरता करतोय, याच्याने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समाजाची तिकट मिळणार आहे, काय मिळणार आहे असे प्रयत्न करू नये।
2: Well, Hollywood's favorite web-slinger has spun a new box office record in India. Spider-Man: Brand New Day has delivered the biggest opening ever for a Hollywood film in the country, but it has still two major Bollywood blockbusters ahead of it. Here's how the latest Spider-Man film has fared against India's biggest opening day records.
18: Rebirth.
19: Sorry about that.
20: You're not one of my students, are you?
21: Spider-Man has swung into India and he has made a record-breaking start at the box office.
22: You're the only one who's immune to it.
21: Collecting rupees 72.44 crore gross and rupees 60.6 crore net on day one.
23: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
24: He's a little weird.
21: The film released on Thursday, July 30, with 17,250 shows across the country and recorded an overall occupancy of 56.58%. Its Rs. 72.44 crore opening has taken it past some of the biggest Hollywood and Bollywood blockbusters. Avengers Endgame had opened at Rs. 65 crore in India, while Avatar The Way of the Water had collected Rs. 48.75 crore on its opening day. And the list doesn't stop with Hollywood. Spider-Man has also crossed several major Bollywood opening day numbers. Shah Rukh Khan and Deepika Padukone's Pathaan opened at Rs. 67.19 crore rupees. And the first Dhurandhar is also behind the new Spider-Man. But there are still two big Bollywood opening day records standing above Spider-Man. Ranbir Kapoor's Animal with Rs. 76.1 crore and Dhurandhar The Revenge, which opened at a staggering Rs. 102.55 crore. And Spider-Man's strong start came without block bookings, with occupancy rising from 51.22% in the morning to 65.11% at night. The question now is whether that momentum can carry through the weekend and whether Spider-Man can eventually challenge India's biggest box office records. For now, Spider-Man has conquered Hollywood. The biggest Indian box office records are still waiting.
22: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
21: Bureau Report, NDTV World.
1: Rebirth.
2: With that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore has warned the Bankipur bipole in a major upset for the BJP, ending the party's four-decade hold over the constituency. Kishore received more than 62,000 votes in his electoral debut, winning with a margin of more than 18,000 votes in his first reaction after the win. PK said that this is a big message from the Bankipur to the BJP and has urged the ruling party to give the state a good chief minister. Kishore also vowed that development will be visible in Bankipur in 2 to 3 months.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए।
2: व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन द मैसिव विक्ट्री?
3: वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑलमाइटी माँ कामाख्या एंड द पीपल ऑफ बांकीपुर एंड द एंटायर पीपल ऑफ बिहार and his each and every member of his team, the Jan Swaraj team, for you know, for this big victory.
2: Do you believe that this kind of massive victory the people of Bankipur will give to the Prashant Kishore?
3: I was very hopeful because as I hear that Bankipur is, you know, like yeah. The people of Bankipur would definitely want a change, and the being the educated people of Bihar, so definitely there was a lot of hope that he would.
2: But this is a very massive victory, around 20,000 of vote margin. PK just swiped away in Bankipur. So this is a very massive victory. Almost the people of

0: Turin has ordered a CID probe, but the students say that they are not satisfied. The protesters are seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, an independent probe, strict action against those found guilty, and even reforms in the recruitment agencies. Now, backing the protesters is CJP founder Abhijit Dibke, who spoke to the students over a video call and expressed support for their demands.
1: वो छात्र है, वो छात्र है, और वो छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है।
2: जहाँ जहाँ अब युवा अपने इस विषय के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर ऐसी स्थिति पैदा हो। अगर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, चाहे उनको जैन जी बोलिए और कुछ भी बोलिए, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे बात करनी चाहिए।
3: कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की कि और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ।
4: कांग्रेस पार्टी इज एंटी यूथ। The students in Jharkhand are waiting for justice, are waiting for the resignation minister of Congress-led alliance in Jharkhand. But till now, neither Rahul Gandhi has spoken or demanded accountability from the Congress government in Jharkhand. Neither Arvind Kejriwal has spoken, neither Akhilesh Yadav has spoken. When are these people going and taking a ticket and doing a march with the students in Jharkhand to the Jharkhand Vidhan Sabha? Their silence exposes their hypocrisy. Their silence exposes that Congress party, Jharkhand Mukti Morcha, Akhilesh Yadav, and Arvind Kejriwal are anti-youth. In their own state government, massive paper leak is taking place. There has been zero accountability. The youth of India is seeing this, and the youth of India will punish the Congress, Samajwadi Party, and Aam Aadmi Party.
5: 10 dinon se hazaron chhatr Jaipal Singh Stadium dharne baithe hain. Ek hi demand hai CBI jaanch. Sarkar ka ek bhi adna sa adhikari un bachchon se samvad nahi karne gaya. Aur bachchon ko ne tripal lagane ka prayas kiya. तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। देखो कितना अमानवीय चेहरा झारखंड की सरकार का। उन्होंने जहां धरने बैठे हजारों छात्र, वो प्लास्टिक लगा दिया था, उसको भी हटा दिया। और वहां के आंदोलित छात्र कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई जोमेटो से नहीं आ रहा है, वहीं माड़ भात खा रहे हैं, वहीं बनाकर वहीं खा रहे हैं। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच।
0: Former Wrestling Federation of India Chief Brij Bhushan Sharan has been acquitted by the Delhi High Court today. The Rouse Avenue Court, I beg your pardon, has cleared Brij Bhushan of harassment charges. The wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punya have reacted to his acquittal and said that they will appeal against his acquittal. The court acquitted Bhushan after finding that the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The judgment noted that the evidence was not sufficient to establish guilt, giving the accused the benefit of doubt. After his acquittal in the sexual harassment case, former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh said that he knew it from day one that he was not guilty. He said that he had maintained his innocence throughout the case and welcomed the court's decision to in fact clear him of the harassment charges. Here is what Brij Bhushan said to my colleague Tejshree.
6: ये जो पूरा घटनाक्रम रहा 2 से 2.5 साल का, बहुत ही संघर्ष किया उन महिलाओं ने, अपनी लड़ाई की, जंतर मंतर पर बैठे, तमाम जगह प्रोटेस्ट किए, लाठियां खाई, पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद निराशाजनक
7: दुख भरा जीवन समय है उनके लिए उनके लिए बहुत दुख भरा समय है, और वो अपनी पीड़ा वही बता सकती हैं, उनकी पीड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ।
6: उनकी पीड़ा बताने के लिए वो जंतर मंतर गई थी, लेकिन आपने उनकी पीड़ा नहीं सुनी।
7: उनकी पीड़ा वो बताएंगी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोग बहुत खुश हैं, और बहुत ज्यादा खुश हूँ।
6: लेकिन आप एक बार भी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? यहाँ से 10 कदम महज दूरी पर आपका घर है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस वक्त भी आप यहीं पर रह रहे थे।
7: नहीं लगता कि आप कुछ सवाल अटपटा सा कर रही हैं? मेरे खिलाफ धरना हो और मैं वहीं चला जाऊं तो जूता?
6: आप WFI के तो चीफ रहे थे ना उस वक्त, आपकी बच्चियां हैं वो, हम देश की बेटियां हैं, वो देश के लिए मेडल ला चुकी हैं।
7: मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, ये उत्तर आपको वही देंगी।
6: एक सवाल और ये भी कहा जा रहा था कि WFI में कोई सिस्टम नहीं है और आप फिलहाल उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को आप चला रहे हैं।
7: पहले बताइए आप किस अखबार से हैं?
6: मैं NDTV से हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं पत्रकार हूँ, NDTV से हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
7: लेकिन आप एक भी सवाल जो सवाल है नहीं पूछ रही हैं, अब आप सोचिए कि क्या पूछ रही हैं।
6: आरोप है, मैं उन आरोपों के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह के आरोप है कि जब इस पर आपका क्या कहना है कि जब आप नहीं थे तब भी
7: पूछे जाकर? देखिए बुरा मत मानिए, ये सवाल आप जज साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया।
6: कई लोगों का ये कहना है कि आपका बिहेवियर काफी एरोगेंट रहा।
8: एक आप खुद ले जा रहे हैं मुझे उसी तरफ, आप देखिए, नहीं आप देखिए इनका, अब ये आप देखिए ये क्या कर रही है।
6: आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका,
8: शांत रहो और जरा लगाइए इनकी तरफ। भैया देखिए ये क्या सवाल पूछ रही है, मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मुझको उकसा रही है।
6: उकसा नहीं रहे सर, जो एलिगेशंस है उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप पे आरोप लगे, आप पे ये कहा गया कि आप एरोगेंट हैं, आप अहंकारी हैं। मैं वही पत्रकार हूँ जिसके आपके साथ एयरपोर्ट पर बहस हुई थी और उसके बाद आपने गुस्से में मेरा माइक तोड़ा था।
7: आप वही हैं ना, लेकिन आज फिर वही रूप लेकर के आप आई हैं।
0: The Kaveri water row has triggered a fresh political clash in Tamil Nadu. Udayanidhi has targeted Vijayalaya TVK. The leader of opposition in Tamil Nadu Assembly, DMK's Udayanidhi Stalin, has targeted Chief Minister Vijay, alleging that TVK failed Tamil Nadu on Mekadatu water and Delta farmers' concern. He also alleged that Chief Minister Vijay is embarrassed to hold an all-party meeting. DMK also meanwhile staged a protest against Vijay government. Udayanidhi Stalin led the DMK protest against Vijay government. Meanwhile, the farmers led by Farmers Association leader staged a protest by burying themselves in sand of banks of Kaveri River in the area, demanding the immediate release of Kaveri water for irrigation. Lots of political reactions that are coming in on that story.
9: திருட்டு விக்கிற ஒரு அமைச்சர், திருட்டு விசிடி வைத்த ஒரு அமைச்சர், பிளாக்ல டிக்கெட் விற்கிற ஒரு அமைச்சர், உருட்டுக்கட்டையிலோடைய சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு அமைச்சர், எல்லாத்துக்கும் மேல போதை பவுடர் அமைச்சர், இப்படி மொத்த கேபினட்டுமே ஒரு ஜோக்கர் கூட்டமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆட்சியில முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் போடுறாரு, அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டலு ஏன் பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட விட்டுருக்கிறது இல்ல, உள்ள போய் ரீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு நாள் நீ பார்த்துருப்பீங்க, ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் வெளில வர சொல்லி அவங்களுடைய கட்சி பேரை கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு கேடு கெட்ட ஒரு ஆட்சியே தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
10: We have been very clear from day one. This is a matter of interstate water sharing issue. And all of us have to work together. We have Mr. D.K. Shukumar, the Chief Minister, also has called for all-party meeting, not once but twice. Once he's spoken to all the MPs, irrespective of parties, in Delhi. Yesterday also there was an all-party meeting. So we are seeking help and cooperation with everybody. These are something beyond government's control, right? Natural calamities, natural disaster, the El Nino, Super El Nino is not in the government's control. So we have to work together to ensure that we give the best possible solution for the people.
11: Kaveri Water Tribunal is the authority for Kaveri Water. Normally, the world over, in all international law, the lower riparian states cannot be denied of water. When the tribunal asks the Karnataka government to release a certain amount of water, they are discussing as to whether to release water or not. That is wrong. That is against law. So, water should definitely be released. We will fight for it.
12: It is very disheartening that the TVK government has not taken any steps to ensure that the rights of the Tamil people are being justified and the water from Karnataka gets released immediately and the farmers of the Delta region receive the good news that the water is reaching them anytime soon. But unfortunately, the Chief Minister is busy in making drone shots and red carpet welcomes. Let me remind the Chief Minister that drone shots will not feed the people of Tamil Nadu. It is only the farmers who can feed the people. The farmers need water and we need to ensure that the water security of the state is not compromised at any cost.
0: Well, a political controversy has erupted in Tamil Nadu after DMK workers were heard chanting Trisha's name repeatedly during a speech by Udayanidhi Stalin on the Kaveri water issue. What's triggered a bigger storm is how Tamil Nadu leader of opposition reacted to the chants. The DMK MLA smirked and then said whichever water should come and then said that he meant the Kaveri water. Now, Vijay supporters have alleged that the chants carried a double meaning, triggering sharp criticism. The remarks have also drawn condemnation over bringing a woman's name and the person life into a political battle.
9: ஆனால் இதை பற்றி நிற்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்னேன்.
0: Let's now talk about another political controversy that has erupted, this time in Maharashtra, after a video showed Congress leader Nana Patole's supporters washing his feet and showering him with flowers during the Guru Purnima celebrations. The viral clip has drew sharp criticism from the BJP, which has accused the Congress of promoting a culture of personality worship. Patole later clarified that he did not usually approve of such acts and said that the family members had performed the ritual as a mark of respect on Guru Purnima. But the Congress leader, Nana Patole, has defended himself after the viral video showing two men washing his feet during Guru Purnima had sparked a political row in the state of Maharashtra. Patole said that the men were younger members of his family who voluntarily performed the ritual as a mark of respect, insisting that he neither asked nor forced anyone to do so. Responding to the BJP's criticism, he said that he usually does not approve of such acts and added that he is not a saint or a spiritual figure.
13: वो तो पारिवारिक काम था, कोई मैंने सार्वजनिक रूप से मैं ज़बरदस्ती किसी को ये तो नहीं करा रहा था, वो हमारा पारिवारिक है। अब पारिवारिक वीडियो मीडिया ने जिस तरह से वायरल किया है, अब उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। मीडिया को भी अगर वही इशू अच्छा लगता है, अरे मैं मुझे लगता है कि वो मेरे परिवार के लोग है, मेरे से छोटे लोग है, वो लोग मैं बंदूक तो नहीं लगा के रखा हूँ, मैं तो मोबाइल में देख रहा था। तो मुझे लगता है कि संस्कार हमें बीजेपी ने नहीं पढ़ाना चाहिए।
14: नेत्याचे संस्कार संस्कृत कशी जाय जे अशा पद्धतीचे वर्तन या राज्यामध्ये करतात, त्यामुळे तर बोध घेतला पाहिजे त्यांनी की काय करतोय, कशाकरता करतोय, याच्याने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समाजाची तिकट मिळणार आहे, काय मिळणार आहे असे प्रयत्न करू नये.
0: Well, Hollywood's favorite web-slinger has spun a new box office record in India. Spider-Man: Brand New Day has delivered the biggest opening ever for a Hollywood film in the country, but it has still two major Bollywood blockbusters ahead of it. Here's how the latest Spider-Man film has fared against India's biggest opening day records.
15: Rebirth.
16: Sorry about that.
17: You're not one of my students, are you?
18: Spider-Man has swung into India and he has made a record-breaking start at the box office.
19: You're the only one who's immune to it.
18: Collecting rupees 72.44 crore gross and rupees 60.6 crore net on day one.
20: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
21: He's a little weird.
18: The film released on Thursday, July 30, with 17,250 shows across the country and recorded an overall occupancy of 56.58%. ₹72.44 crore opening has taken it past some of the biggest Hollywood and Bollywood blockbusters. Avengers Endgame had opened at ₹65 crore in India, while Avatar The Way of the Water had collected ₹48.75 crore on its opening day. And the list doesn't stop with Hollywood. Spider-Man has also crossed several major Bollywood opening day numbers. Shah Rukh Khan and Deepika Padukone's Pathaan opened at ₹67.19 crore. And the first Dhurandhar is also behind the new Spider-Man. But there are still two big Bollywood opening day records standing above Spider-Man. Ranbir Kapoor's Animal with ₹76.1 crore and Dhurandhar The Revenge, which opened at a staggering ₹102.55 crore. And Spider-Man's strong start came without block bookings, with occupancy rising from 51.22% in the morning to 65.11% at night. The question now is whether that momentum can carry through the weekend and whether Spider-Man can eventually challenge India's biggest box office records. For now, Spider-Man has conquered Hollywood. The biggest Indian box office records are still waiting.
19: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
18: Bureau Report, NDTV World.
15: Rebirth.
0: With that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.